FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं विचार।

0: अरविंदो। आज इस कार्यक्रम में हम आपको खलील जिब्रान के विचार सुनवा रहे हैं।
1: अभी कल ही मैं मंदिर के द्वार पर खड़ा था और पास से जाने वाले सभी व्यक्तियों से प्रेम के रहस्यों और लाभों के बारे में पूछ रहा था। एक अधेड़ आयु का व्यक्ति वहां से गुजरा। उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। वो कहने लगा, प्रेम एक जन्मजात दुर्बलता है जिसे हमने आदि पुरुष से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। फिर एक नवयुवक जिसका शरीर और भुजाएं सुदृढ़ थी ये कहते हुए आया, प्रेम एक ऐसा दृढ़ निश्चय है जो हमारी आत्मा के साथ रहता है और जो वर्तमान को अतीत तथा भावी युगों से जोड़ता है। उसके पीछे एक शोकातुर स्त्री आंखें भरती हुई गुजरी और कहने लगी, प्रेम वो घातक विष है जिसे भयंकर और काले काले भूतर पाताल की गहराइयों में से सारे लोक में फैलाते हैं, जिससे वो विष ऊर्ज कणों के रूप में प्यासी आत्माओं के ऊपर पड़ता है। कुछ समय के लिए आत्मा उसके प्रभाव से नशे में मस्त हो जाती है और फिर वो कुछ देर संभल कर सदा के लिए नष्ट हो जाती है। पर एक फूल के समान गुलाबी चेहरे वाली सुंदर लड़की अपने मुस्कुराते हुए ओठों से कहने लगी, देखो प्रेम अमृत है जिसे प्रभात की बधुएं बलवान पुरुषों के लिए बरसाती हैं, जिससे वे रात में आभायुक्त बन उठें और दिन में आनंद का भोग करें। उसके बाद एक और आदमी काले वस्त्र पहने हुए आया। उसकी लंबी दाढ़ी उसकी छाती पर बिखरी हुई थी। उसने बड़ी तीव्रता के साथ कहा, प्रेम एक मूर्खता है जो जवानी के प्रभात के साथ साथ प्रकट होती है और उसके संध्याकाल के साथ विदा हो जाती है। उसके पीछे एक और आदमी आया जिसका चेहरा तेजपूर्ण और शांत था। उसने बड़े प्रसन्न मुख से कहा, प्रेम एक दैवी ज्ञान है जो हमारे अंतरंग और बाहर की आंखों को प्रकाश प्रदान करता है, जिससे हम समस्त वस्तुओं को दीपकों के समान देखने लग जाए। फिर एक अंधा आदमी धरती पर पुरानी लाठी से अपना मार्ग ढूंढता हुआ आया। वो रोती हुई आवाज में कहने लगा, प्रेम एक गहरी धुंध है जो आत्मा को ढक देती है और जीवन के दृश्यों पर पर्दा डाल देती है, जिससे वो आत्मा पथरीली चट्टानों में भटककर अपनी इच्छाओं की प्रतिच्छाया के सिवा कुछ भी नहीं देखती और सूनी तथा निर्जन घाटियों में अपनी आवाज की प्रतिध्वनि के सिवा कुछ नहीं सुनती। फिर एक नवयुवक वीणा बजाता और ये गाता हुआ आया, प्रेम एक स्वर्गिक ज्योति है जो सूक्ष्म ग्राही आत्मा के अंतरंग से चमक कर अपने आसपास की समस्त वस्तुओं को प्रकाशमान कर देती है, जिससे ये आत्मा समस्त लोकों का दृश्य इस प्रकार देखे मानो उसके सामने हरे भरे मैदानों में एक जुलूस जा रहा है। इस नवयुवक के बाद एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता और कांपता हुआ कहने लगा, प्रेम एक दुखी शरीर की वो विश्रांति है जो उसे कब्र में प्राप्त होती है और आत्मा का वो आश्रय है जो उसे अनंत की तीव्रता में मिलता है। फिर 5 वर्ष का एक बालक आया और उसने तेजी से दौड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, प्रेम मेरा बाप है और प्रेम मेरी माँ है और मेरे माँ बाप के सिवा कोई नहीं जानता कि प्रेम क्या है। और अब दिन समाप्त हो चुका था और सब लोग मंदिर के सामने से गुजर चुके थे। इनमें से हर एक ने प्रेम के संबंध में कुछ न कुछ कहा था और प्रत्येक शब्द में अपनी अपनी भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट किया था।
0: अभी आपने खलील जिब्रान के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब भक्ति संगीत के साथ आरंभ करें आज की आराधना।

ईश्वर हमारे हृदय का विश्वास है। ईश्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई।

कहते हैं दुनिया के सारे संगीत एक तरफ और हमारे सांवरिया सर हमारे गोविंद की बंसी की तान एक तरफ। गोविंद के गुण गाने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी वैभव में नहीं।

प्रभु कभी ढूंढने से नहीं बल्कि खुद को उनके चरणों में सौंप देने से मिलते हैं। तभी तो किसी ने कहा कि कब किसको मिल जाए प्रभु, ये कोई नहीं जानता।

आज की इस भागदौड़ और चिंताओं से भरी दुनिया में जब मन थक जाता है तो नारायण की शरण ही वो परम धाम है जहाँ सच्ची शांति मिलती है। उनकी वंदना का मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर खुद को उस सत्य को सौंप देना है। तो चलिए आज सुबह अपने सारे तनाव अपनी सारी चिंताएं जगत के पालनहार श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देते हैं। मन को एकाग्र और विलीन करके नारायण की इस पावन वंदना में शामिल होते हैं।

कहते हैं कि जब हम कथा कीर्तन या भजन सुनकर उठते हैं तो प्रभु को वहीं छोड़कर नहीं आना चाहिए, उन्हें अपनी उंगली थाम कर अपने साथ अपने घर ले आना चाहिए। कार्यक्रम के समापन में आइए नारायण से यही अरदास करते हैं कि हे नाथ, मेरे घर के आंगन में, घर में, मेरी सोच में और मेरे परिवार के हर सदस्य के मुस्कुराते हुए चेहरे में बस आप ही आप नजर आए। जब भी मेरे घर का दरवाज़ा खुले तो यहाँ सिर्फ प्रेम, करुणा और आपकी कृपा का वास हो।

आज भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में हमने आपको सुनाए अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, पीयूषा, कैलाश, अनुज, पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, सोनू निगम और साथियों के गाए भजन। आप सब पर प्रभु कृपा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज की बात। श्रोताओं, तारीखें सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए नहीं होती, हर तारीख अपने साथ समेटे होती है इतिहास के पन्नों में दर्ज वो कहानियां जिन्होंने आज की दुनिया को बदला। और आज कैलेंडर की खिड़की से झांक रही है 11 जून की तारीख। तो चलिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास दर्ज हुआ था। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है राष्ट्रीय भुट्टा दिवस। हर साल 11 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से भुट्टा प्रेमियों के लिए समर्पित है, जो गर्मियों के मौसम की शुरुआत में स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स का आनंद लेते हैं। जून का महीना वो समय होता है जब खेतों में मीठी मकई की फसल तैयार होने लगती है, इसलिए ताजे भुट्टे के स्वागत और इसके स्वाद का जश्न मनाने के लिए इस दिन को चुना गया। इस दिन लोग भुट्टे को अलग अलग तरीके से पकाकर खाते हैं। कोयले या आग पर सीधे भूनकर, जिन पर नींबू, नमक और चाट मसाला लगा होता है। भारत में ये तरीका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। भुट्टा न केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप सब इसका लुत्फ उठाइए और इस दिवस को मनाइए। रुक करते हैं दुनिया की कुछ ऐसी घटनाओं की तरफ जिसने हमारा नज़रिया बदल दिया। 11 जून का दिन विज्ञान और कला के प्रेमियों के लिए बेहद खास है। साल 1993 में आज ही के दिन हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की कालजयी फिल्म जुरासिक पार्क सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि पहली बार इंसानों को VFX और एनिमेशन के जरिए डायनासोर कि उस रहस्यमयी दुनिया के इतने करीब लाकर खड़ा कर दिया कि लोग थिएटर में डर से कांप उठे थे। और अगर बात विज्ञान की हो तो 11 जून 1997 को दुनिया की तकनीक में एक बड़ा मील का पत्थर देखा था। फिलिप कॉन नाम के एक इंजीनियर ने आज ही के दिन दुनिया का पहला कैमरा फोन तैयार किया था और उससे अपनी नवजात बेटी की तस्वीर तुरंत शेयर की थी। सोचिए, आज जो स्मार्टफोन और तस्वीरें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उसकी एक खूबसूरत शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। बात अब एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसके हौसले के आगे ब्रिटिश हुकूमत भी कांप उठी थी। आज ही के दिन यानी 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जन्म हुआ था अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि गूंज से आज़ादी के आंदोलन में जान फूंकने वाले बिस्मिल साहब न सिर्फ एक बेखौफ क्रांतिकारी थे बल्कि एक बेहतरीन शायर और लेखक भी थे। काकोरी कांड के इस महानायक को आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश नमन करता है। और श्रोताओं, आज जन्मतिथि है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षाविद कनक रेले की। उन्होंने मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। कनक रेले मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक, निदेशक और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्रधानाचार्य थी। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अपने 8 दशक लंबे करियर में शास्त्रीय नृत्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना कनक रेले को उनके परिवार और दोस्तों ने एक अच्छे दिल वाली महिला के रूप में हमेशा याद किया। 11 जून 1937 को गुजरात में जन्मी कनक रेले ने कम उम्र में ही नृत्य में अपना करियर शुरू कर दिया था। कथकली के पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी रुचि के साथ कनक रेले ने अपनी एक अलग

पहचान बनाई थी। अपनी कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। आज की बात में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं देशकांत।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के इस अंक में

0: मैं विभू कृष्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज तारीख है 11 जून और आज का दिन हमें हमारी उसी खोई हुई मुस्कान और बचपन से मिलाने आया है। आज पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, वो खेल जिसने बचपन में हमें गिरकर संभलना सिखाया, वो खेल जिसने हमें बिना किसी भेदभाव के दोस्त बनाना सिखाया। आज का दिन याद दिलाता है कि चाहे जिंदगी की भागदौड़ कितनी भी बढ़ जाए, अपने अंदर के उस बच्चे को, उस खिलाड़ी को कभी मरने नहीं देना है। आप सोच रहे होंगे कि खेल दिवस तो हम मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया मिलकर मनाती है। हम बड़े क्या हुए, खेलना ही भूल गए। ऑफिस की फाइल्स, घर के खर्चे और मोबाइल के रील्स में जिंदगी ऐसी उलझी कि वो शाम को मैदान में जाकर पसीना बहाना, वो गली क्रिकेट की लड़ाई, वो लूडो में चिटिंग करना, सब कुछ पीछे छूट गया। तभी तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भाई थम जाओ, खेलना सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, हम बड़ों के मानसिक तनाव को दूर करने की सबसे अच्छी दवा भी खेल ही है। आज सिर्फ बच्चों को मत कहिए कि जाओ खेलो, आज आप खुद भी बच्चे बन जाइए। शाम को ऑफिस से लौट कर थोड़ी देर बैडमिंटन या अपने बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलिए, या दोस्तों को बुलाकर कैरम बोर्ड ही बिछा लीजिए। यकीन मानिए, जब पसीना बहेगा तो दिल खुलकर हंसेगा, तो सारा स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। खेल हमें सिखाता है कि हारने के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना है और जीतने के बाद ज़मीन पर कैसे टिके रहना है। ये हमें टीम वर्क सिखाता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। आज इस खास मौके पर हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, वो ये कि मोबाइल की स्क्रीन और वीडियो गेम्स की दुनिया से बाहर निकलिए, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो या फिर बचपन का कोई भी खेल, आज के दिन कोई ना कोई खेल आप ज़रूर खेलिए। आप मैदान में जाएंगे, बच्चों को भेजेंगे, तभी तो खेलेगा इंडिया और तभी खिलेगा इंडिया। जब बात खेल की हो तो हम देवभूमि उत्तराखंड का जिक्र ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के इस खास मौके पर हम रुख करते हैं उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जिसने सिर्फ बाल मिठाई और पहाड़ों की खूबसूरती ही नहीं दी, बल्कि देश को ऐसे ऐसे नायाब खिलाड़ी दिए जिन्होंने दुनिया भर में भारत का तिरंगा बुलंद किया। अल्मोड़ा का वो लड़का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता, थॉमस कप जिताने में मुख्य भूमिका निभाई और विश्व के टॉप खिलाड़ियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लक्ष्य सेन, चिराग सेन, डीके सेन और लक्ष्य के भाई चिराग सेन, उनके पिता डीके सेन के अल्मोड़ा के नाम को बैडमिंटन कोर्ट पर अमर कर दिया। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान मूल रूप से एमएस धोनी भी इसी से जुड़े हैं। और भी कई खिलाड़ियों ने इस देश में नाम रोशन किया है। तो आज विविधा के अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदो उपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम्

0: आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,100 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे NDA घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मंत्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 अथ च 25-2000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा

0: कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही क्षणों उपरांत 7:10 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 121। 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्षों पर वार्ता, मिशन लाइफ की जीवन शैली, कचरे की नहीं रहेगी थैली। वार्ताकार होंगी श्रीमती

अनुराधा भागुनी। दिन के 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण। आज कार्यक्रम में सुनिएगा सामाजिक समारोह में हो नशा निषेध विषय पर श्री भीम सिंह अधिकारी से दीपा जोशी की बातचीत। दिन के 1:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1304वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। दिन के 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज चर्चा होगी कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर। जानकारी देंगे श्री हरीश चंद्र जोशी। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। आज कार्यक्रम में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और मैदान पर निखरती प्रतिभा के बारे में चर्चा। 5:45 पर उत्तरायण प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती पर वार्ता। साथ ही चर्चा होगी नशा मुक्त भारत अभियान पर। शाम 7:00 किसानवाणी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज की बातें में सुनिएगा खेत बचाओ अभियान पर मृदा परीक्षण क्यों और उससे लाभ। साथ ही सुनिएगा जैविक कृषि का उपयोग कर फल उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन करते कृषक श्री मनोज कुमार सती से भेंट वार्ता। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे एसएन शिवस्वामी का लिखा नाटक ग्रैंड स्लैम। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर लोकमंजरी, 11:30 पर लोकसुर, दिन के 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के तहत। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 10:05 पर सबरंग, दिन के 1:15 पर सुगम संगीत, रात्रि 8:00 सबरस और रात्रि 10:00 सुगम संगीत में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम शाम 6:41 पर प्रसारित किया जाएगा और फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार में सुनिएगा शीर्षक गीत, 11:00 सैनिकों के लिए, दिन के 12:00 मेरी पसंद में, दिन के 2:45 पर फिल्म संगीत में आप सुनेंगे एक ही फनकार को, अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत, शाम 7:40 पर फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 121।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते,

परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना, भाग 121। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत

0: सभी देशवासियों का अपना होना चाहिए। प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 89 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। और देहरादून स्थित सेलाकुई के परफ्यूमरी एवं सुगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में आज से दालचीनी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। एनडीए सरकार के इन
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए की उपलब्धि और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। इससे पहले एनडीए ने प्रधानमंत्री को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 89 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इन स्वीकृतियों में पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में टाइप द्वितीय के 120 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 42,47,00,000 रुपए एवं थाना ऋषिकेश में जीर्ण शीर्ण आवासीय भवन ध्वस्तीकरण कर टाइप द्वितीय के 36 व टाइप तृतीय के 9 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 17,44,00,000 रुपए तथा जिला कारागार देहरादून में 8 बैरकों के प्रथम तल पर नवीन बैरकों के निर्माण के लिए 59,78,000 रुपए की धनराशि के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस के विभिन्न अधिष्ठानों के अंतर्गत 27,60,00,000 रुपए का अनुमोदन प्रदान किया है। साथ ही तीर्थराज पुष्कर राजस्थान में उत्तराखंड आश्रम, प्रदेश से बाहर धर्मशाला में जेनसेट, पानी की समस्या व सोलर पैनल आदि की व्यवस्था के लिए 50,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राजधानी में राष्ट्रीय और राज्य महत्व की परियोजनाओं में वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान वन संपदा को न्यूनतम क्षति पहुंचाने का विशेष ध्यान रखा जाए। जिन परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण आवश्यक है, उनके लिए प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि का समयबद्ध चिन्हीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो। समीक्षा के दौरान आशा रोड़ी से झाझरा मसूरी हाईवे परियोजना तथा लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के संबंध में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से भूमि चिन्हित करने और प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। वन भूमि हस्तांतरण और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि चिन्हीकरण से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए जिला

0: जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं की संयुक्त टीम गठित करने के भी निर्देश दिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह सुविधा केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को मिलेगी। अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान नीट यूजी 2026 का प्रवेश पत्र दिखाना होगा। यह सुविधा परीक्षा की तिथि से दो दिन पहले से लेकर परीक्षा समाप्त होने के दो दिन बाद तक मान्य रहेगी। परिवहन विभाग के अनुसार अभ्यर्थियों को अपने गृह स्थान या वर्तमान निवास स्थान से परीक्षा केंद्र तक तथा परीक्षा के बाद वापस अपने गंतव्य तक निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा केवल उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण श्रेणी के बसों और परीक्षा केंद्रों के निकटतम मार्ग पर लागू होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करना और उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सुविधा उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से समीना।
0: देहरादून स्थित सेलाकुई के परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में आज से दालचीनी विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी का विषय दालचीनी प्रवर्धन, सतत खेती एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी में नवाचार रखा गया है। यह आयोजन उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में दालचीनी से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। योग दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में नैनीताल जिला मुख्यालय सहित 5 अलग अलग स्थानों पर पूर्वान 6:30 बजे से योगाभ्यास कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्वक जारी है। यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उद्देश्य से हरिद्वार जिले में आरटीओ प्रशासन द्वारा ई रिक्शाओं की औचक जांच की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जिले में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की सुविधा तथा उनके आर्थिक शोषण की रोकथाम के लिए ये आवश्यक जांच की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 89 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी और देहरादून स्थित सेलाकुई के परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में आज से दालचीनी विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए शंभू प्रसाद और साथियों का गाया लोकगीत।

घर घगरा को घर कुल बनर पेट भरने चढ़ो गो बसे राजा गाड़ी आगन कोट का

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28

0: 20,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
1: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विनोद कुमार का गाया कुमावनी लोकगीत।

0: तो चमक रहा है
1: भाई। नई नई लाइटें,
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: लोकमंजरी कार्यक्रम में सुनिए विनोद कुमार का गाए कुमावनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, और अब सुनिए शंभू प्रसाद और साथियों का गाया लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब हिंदी कार्यक्रम में सुनते हैं मिशन लाइफ की जीवन शैली, कचरे की नहीं रहेगी थैली विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं श्रीमती अनुराधा भाकुनी।
1: कचरा कम करें, पर्यावरण के लिए जीवन शैली के तहत कचरा कम करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत के नेतृत्व में चलाया जा रहा एक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य लोगों को बिना सोचे समझे और विनाशकारी उपभोग को छोड़कर पर्यावरण के प्रति सचेत और जानबूझकर उपभोग करने वाली जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन लाइफ को 2021 में ग्लासगो में हुए CPO 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका आधिकारिक शुभारंभ अक्टूबर 2022 में गुजरात के एकता नगर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति में किया गया था। मिशन लाइफ के प्रमुख उद्देश्य जैसे व्यक्तिगत प्रयास, छोटे छोटे व्यक्तिगत कार्यों जैसे पानी बचाना, बिजली की बचत और कचरे को कम करने के माध्यम से हर नागरिक को पर्यावरण रक्षक बनाना, सतत उपभोग, प्राकृतिक संसाधनों को जरूरत के अनुसार जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना मिशन के तहत 7 प्रमुख विषयों पर आधारित 75 पर्यावरण अनुकूल कार्यों की पहचान की गई है। ऊर्जा की बचत, अनावश्यक बिजली उपकरणों को बंद करना तथा सोलर एनर्जी का उपयोग करना, पानी की बचत, बारिश के पानी का संचयन और पानी की बर्बादी रोकना, एकल उपयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय कपड़े के थैले और अन्य विकल्पों का उपयोग करना, सतत टिकाऊ भोजन, स्थानीय और मौसमी फलों, सब्जियों व मोटे अनाजों जैसे बाजरा को आहार में शामिल करना है। कचरे की कमी, गीले कचरे से जैविक खाद बनाना और कचरे का सही वर्गीकरण करना, ई कचरे का कम उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लंबे समय तक उपयोग और सही रिसाइकलिंग, उस जीवन शैली की आयुर्वेदिक प्राकृतिक खेती और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। मिशन लाइफ का लक्ष्य 3 चरणों में लागू होता है। मांग में परिवर्तन, लोगों को दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना। आपूर्ति परिवर्तन, जब लोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग बढ़ाएंगे तो उद्योग और बाजार भी उसी अनुरूप टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए मजबूर होंगे। नीति में परिवर्तन, व्यक्ति और औद्योगिक बदलावों के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनाना जो स्थायी

विकास को बढ़ावा दे। मिशन लाइफ एक सार्वजनिक आंदोलन है जो व्यक्तियों के ग्रह समर्थक लोग बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करें। जिम्मेदार व्यक्तिगत जलवायु कार्रवाई हमारे सामूहिक भविष्य की सुरक्षा की कुंजी है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक 60% कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जीवन शैली अभी भी स्थायी पारंपरिक प्रथाओं का आधारित है। दरअसल स्थिरता हमेशा से हमारी परंपरा, संस्कृति और मूल्यों का हिस्सा रही है। लाइफ आंदोलन व्यक्तियों को ग्रह समर्थक लोगों में बदलना चाहते हैं जो सतत जीवन शैली अपनाएंगे। प्रत्येक चरण में स्थिरता के प्रति हमारे दृष्टिकोणों में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। मिशन लाइफ फॉर एनवायरनमेंट मानता है कि भारतीय संस्कृति और जीवन परंपराएं स्वाभाविक रूप से सतत हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व पर जोर दिया गया है। आवश्यकता है कि इस बात की हम उस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करें और संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिशन लाइफ व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों को सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन के वैश्विक जन आंदोलन में बदलना चाहता है। मिशन लाइफ का मतलब है पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल एवं भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CBC द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। मिशन लाइफ का उद्देश्य एक स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य संरक्षण, संयम और पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली जीवन शैली को अपनाने की दिशा में एक जन आंदोलन बनाना है। यह पहल परंपराओं, मूल्यों और प्रथाओं के महत्व पर जोर देती है जो एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली में योगदान करती है। मिशन लाइफ एक व्यापक त्रियामी रणनीति पर आधारित है जिसका उद्देश्य स्थिरता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को नया आकार देता है। यह मिशन व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल, प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण के लिए जिम्मेदार उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा करना है। मिशन लाइफ व्यक्तिगत कल्याण और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है और मिशन लाइफ का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सामूहिक प्रयास है। यह पहल उन पारंपरिक प्रथाओं और मूल्यों के महत्व को मान्यता देती है और उन्हें बढ़ावा देती है जो स्वाभाविक रूप से टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। दैनिक जीवन में कचरा कम करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। प्लास्टिक की थैलियों और डिस्पोजल कप प्लेट का इस्तेमाल बंद करके कपड़े के थैले और स्टील के बर्तनों का उपयोग करें। कचरे को अलग करके घर से निकलने वाले गीले, सड़ने और वाले सूखे प्लास्टिक, कागज, कचरे को हमेशा अलग अलग डस्टबिन में रखें। पुनः उपयोग बढ़ाएं। पुरानी बोतलों, डिब्बों और कपड़ों को फेंकने के बजाय उन्हें रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। ई कचरा कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप को जल्दी ना बदलें और खराब होने पर उन्हें ई कचरा कलेक्शन सेंटर में ही दें। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत उपयोग को बढ़ावा देना है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को और प्रोत्साहन मिशन लाइफ के साथ मुख्य बिंदु हैं। ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, एकल उपयोग प्लास्टिक का को ना कहें, टिकाऊ सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना, ठोस अपशिष्ट कम करना, ई वेस्ट को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। अपने दैनिक जीवन में हमें यह एहसास नहीं होता कि हम कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जब आप ऊर्जा बचाने के लिए छोटे कदम उठाते हैं तो आप न केवल अपनी लागत कम करते हैं बल्कि एक स्वस्थ वातावरण और ऊर्जा को सुरक्षित राष्ट्र बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल है उपभोग में न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर दें, साधारण बल्बों के स्थान पर LED बल्बों का प्रयोग करें जिससे 75% तक बिजली की बचत होती है, उपयोग के बाद सिंचाई पंप बंद कर दें। पानी की बचत, भारत में जल सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। उच्च से अत्यधिक जल संकट भारत में 600 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है और भारत के भूजल का स्तर 54% घट गया है। 1951 और 2014 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता में लगभग 70% की गिरावट आई है। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल है वर्षा जल का संचयन करें, बाजरा, कोंदो, ज्वार वगैरह जैसे कम पानी वाली

0: फसलों की खेती को प्राथमिकता दे, कुशल जल बचत तकनीकों का उपयोग करें, ठोस अपशिष्ट को कम करना। हमारे पर्यावरण पर कचरे का भारी बोझ है और वो स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इस कचरे को कम करने के लिए 3 कदम उठाना आवश्यक है। कचरा कम उत्पन्न करना, प्लास्टिक की वस्तुओं को मना करना, पुनः चक्रण करना, कुशल अपशिष्ट प्रबंध हमारे आसपास को साफ रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण लाभ होते हैं। क्रियाओं के उदाहरणों में शामिल है जल निकायों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फेंकें, घर के सूखे व गीले कचरे को अलग अलग करें, मौसमी भोजन का सेवन सतत खाद्य प्रणालियों में योगदान देने के प्रमुख तरीके हैं। अपने आहार में मोटा अनाज शामिल करें। मोटा अनाज अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई प्रमुख पोषक तत्व प्रदान करता है। घरेलू कचरे से खाद बनाएं। छिलके, पत्ते आदि आसानी से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसे कभी न फेंके। सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक कचरे को गलती से भी बायोडिग्रेडेबल कचरे के साथ ना फेंकें। स्वस्थ जीवन शैली जीने का चयन करने से पर्यावरण पर होने वाली क्षति कम होती है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। सामुदायिक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण की पहल करें। अपने आवासीय क्षेत्र, स्कूल, कार्यालय में एक ग्रीन क्लब शुरू करें और या उसमें शामिल हों। आयुर्वेदिक दवाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्राकृतिक या जैविक खेती अपनाएं। आवश्यकता के अनुसार ही खाना बनाएं और खरीदें। बची हुई सब्जियों का भोजन को जानवरों को खिलाएं। इस सोच को बदलना है कि पर्यावरण बचाना केवल सरकारों का काम है, बल्कि यह हर नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत खुद से। जिम्मेदार व्यक्ति जलवायु और सामाजिक भविष्य की सुरक्षा की कुंजी है।
1: सरकार के 12 वर्ष मिशन लाइफ की जीवन शैली, कचरे की नहीं रहेगी थैली विषय पर अभी आपने वार्ता सुनी। वार्ताकार थी श्रीमती अनुराधा भाकुनी। इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की

0: ग्यारहवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा

0: के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली पांच है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए

0: उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। प्राइम मिनिस्टर सेज लिफ्टिंग मोर देन 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग पास्ट 12 इयर्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट शोज दैट इट्स पॉलिसीज आर करेक्ट एंड मूविंग इन राइट डायरेक्शन। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स प्लान्स टू चैनल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1,00,000 करोड़ रुपीज इनटू वेस्ट बंगाल। IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country.

0: अभी आपने विदुषी किशोरी अमोनकर का राग अहिर भैरव में गया ख्याल सुना। आपके साथ सारंगी पर संगत की थी सुल्तान खान ने और तबले पर बालकृष्ण अय्यर। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की और ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि एनडीए सम्मेलन

0: में श्री मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप के इतिहास में पहली बार 48 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब हम हाजिर हैं आपके ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, फरमाइशी पत्रों और फरमाइशी गीतों के साथ आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्जर में।

बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, दिल में रहने वाले कभी दिल से नहीं निकलते। सभी श्रोताओं को विभु कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में स्वागत है। इस सुहानी सी महफिल में आपका अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम गीत निर्झर। तो चलिए सुनते हैं आज का पहला फरमाइशी गीत आप सभी की नज़र।

मौसम चाहे कोई भी हो, जब दिल में यादों के चिराग जलते हैं तो जुबां पे सिर्फ और सिर्फ गुनगुनाहट तैराती है। और आज हमारी इस महफिल में फरमाइशों का जो गुलदस्ता सजा है, उसकी खुशबू सीधे आपके दिलों तक पहुंचने वाली है। अभी कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गाइड फिल्म से, शैलेंद्र के लिखे बोलों को सरगम में बांधा SD बर्मन ने। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी महाराष्ट्र बीच शहर से प्रकाश पगरिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश मूड़त। इसी गीत को सुनना चाहते थे हरिद्वार जहां। तो चलिए श्रोताओं, बिना देर किए रुक करते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो हमारे पास आई है खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री, मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा, नीतू वैद, महाराष्ट्र से गजानन एले, नवदीप एले, शेरी वडेनर अकोला, बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, सरिता, प्रियान, शिकांश, सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन ग्वाड़कर, नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि ग्वाड़कर। इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की मकबलिया।

श्रोताओं, किसी के लिए बेपना मोहब्बत हो तो दिल खुद ब खुद दीवाना हो जाता है, और इसी दीवानीपन को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में अभी आपने इस गीत के रूप में सुना। दीवानगी जब थोड़ी और परवान चढ़ती है तो समा कुछ और ही रंग ले लेता है, दिल पर काबू नहीं रहता और फिजाओं में एक मीठी सी मदहोशी छा जाती है। हमारी अगली फरमाइश कुछ इसी मिजाज की है, तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शर्मीली फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार हैं SD बर्मन, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है शिरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोज़ी, बिट्टू भाई, साजिदा रानी, हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशव रिधान खुराना, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान और पूजा परिहार। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपका गीत।

0: Make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से वाह
4: फसा अनजान ऐप से बचें
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत निर्झर में सफर को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ श्रोताओं जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक और अमर गानों की बात होगी तो इस गीत का नाम सबसे पहले आएगा वो बारिश की बूंदें एक छतरी और दो प्यार करने वाले दिल जी हाँ आप समझ ही गए होंगे हमें मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी बरेली के बेनी सिंह सागर पन्नीलाल सागर आशीष जी और देहरादून से सुनीता ने याद दिलाया कि राज कपूर और नरगिस जी के उस दौर का जब प्यार में सादगी और इकरार में सच्चाई हुआ करती थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों से सजी ये गीत चलिए सुनते हैं प्यार की ये अमर दास्तान शैलेन साहब का लिखा ये गीत है तो आप सभी की फरमाइश पर ये गीत

श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहते हैं। पानीपत से नरेश लक्ष्य लाडो कोयल मनहोत्रा नानक, रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक सिक्का।

वाकई इस गाने को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्यार का इकरार तो हो गया, लेकिन जब इसी प्यार में जुदाई की तड़प और एक मीठी सी बेकरारी शामिल हो जाए तो जज्बात कुछ और ही शक्ल ले लेते हैं। मौसम की रंगीनी के बीच दिल का हाल क्या होता है, इसे बयां करती है हमारी अगली फरमाइश। फिल्म रज़िया सुल्तान का ये बेहद रोमानी और जज्बाती नगमा, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, हर्ष आहूजा। वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर कैफ़े आज़मी का लिखा लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत सा गीत।

ये बरकरारी, ये तड़प संगीत में वो ताकत है जो बिना कुछ कहे दिल के हर कोने को छू लेती है। सभी श्रोताओं का शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश भेजी। आपकी पसंद ने महफिल में एक अलग ही समा बांध दिया है, और जब बात समा बांधने की हो तो भला मीना कुमारी जी की कालजयी फिल्म संगीत में डूबा लता मंगेशकर का गाई ये जादुई तराना।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, राजस्थान जाखौत से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल, बिहार से वली उल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी, राजस्थान कलाना से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश, और पदमपुर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, इस आशिकाने मौसम के बीच आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगला फरमाइशी की, जो हम आपको सुनवा रहे हैं रुदाली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है भूपेन हजारिका ने, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवधेश, प्रीति और नवनीत। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है बुलंदशहर चौखुनटी से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और समस्त अब्बासी परिवार। छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन, वली डोम। मथुरा से वसीम आसमा, अक्रम आसमा और उल्ला आसमा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम गीत निर्झर में। और आइए श्रोताओं, आप शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगला फरमाइशी गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं चलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है सीतामणि बिहार से अक्रम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अक्रम, रुबीना, आरिज, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान हमजा, मुजम्मिल, हुमैरा, सुमैरा, अबीहा, शाहीन, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख। छत्तीसगढ़ मुंगेली लाइन से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया गीत मेरे जीवन साथी फिल्म से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार R.D. बर्मन। और इस गीत को सुनना चाहते हैं नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत, अमन पारासर, आराध्या और लल्लू पंडित। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है चंडीगढ़ मोहाली से TD मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज साहिल, और महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षा खड़से, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी और स्वाति चौधरी।

जब महफिल अपनी पूरी रंगत में हो तो आखिरी नगमा भी ऐसा होना चाहिए जो सीधे रूह में उतर जाए। आज के सुहाने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हम अब आपको ले चलते हैं रेखा जी की जादुई आंखों की वो कशिश की तरफ, जिसे पर्दे पर अमर कर दिया फिल्म उमराव जान। खयाम साहब का संगीत, शहरयार साहब के बोल और आशा भोसले की मखमली आवाज़। इस गज़ल को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन, मुन्ना भाई, स्वर्णकार, पिंकी, रितेश, कृष्णा, पीहू और इनका समस्त परिवार। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा और बिहारी कॉलोनी से बली, डब्लू और परवीन आसमा। लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, संजू, सानिया, नीलोफर और शब्बू। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

जी हाँ श्रोताओं, अब अफसाने हज़ारें हैं, यादें बेहिसाब हैं और आपके ख़त और फरमाइशें अनगिनत। लेकिन अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आज के इस सफ़र को यहीं पर थामना होगा। उम्मीद है आज का ये संगीतमय सफ़र आपके दिलों को छू गया होगा। अगले अंक में इसी मोड़ पर फिर होगी मुलाकात कुछ और नए तरानों और आपकी प्यारी प्यारी फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। विभू कृष्णा को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जर सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी, जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए अदनान सामी का गाया गीत।

0: Every drive feels smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360 degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
4: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
3: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
4: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
3: झगड़ा मिटाएं,
4: विश्वास जगाएं।
5: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरन, और आइए अब आपको सुनवाते हैं मिताली सिंह की गाई गजल।

0: Make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की गाई नज़्म।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गई इसी गजल के साथ हमारा आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उन्होंने गणना फॉर्म वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई तथा अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना फॉर्म वितरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक प्रचार कर अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने BLO के साथ तैनात IT वॉलंटियर्स और बूथ अनवेयर्स ग्रुप की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया ताकि अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। बैठक में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तीसरे दिन दोपहर तक प्रदेश में लगभग 19 लाख मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये कुल मतदाताओं का लगभग 24% है। इस बीच उत्तरकाशी जिले के भारत तिब्बत सीमा से सटे भटवाड़ी तहसील के सीमांत गांव बगौरी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को गति मिली है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बूथ लेवल अधिकारियों ने गांव में घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण किया और ग्रामीणों को अभियान की जानकारी दी। अभियान के तहत मतदाताओं को प्रपत्र सावधानी पूर्वक भरने तथा निर्धारित समय के भीतर जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 7 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान के माध्यम से प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने जिलेवासियों से SIR में कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर कल भी बारिश के तीव्र दौर की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, सड़क मार्गों पर किसी भी प्रकार का अवरोध होने पर तत्काल कार्रवाई करने तथा आपदा संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालयों, पर्यटक स्थलों और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड में रहने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्षों की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सुर बहार।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शीर्षक गीत में आज हम रंग की बात करेंगे। रंग तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे हैं, लेकिन एक रंग ऐसा है जो दूर से ही ध्यान खींच लेता है, जो कभी मोहब्बत की लाली बनकर गालों पर बिखर जाता है, कभी दुल्हन की चुनरी बनकर सजता है, तो कभी दिल की धड़कन बनकर धड़कता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज के हमारे संगीतमय सफर का मुख्य शीर्षक है लाल रंग।

श्रोताओं, आज जितने भी गाने बजेंगे उन सब में लाल रंग की ऐसी चमक होगी जो आपकी सुबह को रोशन कर देगी। इस सफ़र की शुरुआत में अभी आपने प्रेम नगर फिल्म का गीत सुना। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं एक ऐसी फिल्म के शीर्ष गीत की तरफ जिसके नाम में ही ये रंग घुला हुआ है और जिसकी सूफियाना कशिश आज भी कानों में रस घोलती है। सुनिए ये लाजवाब नगमा।

0: बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर बहार शीर्षक गीत, और आज का हमारा शीर्षक है लाल रंग। इश्क का ये लाल रंग सीधे रूह को छू जाता है, लेकिन लाल रंग का एक और रूप है जो बेहद चुलबुला और शरारती है। जब कोई सज धज कर महफिल में आता है और ऊपर से लाल रंग की पोशाक हो तो देखने वालों के होश उड़ना तो लाजमी है। चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस ज़बरदस्त बीट्स वाली दुनिया का मज़ा लेता है, जहां एक लाल दुपट्टे ने पूरे देश के दीवानों के दिल धड़का दिए। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
3: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
4: Canada desh to, aap jante hi honge. कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान

वाह, इस लाल दुपट्टे की खनक का तो कोई जवाब ही नहीं। श्रोताओं, लाल रंग सिर्फ चुनर या दुपट्टे तक ही सीमित नहीं है। इस मस्ती भरे तराने के बाद अब समा पूरी तरह से बन चुका है, लेकिन अब हम आ पहुँचे हैं आज की इस रंगीन महफिल के आखिरी पड़ाव पर। अंत में लाल रंग का वो रूप जो सबसे पावन, सबसे खूबसूरत और भारतीय संस्कृति की जान माना जाता है, यानी दुल्हन का सिंदूर और उसकी शादी का लाल जोड़ा। एक लड़की जब किसी के प्यार में पूरी तरह रंग जाती है तो वो इस लाल रंग को अपनी तकदीर बना लेती है। आइए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं इस भावुक और सुरीले गीत के साथ।

श्रोताओं, आज शीर्षक गीत में हमने आपको लाल रंग पर गीत सुनाए और इसमें हमने आपको प्रेम नगर, तनु वेड्स मनु, मुझसे शादी करोगी और जुबैदा फिल्मों से हमने इस महफिल को सजाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो, ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। अब फौजी भाई सुने अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी साथियों की आवाज़ों में आपने प्रेम पुजारी फिल्म का गीत सुना। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं रिफ्यूजी फिल्म का गीत सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।
1: हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे,

0: मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छूंगी।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bands.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
5: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
6: कार्यक्रम में आप सुनिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत उदित नारायण अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजों में शब्द रचना समीर की है और संगीत निर्देशन किया है नदीम श्रवण ने

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कुमावनी और गढ़वाली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए बंसीलाल के स्वर में लोकगीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, इनकी बात ज़रूर याद रखिएगा, डाली बोट बिल्कुल ना काटें बल्कि खूब सारे पेड़ पौधे रोपित करें ताकि हरियाली पहाड़ की बनी रहे।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
2: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
7: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to ₹80,000. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, पहाड़ों में हम डाई बोट लगाएंगे तो

हमें यहाँ पर ही खाने को मिलते हैं बहुत सारे फल, और वो फल क्या क्या हैं इसी गीत में समाहित है। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीत नयननाथ रावल के स्वर में।

0: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos facial sound and smart-powered tailgate convenience.
4: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
5: श्रोतो, हमारे पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, कल कल करती नदियाँ, बर्फीले पहाड़, चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे डाना घाटियाँ, मीठे झरने, हरियाली भरपूर और प्यारे न्यारे यहाँ के लोग। इन्हीं मनमोहक सौंदर्य से सराबोर एक कुमाऊनी लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गायिका हैं तनुजा नौटियाल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोता भी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगतिका स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरी पसंद में। श्रोताओं, पानी की कल कल छल छल का स्वर अभी अभी आपने सुना होगा, क्योंकि पानी की कहानी में ही नदियों की रवानी है। और आज मेरी पसंद में यही छोटी सी गीतों भरी कहानी है। पानी की कहानी में नदियों की रवानी है। कल कल करती नदियाँ पहाड़ों को लांघती, मैदानों को पार करती, मानव को जीवन देती, बस देती ही रहती। इस जीवन प्रदायिनी पनिहारन का सम्मान करना, धरती पर जीवन के मूल्य को समझना है। गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है, एक नदी की बात सुनो, एक नदी की बात सुनो, एक शायर से पूछ रही थी रोज किनारे, दोनों हाथ पकड़ कर मेरे, सीधी राह चलते हैं चलाते हैं। रोज ही तो मैं नाव भर कर पीठ पे लेकर, कितने लोग हैं पार उतार कर आती हूँ। सच मैं नदी हूँ, मुझे तो बस चलना है, चलते ही जाना है।

आसमान की छवि लिए लहर लहर बहती जाती है, अपनी राहें खुद चुनती है। जहां से नदी गुजरती है पनपने की उर्वरता दे जाती है, चाहे वनस्पति हो या सभ्यताएं। और नदी का खूबसूरत किनारा हो, साथी प्यारा प्यारा हो, तो जिंदगी की खूबसूरत दास्तां भी बन जाती है। कुछ यूं ही।

0: खुशहाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: नदियों ने अपने किनारे इंसानों को बसने का सलीका सिखाया। घाट इंसानी शाहकारों में से सबसे खूबसूरत शाहकार है। जंगलों, मैदानों, खेतों के बीच से दौड़ती भागती नदी के इंसानों की बस्ती के करीब आते ही धारों से उसका स्वागत होता है। बस छल छल बहती जीवन धारा संग माझी बस नैया ही तो ढूंढा करता है किनारे के लिए।

श्रोतो, नदी किनारे किस्से उगते हैं, कहानियाँ बड़ी होती हैं, छंद मुक्तक की रुंझुन, शायरों की शायरियाँ, नज़में नगमे कविताएँ पुष्पित पल्लवित होती हैं। नदी सदा जीवी हैं, सदा नीरा हैं, उसके जल को स्पर्श करें तो कई दास्तानों से मुलाकात हो जाएगी, कई किस्से कहानियों से आप रूबरू होंगे। नदी पलट कर नहीं देखती, वो तो बस आगे ही बढ़ना सिखाती है। बस बढ़ते चलो, आगे ही बढ़ते चलो।

0: एक नदी थी,
1: एक नदी थी।
2: करवट ले तो
3: सारी जमी बह जाती।

चप्पुओं की आवाजें, नावों का बहाव, छपक छपक डोंगियों की डगर मगर, किनारे लगे खूंटों की रस्सियों की उबक डुबक आवाजें, मल्लाहों के भावपूर्ण गीत, बंसी की धुनें, पत्तों के दोनों में तैरती दीपक संग उजाले की कामनाएं, फूलों की पंखुड़ियों में सराबोर प्रणाम, नमन वंदन और अनेकानेक नमनों का अर्घ। नदी खुद में समेट लेती है ये सब कुछ।

कांच की मानिंद शफाक सादगी साफ गो साफ दिल नदी की शान में कसीदे पढ़ने वाले हम इंसान हकीकी ज़मीन पर नदियों का कितना ख्याल रखते हैं, कैसा बर्ताव नदी के साथ करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। सब जानते बूझते हैं नदियाँ हमारे पास हैं, हमारा सौभाग्य है। सालों साल सदियों से निर्झर गतिमान है नदियाँ। नदी में समाहित पूरी कायनात है, जमीन जिंदगी आसमान वाली। वो हमें जिंदगी नवाजती है, हम उसे कुछ नहीं देते। दे सकते हैं तो दीजिए, उसे सदा नीरा रहने दीजिए। वो जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए, मैला न कीजिए, हक न जमाइए। आईने की तरह चमकदार साफ स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए, यही नदियों के प्रति आभार है। बस नदी को नदी ही रहने दीजिए। नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है तेरी धार, खारा खारा है ये सारा संसार।

तो श्रोताओं, नदियों की कहानी, नगमों की जबानी, मेरी पसंद में आज बस इतना ही। अंजू पंक्ति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम अर्पण।

0: पर कार्यक्रम सुने सब दगड़ियन के मैं आप लोगों को रेडियो दगड़ी दीपा जोशी नमस्कार स्वागत है सब लोगों ना आज ए पर कार्यक्रम में दगड़ियो रोजा का चारी कुछ बातचीत आप लोगों को लेकर करूँ कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ और दगड़ मैं करूँ आप लोगों को भरपूर मनोरंजन। तो कार्यक्रम में पछा तक हमारा दगड़ बढ़ी रहा दगड़ियो आज छो 11 जून और आज का दिन 11 जून 1897 हूँ शाहजहाँपुर में जन्म भव पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जन राज्य हिंदी छू वो एक क्रांतिकारी छी और उन्होंने हमारे देश का स्वतंत्रकरण अपन बहुत ठूल भूमिका निभाए। दगड़ियो देश भर में जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने विरोध करा और यश में एक यश आंधी पड़ी जकर रुकन बिल्कुल नामुमकिन छी। राम प्रसाद बिस्मिल जुला उनमें मटी एक छी वो एक साहित्यकार और इतिहासकार छी जिन्होंने अपन देश के स्वतंत्र करोन में अहम भूमिका उन्हर छी और मात्र 30 सालक उम्र में अंग्रेजी सरकार ने उनके फांसी दे उन्होंने हंसते हंसते देश स्वतंत्रता जी एक मंजूर करो। तो यस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के हमारे साथ साथ नमन।
1: Inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
2: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.

0: लता तिवारी गाए यो गीत आप लोगों ने सुनो और अब सुनो इन्हें बात
1: Into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: Enjoy amazing benefits up to Rs 25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC applies.
3: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी

0: पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: अब आप लोग हम ले आ रहे हैं एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। सामाजिक समारोहों में हो नशा निषेध, यह विषय पर हम उन बातचीत करें सामाजिक कार्यकर्ता श्री भीम सिंह अधिकारी जी द्वारा। तो सुन लो यह क्षेत्र संकलित बातचीत। नशाकरण एक बहुत गंभीर सामाजिक समस्या छू जैल मनखिक जीवन बर्बाद हजा। नशा चाहे कोयला हो, चाहे शराब हो, धूम्रपान हो, गुटखा हो, बीड़ी सिगरेट ड्रग्स कोयला हो, यह हमारे शारीरिक अंगों, मानसिक संतुलन और आर्थिक स्थिति पर बहुत घातक, बहुत नक प्रभाव पड़ो। यो मनखिक दिमाग कार्यप्रणाली के बदल दे जैल निर्णय न ताकत जो खत्म है। यक दगड़ नस करण आर्थिक और सामाजिक क्षति ले है। आर्थिक तंगी और परिवार में कलह मुख्य कारण यह नस करण छू। आज हम देखनु कि सामाजिक समारोह में मनखी जो छू यो नस के बढ़ावा देने लग रहा, जैक बहुत नक प्रभाव हमारे समाज पर पड़ने लग रहा। जैल हमार युवा ले यो नशक तरफ जानी, तो हम सबनक यो फर्ज बढ़ो कि हम यके रोकूं। यो ही सब बातों को देखते हुए आज हम बात करन लाग रही सामाजिक समारोह में नशक निषेध हो उके रोकी जाओ, ताकि हमारे समाज की कुरीति खत्म हो सको। यो ही बारे में और ज्यादा जानकारी पाणक लीजिए आज हम भेंट करी सामाजिक कार्यकर्ता श्री भीम सिंह अधिकारी जोधेगढ़। आपको बहुत बहुत स्वागत छो हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: सामाजिक समारोह में नशक निषेध हो, यो विषय में आपको विचार हम जान चाहे।
6: नशा समस्या बहुत ठूल समस्या है, खासकर भारतवर्ष में, उत्तराखंड में और गांव शहर सब में। सब लोग इसमें काम करनी, हमारे पुलिस विभाग ले काम करूं और विभाग ले काम करनी कि नश नहीं होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता लोग ले करनी। लेकिन ये समस्या ये तो ठूल है गया समाज में, लोग सब चाहने के नश नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे सामाजिक कार्यक्रम में आशा गई कि वो खुद नशा को बढ़ावा दे।
5: बिल्कुल, जैसा हम देख लो कि सामाजिक समारोह में या नशा खूब होने लग रहा है।
6: हाँ, बहुत अधिक, जैसे हो ही में लोग और चीज तो बांटनी, साथ में एक थाई में धरवे बीड़ सिगरेट ले बांटवी, तो ईगा हम के समझो वह नानतीन लहनी सैनी लहनी और लोग ले सब लोग देखनी। जो नया शिक्षा है वो ऑडियो विजुअल है कि देख बेर और सुन बे है, तो वो क्या देखे मैं सामाजिक समारोह में। सामाजिक समारोह मतलब है कि मैं सब वर्ग रहनी, हर उम्र युवा वर्ग ले रहनी, श्रेणी महेश ले रहनी, नानतीन ले रहनी। अब वो नानतीन हम कहूँ उनको भाल संस्कार दो और उधर संस्कार देने लीजिए। जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें हम कुछ संस्कार वाली चीज नश वगैरह इन चीजों को हम जोड़ लो और हम सोचने की कितनी यह तो हमारे शान छू या छो दहर हम समझना गलत चीज का हम अपने शान समझो मई। और यह जो है आगे जब बहुत खराब हमें, अब हम देखो मैं कि जो नई पीढ़ी जो है लगातार नश में डूबे, जब छोट नश कर लो पहले आदमी फिर धीरे धीरे ठूल नशा तरफ बढ़ू, यह चीज हम देखो मई।
5: को सामाजिक समारोह ऐसा जब मैं यहाँ नशा का निषेध होना चाहिए।
6: एक तो होई में होना चाहिए, यह होई जो है और सब में ठूल त्योहार में मैं एक छू, बहुत भल त्योहार छू। लेकिन भल त्योहार में मैं लोगों ने गलत चीज डाले नहीं, शराब पीना और वो बीड़ सिगरेट बांटन यह सब जो है वो सामाजिक मान्यता जी में प्रमोट कर रही। और दोहर जो है हमारे शादी ब्याह नहीं, खासकर शादी ब्याह में तो इतनी ज्यादा नशा है वो कि लोग एक अलग कमर धर देनी हो, दारू पिलाने लीजिए मतलब शराब पिलानी हो मैं शादियों में। और शादियां जो है हमारे हर साल है नहीं, अब पूरे देश भर बात करी जाली तो कतु शराब खपत छू और कतु नशे खपत छू,

और वो शादी में सब लोग आनी नानती लानी सैनी महेश लानी सब लोग आनी। तो हम कहनु कि हमारे देश ऋषियों देश हो और फलाने देवताओं देश हो अवतारों देश हो और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बात हम करो और देश भक्तों बात करो त्याग और बलिदान संस्कृति से करो। और वहाँ जो ये संस्कृति में हम जो मेन मेन चीज छीन शादी ब्याह और नामकरण और विवाह जन्मदिन में तो लोग बिल्कुल एकदम परंपरा जब बने पार्टीबाजी करण और ये करण वो करण और शराब पीण गुटखा खान और दुनिया भर का चीज गलत चीज खान सब एक दगड़े जोड़े ले उन्होंने खाओ पियो मौज करो बिल्कुल चार भाग सिद्धांत लागू करे ये बहुत खराब छो। और ये सामाजिक समारोह में इतनी विकृति आ गई जो समाज में भलाई फैलाण छो वो सामाजिक समारोह फैला सकूं हम और बुराई फैलाण छो उला हम सामाजिक समारोह फैला सकूं। तो यह हिसाब लिया जो भविष्य लीजिए बहुत खराब छो भविष्य जो पीढ़ी संस्कार देने बात है भाल चीज सिखाने बात है तो वहाँ हम इतु अधिक जो छो बिल्कुल नष्ट कर प्रमोट कर वही यह सामाजिक समारोह में विवाह दिन जन्मदिन शादी ब्याह होली पर्व त्योहार दर पार्टी वार्टी जो लो हम करूँ और तो को घर आएगा जैसे

0: परंपरा जब न है, पार्टीबाजी करण और ये करण वो करण और शराब पीण, गुटखा खाण और दुनिया भर का चीज गलत चीज खाण, सब एक दगड़े जोड़े ले उन्होंने, खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल चार्वाक सिद्धांत लागू करे, यह बहुत खराब छू। और ये सामाजिक समारोह में इतनी विकृति आ गई जो समाज में भलाई फैलाण छो वो सामाजिक समारोह फैला सकनू हम, और बुराई फैलाण छो ओला हम सामाजिक समारोह फैला सकनू। तो यह हिसाब लिया जो भविष्य लीजिए बहुत खराब छो, भविष्य जो पीढ़ी संस्कार देने बात है, भाल चीज सिखाने बात है, तो वहाँ हम इतु अधिक जो छो बिल्कुल नष्ट प्रमोट करूँ वही यह सामाजिक समारोह में, विवाह दिन, जन्मदिन, शादी ब्याह, होली, पर्व त्योहार, दोहर पार्टी वार्टी जो लो हम करूँ, और तो को घर आएगा जैसे बहर बसी और वो पार्टीबाजी करने, फिर पार्टीबाजी में क्या करनी वीक बाद कह लेंटर डालन छो के कारण छो, तो सब शराब शराब और नशा वाली चीज हमको देखना मिली, तो यह बहुत खराब छो और बहुत नुकसानदायक छो।
1: बहुत बड़ी और सही बात अपुल कैश की, कोई ला सामाजिक समारोह आज वक्त तक बात अगर करूँ तो हम यहाँ शराब बगैर पूर्ण नहीं मानी जान, सामाजिक कुरीति हमार छुयो, हमार समाज के हम नशा मुक्त कैसे बढ़ा सकनू, या सामाजिक समारोह जो छु इनमें नशक निषेध हम कैसे कर सकनू, ये मैं हमारी की भूमिका है एक आम नागरिक की।
0: बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, जैसे ये बात कह जाए हमारे महापुरुष लोग का नहीं, चैरिटी बिगिन सेट हो और जो सुधार कार्य हो, बहुत काम जो शुरू हो, जो आज में समझो जो लोग ये बात की समझने की ये चीज नहीं हट चाहे, तो उन लोगों आपो है शुरू करना चाहे, मतलब खुद शुरू करना चाहे, आपको घर परिवार में जो हमारे कार्यक्रम है नी और समारोह है नी उनमें इनमें पाबंदी लगाना चाहिए। और दोहर काम यह कार्य जैसे जो गांव वाले जागरूक थी, जहाँ महिला मंडल और अन्य चीज जागरूक थी, तो वो गांवों में जो है शराबबंदी को कतु गांवों में पहले कर ले रहा कतु लोगों, और लेकिन और अधिक लोगों और अधिक गांवों में जी मोहल्लों में मोहल्ला स्तर पर और अन्य स्तर पर यह काम है इसको, तो यह धीरे धीरे जो है जागरूकता बढ़ेगी। और दूसरा दौर जो युवा वर्ग थी, युवा वर्ग जो जागरूक युवा वर्ग थी और जो जागरूक संगठन थी, अन्य धार्मिक गैर धार्मिक जो संगठन थी, सामाजिक संगठन थी, उनला आपको स्तर पर इमें योजना बना सकनी कि हम क्या कर सकूँ, अब जहाँ जहाँ हम सक्रिय छू जिन जो जो क्षेत्रों में जी जो गांवों में जी मोहल्लों में जी शहरों में, तो उन लोग आपको स्तर पर इस नशा मुक्ति लीजिए और ये खासकर समारोह में इनमें, तो उनमें बहुत काम कर सकनी और खुद योजना बनानी पड़ी, या लीजिए खुद आगे ना आना पड़ो और खुद आपो पर शुरू कर भी, फिर यह संगठन स्तर पर काम कर भी इन चीज को, या नहीं कि लोग पहले का सोच लेने की क्या हम इनको दूर नहीं कर सकन, हम उन शुरू कर रहे हैं तो हम दूर ले कर सकन, कि उम्र के कोई ये तो कठिन चीज है, कठिन नाम है कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, और लोग कच्चे रावण ही नहीं मार सकन, रावण रावण ना मारी गई, अंश दुर्योधन सब मारे गए, और कतु कतु बुरा कतु कुरीतियाँ बुराई सब दूर है गए, नर बलि हची वो बंद है गई, और कतु प्रकार के चीज सती प्रथा पर्दा प्रथा ये चीजें बंद है गए, तो हिम्मत करीबे जो है समाज सुधार जो प्रक्रिया छू वह इसके हैं, संघर्ष तो करना पड़ो लेकिन वहाँ मजबूती दिखाना पड़े और संगठन स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर हिम्मत कार्य करना पड़ो। और फिर जो हमारे जो समाचार पत्र हनी और मीडिया जो हमारे सोशल मीडिया अन्य मीडिया उनको जो है भाल खबरों को आगे ले आना चाहिए कि फलान जाग करे नशा मुक्त करे दौर जाग करे, जो इन चीजों को अगर वो प्रमोट कर ला तो पूरे समाज में ये चीज फैलने के हो, जहाँ जहाँ समारोह में दारू फैले में और चीज फैले में, तो हर यह समाचार ला अलगी आगे नहीं फलान गांव में फलान जाग फलान माहौल में जो है लोगों ने नशा मुक्ति लीजिए कदम उठा रहे, और आपको घर पर त्योहार में और अन्य चीजों में वो लोग निकर्मा है और उनको पुरस्कृत करना चाहिए ऐसे लोगों को, और समारोह पूर्वक पुरस्कृत करना चाहिए और हाईलाइट में लेना चाहिए, तब जब ये जो है ये प्रेरणा वाली शक्ति कार्य करें इन चीजों में, जब हम उनको हाईलाइट कर लू आगे बढ़ानू इस प्रकार समाचार होगा समाज में, तो दूसरों को प्रेरणा मिले और धीरे धीरे एक वातावरण बनो समाज में, एक माहौल बनो, गलत चीजों को हटाने लीजिए, खासकर नशे को हटाने लीजिए, तो अनेक प्रकार काम कर सकूंगा।
1: बहुत है बड़ी तरीका आपने बता कि कोई ला भय चीज की शुरुआत हमन का अपन बटी करण चाहे, हमारे घर परिवार में जो ला सामाजिक समारोह होनी चाहे, ब्याह काम हो, जन्मदिन हो, विवाह दिवस हो, या जैसा आपको की हुई त्यार छू, अगर हर मनखी अपन मन में यह दृढ़ संकल्प ले लियो कि हमन के अपन यह जो सामाजिक समारोह होनी उनमें यह नस जस चीज कोई इस्तेमाल करना नहीं छू, तो असंभव के लिए ना जैसा बोल कह कि असंभव के लिए ना नामुमकिन के लेना, जब नक चीज हंस सकनी तो भर चीज हंस सकनी। बहुत बड़ी बात अपुल का है अधिकारी जो आप जान चाहो कि नस करना पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़े,
0: नस करना दुष्प्रभाव छी और ये पत्र पत्रिकाओं में और हर प्रकार समाचार में।

0: समाचार आनी नश या हालत चू जो लोग नश करनी पारिवारिक स्तर पर प्रभाव जो देखने में पूर्व हम कतिबा आम छी तो बाट में मकान बिहार में हम देखो कि बाप और चल आपस में लड़म छी शराब पीबे और यश लड़म छी जैसे हम एक कट्टर दुश्मन है ना तो यश किला हम एक पिता छो एक पुत्र छो और आपस में लड़म ही क्या कारण छो संस्कारों कमी छो खान पीन में जो गलत चीज खामी नश करमी अन्य चीज करमी तो वी एक दुष्प्रभाव के देखने में आवा हम कस परिवार चाहम हम कस समाज मतलब हमारी इच्छा छो कौ समाज हण छे कौ परिवार हण छे हम देव परिवार बात करनो संस्कारित परिवार बात करनो लोग यह बात के समझने की जो नई पीढ़ी जो निर्माण हो परिवारों में तो वो हम उन जो नई पीढ़ी वालों को क्या दिखाना चाहूँ के नश वाले परिवर्तियों को दिखाना चाहूँगी ये क्या दिखाना चाहूँगी तो वो सामाजिक समारोह में और घर परिवार में परिवार स्तर में अब घर में को दारू पी लो और जुआ खेल लो और गाली गलौज कर लो झगड़ मार कर लो तो क्या परिणाम वाले पूरा विकृति आ जाए पूरा परिवार में पूरे सामाजिक सिस्टम में फिर एक परिवार बिगड़ लो आजकल हम देखो एक खेत जब बंजर है तो वही बगल खेल बंजर है जामा धीरे धीरे खासकर उत्तराखंड में तो यह प्रकार जब एक परिवार में नशा परिवृत्ति आली तो दोहर परिवार में तो ऑटोमेटिक आ जाए अड़ोस पड़ोस लो भी प्रभाव पड़ लो और धीरे धीरे ये पूरे समाज में यह विकृति आ जाली पूरे माहौल पूरे गांव का माहौल खराब है जाल पूरे मोहल्ले में क्योंकि जो शराब पी वो हल गुल की कन्या है और हल गुल कन्या है गाली गलौज जे नहीं बुलाने से बोला बोला न्याय तो कौश वातावरण बनाल समाज और परिवार हम देख सकनो दोहर हानि ले छी एक हानि थोड़ी छो धन हानि ले छो जन हानि ले छो हर प्रकार छो ता पीबे को क्या लूट में आग लगे छो खेल कर छो अपने घर में आग लगे छो और एक्सीडेंट लगा छो गाड़ी चलानी वाले मैच जो एक्सीडेंट लगा छो तो खेल कर छो एक ना हजारों नुकसान छी देश जो नागरिक छी भविष्य नागरिक छी उले की कमजोर हमें शराब पी के शारीरिक मानसिक नुकसान छी और प्रकार नुकसान छी बीमारी ला हमें नाना प्रकार बीमारी आदमी आदमी पागल है जाम और कतु प्रकार नुकसान और पारिवारिक जो आप रिश्ते छी आपस रिश्ते ल खराब हमें अब वो नौकरी करने लेके आयो जो परिवार सदस्य छो वो समाज सदस्य छो अब जो शराब पीणी हो नौकरी में जब शराब पी जलो फिर क्या हो ना तो वाला असर पड़ो सामाजिक प्रभाव ला पड़ो और पारिवारिक प्रभाव ला पड़ो और काम क्वालिटी ले गिर जाए शराब पीबे के काम करो लाजिम नश करे क्या काम कर कतु प्रकार नुकसान जी जंगल में आग को लगामी अधिकतर आग लगानी मैं समझूंगी जहाँ तक बीड़ पीनी लोग है ना और सिगरेट पीनी लोग बीड़ पी दी और थोड़े बची रहो खेड़ दी वहाँ जंगल में तो वो जंगल बचवा और बे हम आम सी खत्ती है एक गांव में कार्यक्रम कर में तो वहाँ देखो हम जंगल में आग लग में फिर हम पूछो गांव वालों की क्या करनी ये जंगल में आग लगे हुए क्या नुकसान हो एक हल कॉल की हजारों लाखों जीव प्राणी जो उमा मर जामे वगैरह वगैरह तो यह बात हम चीज तो यह प्रकार लिए जो ना समय वील जंगल में आग आगोला एक कारण छु जंगल में आग अगर बचाए बीड़ सिगरेट अगर बंद है जालो आप ही आग लागण कम है जाल बंद है जाल तो यह प्रकार सामाजिक प्रभाव ले छी और पारिवारिक प्रभाव तो बहुत ज्यादा छी
1: नशा मुक्ति लीजिए आपको के काम करता सामाजिक लीजिए
0: समाज में नशा मुक्ति कार्यक्रम हमारे बहुत कार्यक्रम छी और जो सात आंदोलन हमारे छी देश में और विश्व में हम चलान सात आंदोलन में एक जो प्रमुख आंदोलन छू वो छो नशा मुक्ति और कुरीति उन्मूलन आंदोलन तो यह आंदोलन अंतर्गत हम जो संस्कार है नहीं जनेऊ संस्कार वगैरह उनमें जो है नशा मुक्ति बात करना जो जहाँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो साधना वाले बात है साधना में खान पीना जो साधना छू वो मैं नशा मुक्त जीवन अन्न प्राशन संस्कार में जो पवित्र भोजन खाने वाली बात छू तो मैं जो है नशा मुक्त जीवन संकल्प ले करानू और बातचीत करूँ और साथ में जो हमारे गांव में कार्यक्रम है नहीं मोहल्लों में कार्यक्रम नहीं यज्ञ दीप या प्रकार का कार्यक्रम है नहीं तो वहाँ नशा मुक्ति लीजिए प्रोत्साहित करनो प्रेरित करनो भी फैद नुकसान वगैरह सब बतानो और स्कूलों में जब फरवेर हम पिछड़ साल 2025 111 स्कूलों में गई नशा मुक्ति कार्यक्रम लीजिए जमा लगभग 5-6 स्कूल तो वीक थी नैनीताल जिले में और 105 स्कूल जो थी अलमोड़ जिला थी स्कूलों में जो नई पीढ़ी बच्चों बीच में वो कार्यक्रम नाम छो नशा मुक्ति और व्यक्ति निर्माण राष्ट्र निर्माण तो व्यक्ति निर्माण कार्यक्रम है क्योंकि आजकल हम देखो लोग समारोह पार्टी दोहर कार्यक्रमों को तो महत्व दी मई लेकिन हम खुद में अपन व्यक्तित्व अपने चरित्र कौश बनाव ये बार ध्यान नहीं देवे तो हम ये कहूँ कि अगर समाज निर्माण कर परिवार निर्माण कर तो सब पहले हम अपन निर्माण कर अपन निर्माण करने में नशा मुक्त जीवन जीवन बहुत आवश्यक छो बहुत अनिवार्य कदम छो बेटी जी अपन खान पान रहन सहन और जीवनचर्या दिनचर्या का ठीक करण जरूरी छो जो नशा करो आदमी वो दिनचर्या में जी करो तो दिनचर्या सुधारण और अनुशासन में धारण और यह लीजिए तो हम स्कूलों में गाँव में घरों में

0: संस्कारों में और जन्मदिन विवाहदिन में या नशा मुक्ति कार्यक्रम लगातार, यहाँ तक कि हम यात्रा लखनऊ गाड़ी माँ जी हुआ जी तो हमारे चर्चा ऐसे चली नशा मुक्ति पारी और राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण में। मैं अपन सुधार करल तब जब समाज सुधार हो, तो
1: बिल्कुल
0: अपन सुधार में नशा मुक्ति जीवन ले जा संकल्प पूर्वक यह कार्यक्रम वर्षों में कर वही। और 1995 में मैं स्कूलों में जाऊँ आने जाकर जाऊँ तो तब से लगातार और लोग पूरा देश में मैंने और बहुत सारे जो संगठन में सब लोग थी सब लोग यह कार्यक्रम में देश विदेश में कार्य कर रहे हैं और हमारे देश जो है आगे बढ़ल। और लेकिन सबको आना चाहिए यह कार्यक्रम में लीजिए, क्योंकि देश सबको छू परिवार और समाज सबको हो तो सबको भल काम दीजिए आगे ना चाहिए गलत काम को हटाने की कोशिश करना चाहिए।
1: तो हमारे श्रोताओं थे आपके कौन चला
0: श्रोताओं केवल यह कौन छू कि जो नर्स छू यह समाज बहुत ठूल समस्या छू परिवार ठूल समस्या छू यह समस्या को दूर करने लीजिए पहले व्यक्तिगत कदम उठाना चाहिए आप वो शुरू करना चाहें और फिर आपको परिवार भी शुरू करना चाहिए फिर आपको गांव और मोहल्ले भी शुरू करना चाहिए। और जो सामाजिक समारोह हम अटेंड करूँ और हम बहिष्कार कर सकूँ जो सामाजिक समारोह में नाच करने लोग तो हम कह सकते सिद्ध भैया अगर नशा मुक्त समारोह तुम्हारे छो तब हम आनू तुम निमंत्रण तो दे रहा लेकिन हम तब आवल जब नशा मुक्त हो। और जो हमारे घर में जो कार्यक्रम है तो हम कह सकू कार्ड में लिख सकू निमंत्रण कार्ड में नशा मुक्त कार्यक्रम छो खान पीन सब हॉल निश्चित लेकिन केवल नाच नहीं हॉल यह बात है कार्ड में लिख सुनो और हर प्रकार प्रयास कर सुनो। ये सब श्रोता लोगों केवल यह कौन छू की इमें मजबूत कदम उठाने जरूरत छो और यानी कि खाली बातचीत में और मतलब बात को उड़े दी ऐसा नहीं कौन छो उमें काम करना पड़ल कर्म फल मिलो और एक्शन तो लेना पड़ल तुरंत लेना पड़ल यानी कि ना बाद में करो या लेना तुरंत जो फर्स्ट कार्यक्रम तुम्हारे घर छू वहाँ पर शुरू कर देना चाहिए। यह कौन छू मैं सोता हूँ
1: सामाजिक समारोह में हो नशक निषेध यह विषय पर बहुत बड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को दे और अपन अमूल्य वक्त दे। उम्मीद करने के हमारे जो श्रोता दगड़ी छन वो यो बातचीत का सुनबेर एक जरूर अपन जीवन में लागू करल और हमारे जो सामाजिक समारोह होनी उन्होंने यह नशक निषेध करल आप अपना अमूल्य वक्त दे। अगली जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सामाजिक समारोह में हो नशा निषेध यह विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता श्री भीम सिंह अधिकारी द्वारा करी गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत आप लोगों ने सुनी और अब आप करना आप लोगों को मनोरंजन और सुनो गीत।

दीवान कनवाल और रेखा मिस्टर गैया गीता देवल आज का अपन कार्यक्रम संपन्न हो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की दीपिका पंत और एक देवल अपन रेडियो देवड़ी दिवा जोशी का आज कार्यक्रम संपन्न करना अनुमति दियो अगले का फिर भेंट हुई नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है।

ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भूमिगत बिजली लाइन बिछाने के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में पिछले साल आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उत्तरकाशी जिले के सीमांत गांव बगोरी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को मिला जन समर्थन। बीएलओ ने बांटे गणना प्रपत्र। और आगामी 15 जून को नैनीताल में आयोजित होने वाले कैंची धाम मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में नगर निगम और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भूमिगत बिजली लाइन बिछाने के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों से प्रभावित सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बरसात में आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सड़क मरम्मत और पुनर्निर्माण के सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सड़कों के सुधारीकरण में तेजी लाने को कहा। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में पिछले साल आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को स्वीकृत कार्यों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि और आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित मामलों की नियमित पैरवी कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को कलवर्ट, नालियों और स्क्रबर की समय से सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बरसात में जल निकासी सुचारू बनी रहे।
1: जनपद पौड़ी में पिछली जो आपदा आई थी और उसके पश्चात जो पुनर्निर्माण कार्य किए जाने थे, उसकी एक समीक्षा बैठक जो है विभिन्न विभागों के साथ की है, और इसमें इन्होंने जो काम कर लिया है उसके बारे में अवगत कराया, और जो धनराशि इनको मिलनी थी उसके बारे में जितना मिल चुका है वो बताया, और कितनी धनराशि अवशेष रह गई है जो सैंक्शन इनको नहीं हो पाई है उसके बारे में मैंने आज जानकारी ली है, और मैंने इनको अद्यतन अपनी रिपोर्ट आज ही सबमिट करने को बोला है, जिससे मैं देहरादून प्रवास करूंगा तो वहाँ पर विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी साहबान से मिल करके और ये धनराशि निर्गत करने का हमसे आग्रह करूंगा।
0: पिथौरागढ़ में आयोजित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्रमुखता से रखा। बैठक में सदस्यों ने बिजली आपूर्ति, वन भूमि संबंधी अनुमतियां, सड़क निर्माण व सुधार कार्य और पेयजल व्यवस्था सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रशासन के समक्ष रखा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन समस्याओं के शीघ्र समाधान से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही आम जनता को राहत मिलेगी। बैठक में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगई ने विभागीय अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित कर कार्य करने के निर्देश दिए। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन

0: जीवन और विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूलीकरण बरानी कृषि परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन जल स्रोतों में पहले जल उपलब्ध था उनकी मैपिंग कर मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य योजना तैयार करने, वन पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रस्तावित गतिविधियों को योजना में शामिल करने पर जोर दिया। साथ ही राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक जानकारी संकलित करने की बात भी कही। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है। उत्तरकाशी जिले में भारत तिब्बत सीमा से सटी भटवाड़ी तहसील के सीमांत गांव बगोरी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूची के कार्य को गति मिली है। बूथ लेवल अधिकारियों BLO ने गांव में घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण किया और ग्रामीणों को अभियान की जानकारी दी। BLO ने मतदाताओं को प्रपत्र सावधानी पूर्वक भरने और निर्धारित समय के भीतर जमा करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने बताया कि 7 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान के माध्यम से प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने निर्वाचन आयोग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज हो सकेगा और चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने जिलावासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। आगामी 15 जून को नैनीताल में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं को सुगम यातायात और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और SP सिटी मनोज कत्याल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और मार्ग को जल्द पूरी तरह सुचारू करने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की ओर से जिला चिकित्सालय में विधिक सहायता केंद्र बनाया गया है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. HC गढ़कोटी ने बताया कि विधिक सहायता केंद्र में प्रत्येक बुधवार को अधिकार मित्रों द्वारा दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और असहाय लोगों के स्वास्थ्य जांच कराने में सहायता की जाती है।
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यहाँ हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसमें प्रत्येक बुधवार को हमारे ये अधिकारी मित्र लोग आते हैं। इनके द्वारा जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट हैं, विकलांग हैं या जो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ दिखाना है, उन लोगों की मदद करते हैं लोग। उनके फॉर्म भरवाने में, उनको लैब में ले जाने में या और कोई जाँचें करवाने में उन लोगों की काफ़ी मदद ये लोग करते हैं।
0: प्राधिकरण के अधिकार मित्र भावना तिवारी ने बताया कि इस केंद्र में प्रत्येक बुधवार को गरीबों, असहायों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं की सहायता की जाती है।
2: यहाँ पर जिला अस्पताल में हमारा लीगल एड क्लिनिक खुला हुआ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत। तो हम लोग यहाँ पर अधिकार मित्र हर बुधवार को जिला अस्पताल में आकर यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन्स की मदद करते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी गर्भवती महिलाएं या कोई भी पीड़ित व्यक्ति आते हैं तो उन लोगों की हम हेल्प करते हैं। उनको डॉक्टर तक ले जाने से लेकर उनको व्हील चेयर दिलवाने से लेकर और दिव्यांग सर्टिफिकेट भरने में हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हर बुधवार को यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल बैठता है जिसमें हाथों हाथ दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। और जो भी हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुहिम चलती है हम उनके पंपलेट भी यहाँ पर पब्लिक के बीच में बांटते हैं ताकि दूर दराज गांव से आए हुए लोगों में जागरूकता फैल सके।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भूमिगत बिजली लाइन बिछाने के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में पिछले

साल आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उत्तरकाशी जिले के सीमांत गांव बगोरी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को मिला जन समर्थन। और आगामी 15 जून को नैनीताल में आयोजित होने वाले कैंची धाम मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। शुरुआत कर रहे हैं अमीर खुसरो के गीत के साथ। गायिका हैं शोभा गोर्टोक।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत की आखिरी पेशकश उल्फत एल्बम से रहमत खां का नगमा है, आवाज सलमा आगा की।

सुगम संगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज सुनिए कड़ी संख्या 1304।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी

0: कॉस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी।
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
0: जी।
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार
0: जी।
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं
0: जी।
1: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी।
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए।

0: बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना

0: को प्रशिक्षित करना होता है
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ आप बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है
1: जी। हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे
1: जी। अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए
1: जी।
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री

0: वृंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य श्रव्य ध्यान स्वाद स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

स्वर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2 बजे हैं और इस समय उत्तराखंड के लोग गीत लेकर हम हाजिर होते हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं नरेंद्र सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत के साथ।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजूला मालूशाही का एक अंश, कुमाऊनी में, गायिका हैं कमला देवी।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत

0: के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30

0: प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में US मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह

0: मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं श्री हरीश चंद्र जोशी।

किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, चिचिंडा, खीरा, करेला आदि में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट तथा उसका नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी चर्चा आज हम वार्ता के दौरान करेंगे। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाला प्रथम प्रमुख रोग चूर्णी लासिता है, जो इरिसाइपी नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है, पत्तियाँ सूखने लगती हैं। धीरे धीरे यह रोग पूरे तने व फलों पर फैल जाता है। पौधे व फलों का आकार छोटा रह जाता है। इस रोग की रोकथाम हेतु घुलनशील सल्फर नामक दवा का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 8 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे करें एवं कैराथेन नामक फफूंदी नाशक के 1 लीटर पानी में घोल कर रोग के लक्षण दिखाई देने के पश्चात सप्ताह भर के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। दूसरा प्रमुख रोग मृदरोमी लासिता है। यह रोग स्यूडोपर्नोस्पोरा नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग में पत्तों पर हल्के पीले रंग के कोणी धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में पीले गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इन धब्बों की निचली सतह पर बैंगनी रंग की फफूंद का जाल दिखाई देता है। बाद में पत्तियाँ सूख जाती हैं। रोगग्रस्त पौधों में फूटे फल छोटे लगते हैं एवं स्वादहीन होते हैं। इस रोग के प्रबंधन हेतु रोगग्रस्त पत्तियों को एकत्र कर गड्ढों में दबा दें, बेल को सहारा प्रदान करें। जिनेप नामक फफूंदनाशी का 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर सप्ताह के अंतराल पर 2 छिड़काव या संयुक्त कवकनाशी साइमोक्जानिल एवं मैनकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। तीसरा प्रमुख रोग फल सड़न रोग है, जो पिथियम फाइटोप्थोरा नामक कवक से होता है। इस रोग में मिट्टी से लगने वाले फलों की सतह पर जलसिक्त मृदु सड़न दिखाई देती है। यह रोग भंडारण से भी फैलता है। संक्रमित फलों में घनी रोमिल कवक की बढ़वार हो जाती है, जिससे फल सड़ जाते हैं व सड़ी हुई गंध निकलती है। इस रोग के कारण मिट्टी में होते हैं एवं जो फल मिट्टी के संपर्क में आते हैं वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। फलों में घाव एवं मृदा में अधिक नमी और तापक्रम फैलाने में सहायक होते हैं। इस रोग के प्रबंधन हेतु फलों को मिट्टी के संपर्क में आने से बचाएं। इसके लिए इन फसलों की बेलों को समुचित सहारा दें। फल और मिट्टी के बीच काली प्लास्टिक की मल्च लगाएं एवं फल बनने शुरू होने पर जमीन पर सूखी घास रखें, ताकि फल मिट्टी के संपर्क में ना आए। अत्यधिक सिंचाई न करें, फसल चक्र अपनाएं, भंडार से क्षतिग्रस्त व घाव वाले फलों को हटा दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों का प्रथम प्रमुख कीट लाल कद्दू भृंग है। इस कीट का वयस्क चमकदार नारंगी रंग का होता है, जो पत्तियों को खाते हैं। मादा पीले रंग के अंडों को पौधे के निकट जमीन में देती है। इसके भृंगक अंडों से निकलकर अंदर के तनों, जड़ों अथवा जमीन से लगे हुए फसलों को खाते हैं। प्यूपा भी जमीन में ही बनता है। इसका जीवन चक्र लगभग 30 से 55 दिनों का होता है। इस कीट के प्रबंधन हेतु गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी में पल रहे भृंगक तथा प्यूपा दोनों नष्ट हो जाएं। अगेती बुवाई से इस कीट का प्रकोप कम किया जा सकता है। जब भी इस कीट के वयस्क फसल पर दिखें, मिट्टी को खुरच दें, जिससे भृंगक ऊपर आ जाएं एवं परभक्षी इन्हें नष्ट कर दें। वयस्क कीटों के लिए राख का बुरकाव भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा कार्बेरिल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम राख या रेत में मिलाकर खेत में बुरकाव करें। दूसरा प्रमुख कीट फल मक्खी है। इसका वयस्क लाल भूरे रंग का होता है। इसके सिर पर लाल, काले तथा सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। वक्ष पर हरापन लिए हुए पीले रंग की लंबी मुड़ी हुई धारियां होती हैं। इस कीट का शिशु मुख्य हानिकारक अवस्था है। अंडों से शिशु निकलकर फल के गूदे खाते हैं, जिससे फल में सड़न हो जाती है। इस कीट के प्रबंधन हेतु गर्मी में खेतों की गहरी जुताई करें। क्यू लूर ट्रैप से वयस्क मक्खियों को आकर्षित कर पकड़ लेते हैं, जिससे इनकी जनसंख्या कम हो जाती है। रासायनिक नियंत्रण हेतु 20 मिलीलीटर मेलाथियन तथा 200 ग्राम गुड़ या चीनी को 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, तीसरा प्रमुख रोग सफ़ेद मक्खी है। इसके शिशु व वयस्क पौधों की पत्तियों में छेद कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं एवं गिर जाती हैं। मधुरस काली कवक की वृद्धि के लिए भी सहायक होता है। ये सफ़ेद मक्खी विषाणु रोगों का भी संचारण करती हैं। इस कीट के प्रबंधन हेतु अपने खेत के आसपास मालवेसी कुल के खरपतवार पोषक पौधों को

0: खेत से हटा दें। एक नाली में एक चिपचिपा पीला ट्रैप लगाएं। नीम के तेल या मछली के तेल से बना हुआ रोजिन साबुन 25 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर छिड़काव करें, या एसिटामिप्रिड 0.3 ग्राम या ट्रायजोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आगामी कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोगों द्वारा होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। धन्यवाद।
1: कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग प्रबंधन, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में श्री हरीश चंद्र जोशी से ये जानकारी अभी आप सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा आज आरंभ होगी संध्या 4:00 संदेश टू सोल्जर्स के साथ और रात 8:30

0: पर स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर। ये दोनों ही प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। संध्या 5:05 पर शैलस्वर के तहत आज आप सुनेंगे नारायण प्रसाद कन्याल के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। संध्या 5:15 का समय रहता है युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा मैदान पर निखरती प्रतिभा। रोजगार समाचार और आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती, नशा मुक्त भारत अभियान। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा, जिसमें आज आप मनहर उदास और पंडित रतन मोहन शर्मा के गाए भक्ति वंदनों का आनंद लेंगे। संध्या 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज की बातें होंगी खेत बचाव अभियान में मृदा परीक्षण क्यों और उसके लाभ। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में जैविक कृषि का उपयोग कर फल उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन करते कृषक श्री मनोज कुमार सती से बातचीत सुनवाई जाएगी। आज रात 10:30 पर सुनिएगा SN शिवस्वामी का लिखा नाटक ग्रैंड स्लैम। फिल्म संगीत का आनंद आप संध्या 7:40 पर लेंगे और रात 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत भी फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00 सबरस में और रात 10:00 भी सुगम संगीत प्रसारित होगा। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, कुछ कलाकार मनोरंजन करते हैं, कुछ हमें जागरूक करते हैं, लेकिन कुछ विरले कलाकार ही ऐसे होते हैं जो क्रांति लाते हैं। और इन्हीं दिग्गजों में से एक नाम शुमार है उत्पल दत्त साहब का। वो एक जाने माने अभिनेता तो थे ही, साथ ही बहुत ही उम्दा निर्देशक, नाटककार, रंगमंच के दार्शनिक और शब्दों के योद्धा थे। और आज एक ही फनकार के फनकार हैं उत्पल दत्त।

श्रोत भारतीय सिनेमा जगत और रंगमंच के दिग्गज कलाकार निर्देशक नाटककार उत्पल दत्त साहब का जन्म 29 मार्च 1929 को बारिसाल जो कि अब बांग्लादेश में है वहां हुआ था। फिल्मी दुनिया में उनके अभिनय की बात करें तो गोलमाल में मूछों के शौकीन भवानी शंकर को भला कौन भूल सकता है। इसके अलावा एक से बढ़कर एक फिल्मों में उनके अभिनय का जलवा हमने देखा है। शौकीन की बात करें, रंग बिरंगी, अंगूर, कर्तव्य, गुड्डी, नरम गरम, अपने पराये जैसी कई फिल्मों में उनके अद्भुत किरदारों को हम आज भी अपने यादों में संजोए हुए हैं।

तो श्रोताओं, उत्पल दत्त साहब ने चाहे सिनेमा के जरिए दर्शकों को हंसाया, अपने खास अंदाज से दर्शकों को लुभाया, अपने राजनीतिक मंचन से लोगों को सोचने पर विवश किया। उनकी कला, उनका सशक्त अभिनय, उनके कार्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल के दौरान थे। उनका कहना था कि आम जनमानस के अधिकारों को लेकर मैं चिंतित रहता हूँ, मैं तटस्थ नहीं पक्षधर हूँ और मैं राजनीतिक संघर्ष में विश्वास रखता हूँ। जिस दिन राजनीतिक संघर्ष में हिस्सा लेना बंद कर दूंगा, मैं एक कलाकार के रूप में मर जाऊंगा। जब तक कला कला को चुनौती देती है, तब तक रंगमंच झुकता नहीं। जब तक सिनेमा सपने संजोने का साहस देता रहेगा, तब तक उत्पल दत्त जैसे कलाकार हमेशा हमारे बीच, हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अपने क्रियाकलापों के जरिए, अपने अभिनय के जरिए या फिर अपने रंगमंच में निभाए गए उनके किरदारों के जरिए 19 अगस्त 1993 को ये चमकता सितारा इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गया।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार थे जाने माने अभिनेता, निर्देशक, रंगमंच कलाकार उत्पल दत्त। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अपराह्न के बजे हैं 3 और हम लेकर आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं आइए आज आगाज करें सदाबहार फिल्मी गीत का मशहूर साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन की चंद पंक्तियों से। कहते हैं तारे गाते हैं, कहते हैं तारे गाते हैं, सन्नाटा वसुधा पर छाया,

गर्भ में हमने कान लगाया, फिर भी अगणित कंठों का ये राग नहीं हम सुन पाते हैं, कहते हैं तारे गाते हैं। श्रोताओं, हृदय को स्पंदित तरंगित करती ये पंक्तियाँ यही कहती हैं कि सृष्टि में चहु ओर जो घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं संगीत की मधुर चाशनी में मिठास लिए घुला हुआ है, मिठास के साथ हमारे साथ ही चल पड़ा है। अगर आप महसूस करें तो ऊपर आसमान में तारों का गीत, नीचे धरती पर सांसों का संगीत, भंवरे की गुनगुन का गीत, सपनों का गीत, हवाओं का गीत, पंछियों की चहचहाहट का गीत, सरगम के तानों का संगीत, विविध साज और आवाजों का मनमोहक गीत संगीत, और इन्हीं गीतों में समाया एक और मधुर संगीत। जब हम किसी गीत को गुनगुनाना चाहते हैं, खुश होते हैं, आह्लादित होते हैं, अलमस्त होते हैं, तो अनायास ही आपके होठ घूम जाते हैं और सीटी की धुन के साथ अपनी खुशी कुछ यूं हम बयां करते हैं।

जी हाँ, जीवन की राहों में सीटी बजाते गुनगुनाते अगर हम चलें तो क्या ही आनंद आए, है ना। बहरहाल ये गाना जो था ये था 50वें दशक का और ज़माना फिल्म से था। आशा भोसले, अनिल बिस्वास की आवाज़ें थीं और नायिका अमिता पर ये गाना फिल्माया गया था। और इस गाने को अगर आपने देखा होगा तो इसमें हीरो हीरोइन साइकिल पर खुशी खुशी साथ सफर

नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं 40 के दौर में, और इस साल खजांची फिल्म आई जिसमें शमशाद बेगम, खान मस्ताना और साथियों ने ये गाना गाया है जिसे हम अब सुनवा रहे हैं, और सीटी की धुन के साथ बड़ा ही खूबसूरत गाना था। शायद ये माना जाता है कि ये हमारे भारतीय फिल्मी दुनिया का पहला गाना है जिसमें सीटी की धुन का प्रयोग किया गया था, और ये गाना कई मायनों में बहुत ख़ास माना जाता है। और अपनी ही तरह का ये पहला गाना तो था ही जिसमें साइकिल यात्रा को दर्शाया गया है, और उस दौर के हिसाब से थोड़ा सा ये अपने आप में एक अलग गाना बन पड़ा था। और इस गाने की जो संगीत की शैली है वो भी बिल्कुल नई और ताजगी भरी थी उस दौर में, और आज भी ये गाना अपने आप में बेमिसाल है। आइए सुनते हैं।

साइकिल की धुन और सीटी की अपनी खूबसूरत धुन के साथ सजा ये गाना था, अभी आपने सुना, खजांची फिल्म से। और अब चलिए 50 के दशक का एक और खूबसूरत तराना लेकर आए हैं, जिसमें सीटी की धुन का बखूबी प्रयोग किया गया है। लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज़ें हैं। फिल्म है देख कबीरा रोया, मदन मोहन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण का गीत। और इस गीत की अगर हम बात करें, अगर आप इसको देखें तो, अगर आपने देखा होगा या देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बम्बई पुराने दौर की बात है। मरीन ड्राइव की सड़कों पर खुशी के साथ सीटी बजाती दो नायिकाएं नज़र आ रही हैं। इस गीत में खूबसूरती है, मासूमियत है, रंगीन सपनों और भविष्य की उम्मीदें हैं। और ये गाना

अपने आप में अलग ही है अंदाज का, और शुभा खोटे ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में हमेशा बेहद खूबसूरत लगती रही हैं, और उस समय वो युवा भी रही हैं। और इसके साथ ही उनके साथ अनीता गुहा, जो कि इसमें इस गीत में उनके साथ हैं, इस फिल्म में भी हैं, तो ये दोनों ही नायिकाएं हंसते नाचते इस गीत को गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और ये दोनों ही किरदार इस गीत को जब आप देखेंगे तो महसूस करेंगे, बहरहाल सुनकर भी आप कुछ कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, नहीं तो आप खुद देख भी सकते हैं। आजकल इतने आपके सोशल साइट्स हैं, कहीं पर भी जाइए देखिए और इस गाने को महसूस कीजिए। आइए सुनते हैं हम पंछी मस्ताने, बात पंछियों की है तो मस्ताना सा गीत हाजिर है।

श्रोतो, इन गीतों को सुनकर जरूर आप भी सीटी बजाकर गाने की कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे, और हो सकता है हम में से कई ऐसे लोग हैं जो बड़े ही पारंगत है सीटी बजाकर गाना सुनाने में। बहरहाल, अब हम आपको 50 के दशक की एक और फिल्म की ओर लिए चलते हैं। आखिरी दाव इस फिल्म का नाम है, गायिका आशा भोसले है, मदन मोहन का मधुर संगीत है और शब्द रचना मजरूह की है। ये गीत जो है उस दौर की बेहद खूबसूरत और जानी मानी अभिनेत्री नूतन पर फिल्माया गया है। नूतन के साथ सहनायिका शम्मी भी नज़र आई हैं और साथ में इसमें हीरो जो है शेखर तार चलाते नज़र आ रहे हैं। यानी ये गाना जो है इन तीनों पर तार पर फिल्माया गया है और ये गाना भी बहुत खूबसूरत है और धुन और शब्दों की तो बात ही निराली है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, यूं तो हर दौर में सीटी बजाते गाने आपने ज़रूर देखे होंगे, और ख़ास कर हम बात करें 40, 50 और 60 के दशकों की, तो इस दौर में भारतीय सिनेमा में सीटी की आवाज़ का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया, और ये अक्सर हम मस्ती, सफ़र, रूमानी अंदाज या किसी किरदार की मस्त मौला प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता था। और ये गाने जो अभी आप सुन भी रहे हैं, तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि सीटी का दौर भी अपने आप में बेहद खूबसूरत था। यूं ही सीटी बजा लेना कोई ख़ास बात नहीं है ये हम सोचते हैं, लेकिन सीटी इतनी ख़ास भी हो सकती है ये सोचने वाली बात है। बहरहाल 60 के दशक में चलते हैं। पिकनिक फिल्म का एक गाना है, आंचल को उड़ाने दो। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, एस मोहिंदर का मधुर संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी का गीत। और एस मोहिंदर की बात करें तो वो अपने दौर के एक प्रतिभाशाली संगीत निर्देशक रहे हैं, और उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी यादगार धुनें दी हैं, और उनके गाने अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बन पड़े हैं। बहरहाल जो गाना हम सुनवा रहे हैं वो पिकनिक फिल्म से है, और इस मनमोहक गाने को सुनकर ज़रूर आपको भी कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे, और जैसे सभी मिलजुल कर पिकनिक जाते थे और मस्ती से निकल पड़ते थे, सीटी बजाते, साइकिल चलाते, कुछ ऐसा ही खूबसूरत समा बंधा है इस गाने में। आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, ये मस्ती भरा गाना सुनकर ज़रूर, जैसा कि मैंने कहा, आपको भी अपने कॉलेज के दिन या पिकनिक के दिन याद आ गए होंगे। और 50 के दशक का एक और गीत सुने बिना आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का ये जो सीटी के नगमों से भरा सफ़र है वो अधूरा है। और ये सदाबहार लोकप्रिय, हर दिल अजीज, मस्ती भरा रोमानी गाना आपको ज़रूर याद आएगा जब हम आपको सुनवाएंगे। ये गाना गीता बाली और भगवान दादा पर फिल्माया गया था और अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत गाना है। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। और लता मंगेशकर जी, चितलकर जी की बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं और श्री रामचंद्र का संगीत, राजेंद्र कृष्ण का गीत है। आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, सीटी बजाते और भी मधुर मधुर तराने हम फिर कभी और आपको ज़रूर सुनवाएंगे। आज सदाबहार फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं तक, अंजू पांगती के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

सायंकालीन सभा में आज शाम 4 बजे। श्रोता याद रखें, शाम 4 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बजने को हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में हमारा प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की, जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फ़िलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल

0: रहा है केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
1: जी जी
0: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
1: जी, जी।
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी, जी।
0: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
0: बिल्कुल।
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल।
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी CTC में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
0: बेसिकली जो हमारा CTC है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है

0: हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके।
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके।
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
1: जी। और जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप CTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: ओके। ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था।
1: जी जी।
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।
2: Yeah!

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई

0: आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई, बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से, तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्यर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्यर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है, तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर के, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला उसे रख कर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने

0: तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है।
1: okay.
0: हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गाँव में जाके OPDs लगाते थे।
1: okay.
0: उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत,
1: ये सब SSB कर रही है,
0: बिल्कुल SSB कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
1: जी,
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुँचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुँचाना, गाँव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडें पहुँच गई, विकास जैसे ही पहुँचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहाँ पे इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट,
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं ज़रूर बता चाहूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे IG सर थे श्री संजय कुमार, हमारे DIG सर श्री सुमित जोशी
1: जी,
0: हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे, बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई।
1: okay.
0: इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के SP थे श्री YS रमेश, उसके अलावा CRPF के जो ASP

0: ऑफ्स थे इमानुअल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी।
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कम्प्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज़ के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहाँ जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल। ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है, और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल।
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप।
0: बिल्कुल। हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है, तो बहुत अच्छा।
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं, तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल। हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है, हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको

0: लॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने टेनिस को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने।
0: बिल्कुल
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में।
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती होंगी।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी से?
0: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
0: जी,
1: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
1: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बनाने जा रही है, और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए, वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनके सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी।
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
0: हूँ,
1: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी। तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है तो देखिए आपने

0: कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का। साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन AIR ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th

0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं महेश सिंह जी. कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है. 29th SI/DE चेतन. अच्छा. लिख रहे हैं. okay. आप पहचान गए होंगे
1: जी.
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद. विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं. एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर. यश गुप्ता लिख रहे हैं वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस. आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें. क्यों,
1: धन्यवाद है यश का.
0: नागेश गढ़ाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी.
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे. चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का. सही कह रहे हैं सर
1: जी.
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है. दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी. जय हिंद बाबूलाल.
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं. एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है. एंड आगे बढ़ते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे.
1: बिल्कुल.
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं. तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का. और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं. महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सेलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं.
0: ओके.
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है. अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है.
0: okay.
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को. और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे, कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं.
0: ऑलराइट
1: जी.
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूँगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए, मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ. क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है.
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है. और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए.
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं. शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है, जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है. और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे.
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका एक प्रोग्राम सुन रहा है.
1: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे.
0: ओके
1: जी.
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा. नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है.
1: बिल्कुल.
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी.
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं. एंड ऑफकोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन

0: सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में. मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है. और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग. और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे.
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली. लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कौन से हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही.
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे.
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है. और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
0: तो
1: हुई है.
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं.
1: बिल्कुल.
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है.
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद.
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं. एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा.
1: धन्यवाद.
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें. अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें. समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊँगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं. और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है. जय.
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा. साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को. शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश. लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं.
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ.
0: अच्छा.
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था,

0: और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
1: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुना है, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
0: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
1: मौका अच्छा है, आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं।
0: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
1: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह

0: राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नारायण सिंह कन्याल का गाया लोकगीत। श्रोता, हमारी इस सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 मेगाहर्ट्ज पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन सकते हैं।

नारायण प्रसाद कन्याल के गाए इसी लोकगीत के साथ शैलसुर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नज़र हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही समय पश्चात संध्या 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता बिस्मिल, वार्ताकार होंगी बरखा कनवाल। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:45। संध्या 6:41 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार होंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। किसान भाई किसानवाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7:00। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा जैविक कृषि का उपयोग कर फल उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन करके कृषक मनोज कुमार सती से भेंट वार्ता। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सवरस होगा रात्रि 8:00। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा SN शिव स्वामी का लिखा नाटक ग्रैंड स्लैम। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

हमारी कल प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, तत्पश्चात 6:10 पर आराधना कार्यक्रम के तहत सुनिएगा कुछ भजन। आज की बात कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:40, 6:50 पर आप सुनेंगे विविधा। श्री रामचरित मानस गान पाठ का समय रहता प्रातः 7:10, प्रातः 7:30 पर लोक मंजरी कार्यक्रम होगा। गांधी चर्चा सुनिएगा प्रातः 7:50 पर।

प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत निर्झर हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 9:05 पर। 10:05 पर होगा कार्यक्रम सबरंग और 10:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरबहार।

हाँ जी भाई, सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए कल सुबह 11 बजे। 11:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12 बजे। 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार। सुगम संगीत सुनिएगा दिन में 1:15 पर। 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1305वीं कड़ी। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे दिन में 2 बजे। 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में कल सुनिएगा बकरियों में होने वाले रोग विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दीपिका बिस्ट। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम में और अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत कार्यक्रम के तहत।

हमारी कल सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। 5:05 पर शैलसुर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे हेमंत सिंह लोधियाल का गाया लोकगीत। संध्या 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 5:15 पर। 5:45 पर सुनेगा कार्यक्रम उत्तरायण। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेलों में न कारखानों में बच्चे जाएं शिक्षालयों में विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती ममता पाटनी। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। संध्या 7 बजे सुनेगा कार्यक्रम ग्राम जगत। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है युवाणी के आज के ताज़े अंक में आप सभी का। आज के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूं आपका रेडियो मित्र भुवन जोशी। दोस्तों, युवाणी के हर दिन के कार्यक्रम की भांति आज के कार्यक्रम में भी ढेर सारी बातें आपके साथ साझा की जाएंगी और साथ ही साथ होगा आपका मनोरंजन कुछ सुरीले गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात के साथ, और आज हम बात करेंगे मैदानों में निखरती प्रतिभा विषय पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विश्व भर में खेलों के महत्व, खिलाड़ियों के योगदान तथा खेलों के माध्यम से मानव विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय गौरव का

भी आधार है। इसी संदर्भ में आज हमने ये विषय लिया है मैदानों में निखरती प्रतिभा, क्योंकि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि खेल के मैदान ही वे स्थान हैं जहां पर छिपी हुई प्रतिभाएं अवसर पाकर निखरती हैं और देश विदेश में अपनी पहचान बनाती हैं। दोस्तों, खेल का मैदान एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां युवा अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास करते हैं। मैदान में खिलाड़ी केवल खेलना ही नहीं सीखता है, बल्कि वह संघर्ष करना, हार जीत को स्वीकार करना, टीम भावना विकसित करना तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना भी सीखता है। यही गुण उसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल बनाते हैं। आज जिन खिलाड़ियों को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होते हुए देखते हैं, उनकी सफलता की शुरुआत किसी न किसी छोटे मैदान से हुई होती है। भारत जैसे विशाल देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। गांव, कस्बों और दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक बच्चे और युवा खेलों में असाधारण क्षमता रखते हैं। यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर प्राप्त हों तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि खेलो इंडिया अभियान में खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक युवा खिलाड़ी विभिन्न खेलों में देश का नाम रोशन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। खेल के मैदान सामाजिक समानता और समावेशिता के भी प्रतीक हैं। मैदान में खिलाड़ी की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति से नहीं होती है, बल्कि उसकी प्रतिभा और प्रदर्शन से होती है। खेल सभी को समान अवसर प्रदान करते हैं और समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि खेलों को सामाजिक विकास का प्रभावी माध्यम माना जाता है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में जहां युवा वर्ग अधिकांश समय मोबाइल और इंटरनेट पर व्यतीत करता है, खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। खेल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होते हैं। नियमित खेल गतिविधियों से युवाओं में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। इसीलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा समुदाय स्तर पर खेल सुविधाओं का को विस्तार करना आवश्यक है। तो दोस्तों, बातचीत के अंत में हम यही कहेंगे कि खेल के मैदान प्रतिभाओं की जन्मस्थली है। यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी देश की पहचान बनते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इसीलिए खेलों को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना तथा खेल अवसंरचना का विकास करना समय की आवश्यकता है। यही सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की सार्थकता है और यही मैदानों में निखरती प्रतिभा विषय का मूल संदेश भी है। तो आज की बात में बस इतना। अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों आज 11 जून है। हर वर्ष 11 जून को राम प्रसाद बिस्मिल जयंती मनाई जाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी और सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत के रचयिता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बिस्मिल जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नायक और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी रहे। वे काकोरी ट्रेन कांड सन 1925 के मुख्य सूत्रधार थे, जिसके लिए उन्हें 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं, सुनते हैं इस वार्ता के माध्यम से। वार्ता का विषय है बिस्मिल। वार्ताकार हैं बरखा कनवाल।
7: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों बिस्मिल अजीमाबादी की इस अमर रचना को गाते गाते न जाने कितने देशभक्त फांसी पर झूल गए। इन्हीं में से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल। माँ भारती के लाल गुणों की खान थे। ये कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाभाषी, इतिहासकार और साथ में ये एक साहित्यकार भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का वास्तविक नाम तो राम प्रसाद ही था, बिस्मिल था इनका उपनाम। और बिस्मिल शब्द का हिंदी अनुवाद होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल उपनाम के अलावा ये राम और अज्ञात नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। राम प्रसाद का जन्म शुक्रवार के दिन 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ।

1916 में जब ये मात्र 19 साल के थे तभी से इन्होंने क्रांति का मार्ग चुन लिया था। अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी सफर में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उन्हें प्रकाशित भी कराया और इन्हीं पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। इनके पूरे जीवन काल में 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई जिसमें अधिकतर तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। रामप्रसाद के पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। इन दोनों का पहले भी एक पुत्र हुआ जो पैदा होते ही मर गया, लेकिन जब दूसरी संतान के रूप में बिस्मिल का जन्म हुआ तो एक ज्योतिष ने इनकी जन्म कुंडली देखकर और दोनों हाथों की उंगलियों में चक्र का निशान देखकर भविष्यवाणी की थी कि वैसे तो इस बालक के बचने की संभावना बहुत कम है, फिर भी यदि यह बच गया तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिष ने बहुत सोच विचार करके रौ अक्षर से नाम रखने की सलाह दी और माता पिता दोनों ही भगवान राम के उपासक थे, अतः बालक का नाम रख दिया गया रामप्रसाद। राम के माता पिता अपना पहला पुत्र खो चुके थे सो इस पुत्र के लिए जादू टोने का भी सहारा लिया गया। एक खरगोश लाया गया और नवजात शिशु के ऊपर से उतारकर आंगन में छोड़ दिया गया। खरगोश ने आंगन की दो चार चक्कर लगाए और तुरंत ही मर गया। दोस्तों, इस बात का उल्लेख रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में किया है। रामप्रसाद की शिक्षा पर बाल्यकाल से ही विशेष ध्यान दिया जाता था, लेकिन इनका मन खेलने में ज्यादा और पढ़ने में कम लगता था। जब ये 14 साल के थे तो इन्हें एक गलत लत लग गई थी। ये अपने पिता के संदूक से पैसे चुराने लगे और उन पैसों से वे उपन्यास खरीद कर लाते थे और पढ़ते थे। यह सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन यह चोरी करते हुए पकड़े गए और फिर हुई इनकी खूब पिटाई, उपन्यास आदि फाड़ दिए गए। रामप्रसाद जब उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ कर दिया और पड़ोस के एक पुजारी ने इन्हें पूजा पाठ का ज्ञान करा दिया। पुजारी एक सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए पुजारी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव रामप्रसाद के जीवन में भी पड़ा। अब रामप्रसाद के जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका था। पूजा पाठ के कारण, मंदिर में आने जाने के कारण मुंशी इंद्रजीत से इनका संपर्क हुआ। तब मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को आर्य समाज के बारे में बताया और स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी। इसके अध्ययन से रामप्रसाद के जीवन में आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। ये तो हुई इनके बचपन की चंचलता और किशोरावस्था की बातें। आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसे जागा इनके मन में देश प्रेम। जब रामप्रसाद राजकीय स्कूल साहजा में 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी संयोग से एक दिन स्वामी सोमदेव का आर्य समाज में आगमन हुआ और मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को ही उनकी सेवा में लगा दिया और यहीं से इनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। एक ओर सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन और स्वामी सोमदेव के साथ राजनीतिक विषयों पर खुली चर्चा से इनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो गई। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जगत नारायण मुल्ला के आदेश की धज्जियां बिखेरते हुए रामप्रसाद ने जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली तो सभी नवयुवकों का ध्यान गया रामप्रसाद की दृढ़ता की ओर। और इसी अधिवेशन के दौरान रामप्रसाद का परिचय हुआ केशव बलिराम हेगडेवार सोमदेव शर्मा और मुकुंदीलाल से। कानपुर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। रामप्रसाद ने इस पुस्तक के लिए अपनी माँ से दो बार में 200 रुपए मांगे और इसी पुस्तक को फिर प्रकाशित कराया, लेकिन इसके छपते ही अंग्रेजी सत्ता द्वारा इसे जब्त करा लिया गया और जब बाद में काकोरी कांड का अभियोग चला तो वहाँ साक्ष्य के रूप में यही पुस्तक प्रस्तुत की गई। और दोस्तों, अब यही पुस्तक संपादित करके सरफरोशी की तमन्ना नामक ग्रंथावली के भाग 3 में संकलित की जा चुकी है। जब भाई परमानंद को फांसी का समाचार रामप्रसाद ने सुना तो इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट कर दूंगा। 1916 में रामप्रसाद की एक पुस्तक भी छप चुकी थी जिसे पढ़कर कुछ नवयुवक इनसे जुड़ चुके थे और स्वामी सोमदेव का आशीर्वाद तो इन्हें था ही। तो रामप्रसाद ने पंडित लाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी के नाम से एक संगठन खड़ा किया और इस संगठन की ओर से एक विज्ञापन और प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई, जिसका उद्देश्य था संगठन के लिए धन एकत्र करना। अब तक रामप्रसाद बिस्मिल नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। बात करें 1918 की तो इन्होंने 3 डकैतियां भी डाली और फिर तो पुलिस इनके पीछे ही पड़ गई। 1918 में 26 से 31 दिसंबर तक दिल्ली में लाल किले के सामने कांग्रेस अधिवेशन में इस संगठन के नवयुवकों ने चिल्ला चिल्ला कर पुस्तकें बेचना शुरू किया तो पुलिस तुरंत वहां छापा डालने पहुंच गई, लेकिन बिस्मिल की सूझबूझ से सभी पुस्तकें बच गई। मैनपुरी षड्यंत्र की बात करें तो इसमें शाहजहांपुर से 6 युवक शामिल हुए थे और उनको लीड कर रहे थे रामप्रसाद बिस्मिल, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आए।

0: और लगभग 2 साल तक भूमिगत ही रहे और इनके कई साथियों ने यह अफवाह फैला दी कि राम प्रसाद पुलिस की गोली से मारी गई। लेकिन सच बात यह है कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और पानी के अंदर तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी से बाहर निकले, जहां आजकल ग्रेटर नोएडा आबाद हो चुका है। वहां के निर्जन बिहड़ों में ये चले गए, जहां उन दिनों केवल बबूल ही बबूल के वृक्ष थे और आदमी तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आता था। फिर राम प्रसाद ने यहाँ के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीनों तक निर्जन वन में घूमते रहे और वहाँ गुज्जरों की गाय भैंस चराई। इसका बड़ा ही रोचक वर्णन किया है इन्होंने अपनी आत्मकथा के द्वितीय खंड स्वदेश प्रेम, जिसका उपशीर्षक है पलायन अवस्था। और यही बिहड़ों में रहकर इन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोलशेविकों की करतूत लिखा। कुल मिलाकर बिस्मिल ने उस बिहड़ का भरपूर उपयोग किया। अब उस जगह पर बिस्मिल की याद में शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान विकसित किया गया है, जिसकी देखरेख वन विभाग करता है। पलायन अवस्था में ही एक किताब और लिखी कैथेराइन, जो इनके साथियों को खूब पसंद आई। फिर सरकारी ऐलान के बाद राम प्रसाद अपने वतन शाहजहांपुर वापस आ गए, जहां भारत सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर पद पर काम किया। फिर सदर बाजार में रेशमी साड़ी की दुकान खोलकर बनारसी लाल के साथ व्यापार शुरू किया, जिसमें इन्होंने खूब नाम कमाया। सन 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर मौलाना हसरत मोहानी का खुलकर समर्थन किया और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित कराकर ही माने। इस कारण ये युवाओं में काफी लोकप्रिय हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी सफर में इस तरह के कई उतार चढ़ाव आए। जब ट्रेन डकैती के मामले में ब्रिटिश साम्राज्य ने क्रांतिकारियों पर कई अतिरिक्त केस दायर किए, तो सभी की पैरवी करने के लिए किसी न किसी को रखा गया, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद ही की। बिस्मिल ने जब चीफ कोर्ट के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की, तो वकील मुल्ला जी अपनी बगले झांकते नजर आए। बिस्मिल के इस तर्क पर चीफ जस्टिस को उनसे यह पूछना ही पड़ा कि श्रीमान राम प्रसाद, आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है? बिस्मिल ने कहा, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनने वालों को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। इनके इस जवाब से अदालत ने चिढ़कर इनकी वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें इन्होंने स्वयं वकालत करने की बात कही थी। इसी प्रकार राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया, उसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाक उल्ला खां को आजीवन कारावास व फांसी की सजा का हुक्म हुआ। कोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय, जिसमें अपने अंतिम समय की बातें लिखी थी, उसे पूरा करके जेल के बाहर भिजवा दिया और 18 दिसंबर को अपने माता पिता से अंतिम मुलाकात की। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया जब माँ भारती के लाल वीर सपूत क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल सदा सदा के लिए माँ भारती की गोद में सो गए। वह ऐतिहासिक दिन था सोमवार 19 दिसंबर 1927, जब प्रातःकाल 6:30 पर इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। बिस्मिल के इस बलिदान का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, कितने साहस और अद्भुत बुद्धि कौशल के वीर धनी थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, नीले आकाश के तले स्वतंत्र हैं। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हम कभी ना भूले थे और ना ही भूलेंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव में वीर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को सत सत नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे बरखा कनवाल की वार्ता। वार्ता का विषय था बिस्मिल। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। देखो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: दोस्तों, कार्यक्रम में आइए अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण कुछ घटनाओं के बारे में। सन 1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था।

सन 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों की भस्म को पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बिखेरा गया था। सन 2003 में आज ही के दिन कार्निकोवा महिला टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित हुई थी। सन 2006 में आज ही के दिन नेपाली संसद ने आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त किया था। आज के दिन जन्मे हुए व्यक्तियों की अगर बात करें तो सन 1897 में आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जन्म हुआ। सन 1989 में आज ही के दिन भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का जन्म हुआ। तो ये तो थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। अब बारी आ गई है हमारे कार्यक्रम के उस भाग की जिसमें हम हर दिन अपने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछते हैं और सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हम अपने अगले दिन के कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दामोदर मेनन का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 10 जून 1906 में। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं कोमल जोशी, निकुंज जोशी हल्द्वानी से, वंदना और कपिल जोशी अल्मोड़ा से। तो आप सभी लोगों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा आज का प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हम अपने कल के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम। इसी के साथ अपने दोस्त भुवन जोशी को आज के इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुन्ने सभी दगड़ियन के मेर नमस्कार। दगड़ियो आज हम लाख रहा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 11 जून हूँ मनाई जा। यो दिवस का उद्देश्य नंतिनों और युवाओं के जीवन में खेलक महत्व के उजागरण तथा उन्हें शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास के बढ़ावा देना है। दगड़ियो खेल नंतिनों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊ। खेल शरीर स्वस्थ और मजबूत बनो, मानसिक तनाव कम हो तथा आत्मविश्वास बढ़ाओ। खेल नंतिनों में अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग और टीम भावनाओं का विकास करो। दगड़ियो यो आज यो दिवस मनोरंजन उद्देश्य छे यो कि प्रत्येक नंतिन खेलने का अवसर उका मिला। खेल नंतिनों का मौलिक अधिकार छे और उन्हें सीखने का रचनात्मक तथा खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक छे। यो अवसर पर विद्यालयों, खेल संस्थान और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिता, जागरूकता कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करी जा। दगड़ियो नंतिनों के मोबाइल और टीवी बटी दूर रख भी खेलों मैदानों में खेलने के लिए प्रेरित करी जा। दगड़ियो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस

हवन के खेलक महत्व के समझना और नैन्थिनों के पर्याप्त खेल अवसर प्रदान करने प्रेरणा दी। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और बेहतर समाज निर्माण के लिए खेलों के दैनिक जीवन हिस्सा बहुत आवश्यक है। तो दगड़ जो यूतो से आप लोगों ने बातचीत अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर और अब कार्यक्रम में अखिल सुन लो दीवान कनवाल और लता पांडे गई हुई शोलो की।

तो अच्छा आप लोगों ने लगा बातचीत अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर, और अब कार्यक्रम है कि सुन लो दीवान कनवाल और लता पांडे गई हुई शोलो की।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सफाई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: जागो ग्राहक जागो।
3: और अगड़ियो आज श्री पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जयंती। दगड़ियो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारत का महान क्रांतिकारी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें जयंती प्रत्येक वर्ष 11 जून को मनाई जा। उन्हें भारत के अंग्रेजी शासन बटी मुक्त करुणा लीजिए अपन जीवन राष्ट्र के समर्पित कर दे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जन्म 11 जून 1897 हूँ शाहजहाँपुर में भाव। उनर बौजू नाम मुरलीधर और इजक नाम मूलमती छी। नानछना बटी गए उनमें देशभक्ति भावना कूट कूट बटी भरी हुई छी। वो एक महान कवि लछी। उनल अनेक प्रेरणादायक रचना लिखी। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन प्रमुख नेताओं में एक छी। उनल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए युवाओं के देशक आजादी लीजी प्रेरित करो। वर्ष 1925 में हुई काकोरी कांड में उनर महत्वपूर्ण भूमिका रहे। यु घटना बाद अंग्रेज सरकार उनके गिरफ्तार कर ले। दगड़े मुकदमा बाद उनके फांसी सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में उनके फांसी दी गई। उन्हें हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपूर्ण बलिदान दी दे। दगड़ियों राम प्रसाद बिस्मिल जयंती हमन के देशभक्ति साहस त्याग और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दी। यो दिन विद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में उनका जीवन और योगदान पर कार्यक्रम आयोजित करी जानी। विद्यार्थियों के उन्हें आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी जा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक अमर नायक छी। उनर बलिदान और देश प्रेम सदैव याद करी जा। उनर जयंती हमन के राष्ट्र प्रति अपन कर्तव्यों स्मरण करूं और देश एक सेवा लीजिए प्रेरित न करे। तो युद्धी आप लोगों दगड़ बातचीत और दगड़ियों अब कार्यक्रम में आगे सुनो। किसान सम्मान निधि प्राप्त लाभार्थी प्रदीप सिंह गुसाई दगड़ करेंगे यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
4: में आज हम बात करने लग रहे किसान सम्मान निधि पर और यो बातचीत हम करने लग रहे हैं श्रीमान प्रदीप सिंह गोसाई जी। प्रदीप सिंह गोसाई जी रूढ़ीवाल चंद ग्राम रुटियाल गांव ब्लॉक ठाकुर जिला अलवर। गोसाई जी समझा पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारे से चंगरित भेंट वार्ता कार्यक्रम में। गोसाई जी आपको हमें क्या बताओ कि किसान सम्मान निधि किस आपको जानता
5: है? जो किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी एक दिसंबर 2018 में लागू करी। यह शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 24 फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में बेट को मतलब शुरुआत करी।
4: अच्छा।
5: तो उस बेट को यह शुरुआत है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मतलब 6,000 रूपए सालाना सहायता राशि हम उनके मिलू किसान के और यह मतलब तीन किस्त में हमको और DBT माध्यम हम सिद्ध हम बैंक खाते में जमा जा।
4: तो आप मिले सम्मान निधि?
5: हम उनका मिलू किसान सम्मान निधि।
4: अच्छा। तो जो सम्मान निधि जो राशि हो तो मिला आपका
5: साल में 6,000 रूपए मिलू और 2,000 किस्त 3 साल में 3 बार मिलू।
4: अच्छा।
5: और यह राशि हम जो मतलब हमारे खेत में जरूरतमंद हम कुछ बीज और दवा उपयोग करूँ या कुछ उपकरण ले लेना हम कृषि विभाग।

0: सब्सिडी मिली तो वहाँ हम इसे यूज करनु और हम पहाड़ जो छन भूमि जो छू जरा उबड़ खाबड़ सीढ़ी नुमा खेत छन आपदा मतलब उधर जानी मतलब पगेर बढ़ जाना कुछ ने तो पगेर चिड़ना काम जाकर बताए हमको बहुत मदद मिल गई चीज मतलब
1: किसान सम्मान निधि बहुत सारा मदद मिल गया तो जहाँ किसान सम्मान निधि लेना लीजिए आपको काम करना पड़ा
0: किसान सम्मान निधि लेने लिए ली हमका मतलब यह योजना लिए हमका जो हमका पीएम किसान निधि पोर्टल में जब एक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ो लेकिन पहले हम ऑफलाइन आवेदन हुई थी।
1: अच्छा
0: तो जब ऑफलाइन आवेदन हुई थी तो हमें आपको नजदीकी कृषि अधिकारी तक संपर्क कर दे और आपको ग्राम प्रधान तक संपर्क कर दे और वो हम सत्यापित कर दे जिसे वो फॉर्म का हम आप कृषि नजदीकी जो कृषि केंद्र होनी उन्हें अधिकारी उन्होंने ऑफिस में हम जम कर दिया जेल फिर अगिल का कार्रवाई कृषि अधिकारी जो हमें नजदीकी हुई वो अगिल ये कार्रवाई कर दी और ये हम मतलब हमको आश्वासन दी थी कि तुम्हारे जो एक जो है अंतर्गत या आप तुम्हारे यो मतलब यो हजार का बेरा।
1: अच्छा तो किसान सम्मान निधि अगर हमारे कोई और भाई लेना चाहिए तो ऊपर सबसे पहले जो कृषि अधिकारी सर उनसे बड़ी संपर्क करना पड़ा कागज के लगनी
0: जेमा कागज लगनी आधार कार्ड लगल बैंक खाता लगल और जमीन कागज लगल और फोटो लगल जेमा जमीन जो मतलब पात्र छू जमीन वो नाम पर जमीन हो चाहे और उमा ये छू की जमीन के बारे में मतलब जमीन जय नाम किसी की भूमि हो चाहे और परिवार में केवल एक सदस्य का वो योजना लाभ मिलल और वो बच्चे नाबालिग हल और वो मतलब सरकारी नौकरी में नहीं हल जिस टाइप हमने तो उसका लाजो सरकार और यह बात है किसी योगी भूमि होने से बात जरूरी है और बात है जो राजस्व विभाग हूँ हमारे पटवारी जीव जो को नहीं तो पटवारी जी द्वारा ये जमीन हमें मतलब आवेदक का नाम पर छू या है करे वो सत्यापन कर दिया जाए।
1: अच्छा
0: पटवारी जी सत्यापन कर दिया जाला जब फिर उसका हम सब कागज फॉर्म हम भर दे कृषि अधिकारी जगह हम सत्यापित कर दे फिर उसका हम सीएससी सेंटर द्वारा जो जन सुविधा केंद्र होगी उन बच्चों को हम ये ऑनलाइन भरना आज के समय।
1: अच्छा
0: किसान सम्मान निधि हम 2020 बजे ना था
1: 2020 बजे 2020 बजे आज 2026 तक तो आपको ये लाभ प्राप्त होगा और जमा राशि आपको लोन का मिले फिर आपको जो कृषि कार्य का लीजिए वह इस्तेमाल कर सकता
0: कृषि कार्य लीजिए दवा और किसी छोट मोट उपकरण जो होनी है हल अगोई दसूल कोटा हो ये चीज है गई और जो हमारे आपदा में कुछ छोट मोट दीवार गिर जानी खेत निशाओ तो उकला हम रिपेयर करना अलग अलग किसान अलग अलग समस्या भाई उम्र सब लोग जो आपो आपो तरीका सब यूज डबल का यूज करनी
1: हमारे जो किसान भाई
0: उनका तो बहुत एक किस्म आर्थिक सहायता उनका मिल जानी भाई और देखिए जो तो एल करीबन हमारे देश का प्रधानमंत्री 22वीं किस्त लगभग जारी कर ली पिछाड़ मार्च में 22वीं किस्त गई थी 23वीं किस्त इंतजार हमारे किसान भाई का हॉल
1: यह किस्त बराबर आप लोगों के प्राप्त हुई
0: यह किस्त बराबर हम लोगों का प्राप्त होनी बीच में कुछ लोग न आधार कार्ड बैंक अकाउंट का लिंक नहीं होने का थोड़ा लोगों का थोड़ा परेशानी है थी वो बात है हमारे नजदीकी कृषि अधिकारी नूल हमद का संपर्क कर दे बहुत बड़ी तरकल हमको बता कि या तुम गौन गौन कैंप लगा वो द्वारा फिर हमारे किसान जो मित्र थी उन्होंने बैंक द्वारा आधार कार्ड लिंक करे हुए फिर पुनर्सत्यापन करे हुए उनके ये राशि आज बराबर मिलने हमारे गाँव में। ये अलावा जो सरकार द्वारा अतिरिक्त जो सब्सिडी वाली योजना जो लोग उन्हीं हमारे विभाग में कृषि विभाग में उद्यान विभाग में तो मैं हम पूर फैद उठनू
1: जब तुम किसान सम्मान निधि प्राप्त होने फैद तुम उठना लागू और ये अलावा जब की प्रधानमंत्री जी एक योजना आई चले वो चीज जनधन योजना पिछले फैद उठा
0: जनधन योजना का हम फैद उठा हमारे गाँव में प्रदेश में जिले में सब लोग आपको जनधन खाता खोलो आपको जनधन खाता खोलो तो जनधन खाता खोलना यह हो कि हम एक आपको बचत खाता रहो जमा हम अपन कुछ लेन देन और कुछ जाम कर सकूँ और जो हमें सरकारी किस्त सरकार द्वारा जो हमको मतलब यह चीज मिलता जो

0: हम बैंक में अजान थे पहले के सी हम बा बैंक खाद नहीं उची लोग न बा गाँव में सब न बानी होती कुछ लोग न तब आती जो नौकरी पेशा वाले थी यहाँ जो ठूल कारोबारी लोग उची उन पा जो छू ये चीज होती आप जो आम आदिम आम किसान पा जो जनधन खाद
1: जो जो किसान सम्मान निधि राशि हो ना वो आप लोग उधर खात्मा से या फिर उनके हाथ में मिले
0: ये हमारा खात्मा हो
1: यानी कि आप लोगों के कोई बीच में बजट से कोई हाथ सीधे आप लोग उधर खत्म होगा
0: बीच में को बीच में क्या क्या मतलब को विभाग हस्तक्षेप नहीं हुआ और बीच में क्या कि पंच प्रधान ने कह कि दलाली नहीं रही थी तो हमारे खातन में या डबल को डबल हमारा खात्मा है जाए
1: अच्छा ये उद्यान विभाग द्वारा योजना चलनी वो कुछ योजना पूछा
0: उद्यान विभाग में हम योजना लागू करूँ आजकल डिप रजिस्ट्रेशन वाले चल रहा हो मतलब सब्सिडी मिल जाए और पॉली हाउस स्कीम होनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बेटी को हम 80% योगदान था हमको पॉली हाउस से मिलनी बीज दवा ये चीज हमका सब सब लोग सब्सिडी मिलनी तो ये हम ये चीजें सब चीजें मतलब आप
1: प्रधानमंत्री योजना
0: हाँ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कोई लाभ ले उठनु प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ऐसा जो अंतर्गत हमें गाँव में जो नदी बेटी को जो नल और वो चीन नहर टाइप बड़ो वो हमें सिंचाई ली काफी मतलब पाइपलाइन द्वारा सिंचाई वाले बहुत बढ़िया स्कीम है योजना है और हम लाभ उठाना हमारे गार्डन में प्रॉपर तरीके से
1: यानी आपको हर योजना का लाभ उठन लग रहा
0: हाँ
1: तो हम नॉर्थ में फिर सपान निधि पर उन्हों तो ये हमारे जो ग्रामीण सरकार के लाभ होनी
0: ग्रामीण का पूर्व लाभ उठनी हम ग्रामीण लोग पूर्व लाभ उठनी जो मिल मेरे संज्ञान में थी वो अधिकतर ग्रामीण लोग लाभ उठनी
1: आप जैसे ये फैल उठना था तो ये अलावा ये तो आपका प्राप्त होना लग रहा है तो किसान सम्मान निधि आप हो गए और क्या फायदा नहीं
0: किसान सम्मान निधि तो यो फायदा नहीं है हमने जो हर साल में हमका 3 किस्त में खाते में 2000 रुपए तौर पर 3 किस्त में हमारे पास डबल आ जाए नी जेल हमारे जो हमारे खेत बाड़ी में काफी राहत मिली बीज वगैरह ली जय जिस समस्या भी छोट मोट समस्या हमारे हल जानी कहकर बीज आए को कृषि यंत्र ले आए दातुल कुटाओ और धनिया ये चीज ले आए और ज्यादा जी चीज आवश्यकता भेज वो चीज हम वाला हम कृषि विभाग में जो सब्सिडी पर रेट मिली तब हमको और बड़ी हमको फायदा उठ जाने
1: तो यानी आप बोल कर कोई चीज अगर प्राप्त हो और जबर से तो आपको सम्मान निधि जो प्रेस होगी बटी आपको सहायता बहुत मिले सम्मान निधि
0: डबल सहायता मिली एक तो हमको सरकार द्वारा सहायता मिल गई फिर दो हमको डबल नूल कृषि विभाग या उद्यान विभाग बेटी को या पशुपालन विभाग बेटी को हम किए थे वहाँ पे हम उस दवाई को और सब्सिडी में हमको वहाँ पर अधू रेट में दवाई ले मिल जाए हमको वो उपकरण हमको अधू रेट में मिल जाए
1: यानी कि आपको फायदा फैज
0: हमको फायदा फैज चुका है
1: तो प्रदेश सिंह जी आप और के कौन सा रहा हमारे श्रोता से
0: आप श्रोताओं से तो ये पहुँचान की जो लोग ने किसी समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो लोग छूट गया कई दूरस्थ गाँव में जो लोग छूटी हुई या कहते के वाई सी नहीं होने कारण सम्मान निधि नहीं मिली आप नजदीकी कृषि अधिकारी आप ग्राम पर पहले ग्राम प्रधान से मिल रहे कृषि अधिकारी पटवारी को संपर्क कर रहे आप पुनर्सत्यापन कर रहे और आप उनके सम्मान निधि उनका लघु से
1: गुसाई जी तुम्हारा उनके बच्चू किसान सम्मान निधि बारे में तो बड़ी जानकारी दे ये लीजिए तो बहुत बहुत
0: धन्यवाद
2: तो दगड़ियों वाला आप लोग जल किसान सम्मान निधि के लाभार्थी श्री प्रदीप सिंह गोसाई दगड़ करी के यो छेद संकलित भेंट वार्ता सुनी और अब कार्यक्रम आगे सुनो प्रहलाद सिंह मेहरा कैफी शुरू की।

0: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, TB रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और TB की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में TB के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर TB के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: और दो रेडियो कार्यक्रम आखिर में सुन लो नंदलाल आर्य गई हुई शिवलोक गीत।

दगड़ियों ला आप लोग नल नंदलाल आर्य गई फिशियोलॉजी सुनो और अब बखत है को आज अब उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न कर लग बोलो हम आप लोग दगड़ फिर बातचीत करूँ एल मकान दिया नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। चमोली जिले के देवाल विकासखंड में एक वाहन के नदी में गिरने से 4 लोगों की मौत, अन्य लापता लोगों की तलाश जारी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल से प्रस्तावित 2 दिवसीय देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास विषय पर केंद्रित इस बैठक में देशभर से उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति नीति लागू की गई है। इसके तहत 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सगंध खेती से आच्छादित कर 91,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि चंपावत और नैनीताल में लगभग 5,200 हेक्टेयर क्षेत्र में दालचीनी घाटी विकसित की जा रही है, जिससे किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला दालचीनी की उन्नत खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: जहाँ मसाले में इसका प्रयोग होता है, मैंने कटकर रूप से देखा कि औषधि में भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अभी चंपावत नैनीताल से हमने इसकी शुरुआत की, और हमारे जो बंजर खेत है जहाँ पर खेती नहीं हो रही, क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे विभाग इसके स्तर पर कार्रवाई करेगा। और 91,000 किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है, और आने वाले समय में दालचीनी के क्षेत्र में उत्पाद करने वाले प्रदेशों में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश होगा। जो चिंतन यहाँ पर करेंगे, इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका वो क्षेत्र में आगे काम कर रहा है, और देश के अंदर इन संस्थान से जुड़े हुए विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, निश्चित मिलेगा।
2: कार्यशाला में श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, किसान और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज फलस्वाणी गांव में सीता सर्किट परियोजना के प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के महत्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समन्वित कार्य योजना तैयार करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने परियोजना का विकास स्थानीय पहाड़ी वास्तुकला और पारंपरिक स्वरूप को ध्यान में रखकर करने पर जोर दिया।
4: माननीय मुख्यमंत्री घोषणा यहाँ सीता सर्किट के लिए हो रखी थी, तो उसी के साथ हम लोग जो ग्रामवासी हैं, साथ में हमारे जो अधिकारी हैं और आर्किटेक्ट और इंजीनियर, सभी के साथ में यहाँ पे विजिट किया, तो उसमें गांव वालों के भी सुझाव लिए गए हैं। और यहाँ पे मेनली इस मंदिर को थोड़ा भव्य बनाने के लिए, साथ में यहाँ जो साइनेजेस हैं, जो यहाँ की कहानी है उसको भी जनता तक पहुँच सके, उसके संबंध में डिस्कशन किया गया। प्लस रोड से ये दिखता भी नहीं है कि ये मंदिर यहाँ पे इसकी क्या महत्ता है, तो इसके लिए गेट आदि बनाने के लिए और साथ में यहाँ वेटिंग एंड धर्मशाला का निर्माण करने के लिए, तो ये तीन चार मेन प्रोजेक्ट्स हैं। तो कल यहाँ पे सभी गांव वालों के साथ में भी बैठक की जाएगी विभागों के द्वारा, जिससे जमीन की जो स्थिति है वो क्लियर हो सके।
2: जिलाधिकारी ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले में देवाल विकासखंड के कुनार गेस मोटर मार्ग पर कुनार के समीप आज एक वाहन के केल नदी में गिर जाने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन की टीमें अन्य लापता लोगों की तलाश कर रही हैं।
5: देवाल और खेस के क्षेत्र में, बीच के क्षेत्र में एक छोटा यात्री वाहन, जिसमें अभी ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग सवार थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जो नीचे खाई में गिरा है। अभी तक इसमें 4 शव निकाले जा चुके हैं। 2 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया है, उनको निकटस्थ चिकित्सालय भेजा गया है और उनके हेलियोबुलेंस की रिक्विजिशन की गई है। शेष बचे लोगों की तलाश के लिए वहाँ पे DDRF और SDRF लगातार काम कर रहे हैं।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल से प्रस्तावित 2 दिवसीय देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आज राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति आशियाना परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति कल देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति आशियाना परिसर में 132 एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगी। श्रीमती मुर्मू 13 जून को भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। मसूरी को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से

0: ई रिक्शा शटल सेवा की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रशासन ने शहर के विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा का सफल ट्रायल किया। SDM राहुल आनंद ने बताया कि पहाड़ी मार्गों और तीखी चढ़ाइयों पर ई रिक्शा का ट्रायल सफल रहा है और भविष्य में इसके संचालन के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।
1: हमारी एक पहल चल रही है कि हम जो यहाँ पे साइकिल रिक्शा है उसको फेज आउट करके यहाँ पे ईवी जो ई व्हीकल कोई है चाहे वो ई ऑटो के फॉर्म में हो सके उनको लाने के लिए, तो उसी क्रम में आज एक ट्रायल किया गया जिसमें विभिन्न कंपनियों के विभिन्न मॉडल्स को टेस्ट किया गया कि क्या वो मसूरी की तीखी चढ़ाई पे लोड बेयर करने के साथ वो सेफ्टी के साथ चल सकते हैं। तो ट्रायल जो हमारा वो सफल रहा। अब इसके बाद हमें इसको निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन से रूट्स पे कितनी व्हीकल्स को हम अनुमति देंगे, तो इसका निर्धारण अभी किया जाना है। भविष्य में रणनीति बनाई जाएगी कि किन रूट्स पे कितनी संख्याओं के साथ इसको परमिट किया जाएगा।
0: टिहरी जिले की नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र विक्रम सिंह पवार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं 7 वार्ड सभासद पद पर भाजपा के 4 और कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। उधर चंपावत जिले के नवगठित नगर पंचायत पार्टी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष बने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। चमोली जिले के देवाल विकासखंड में एक वाहन के नदी में गिरने से 4 लोगों की मौत, अन्य लापता लोगों की तलाश जारी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल से प्रस्तावित 2 दिवसीय देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं मनहर उदास के स्वर में।

मनहर उदास की गाइस भक्ति रचना के बाद आइए अब सुनते हैं पंडित रतन मोहन शर्मा के स्वर में ये भक्ति वंदन।

पंडित रतन मोहन शर्मा की गायी सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटेन गढ़वाली में प्रदेश का खबरों का दगड़ी में सुनील नेगी। पहली जरूरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करी। बोली, केंद्र और राज्य सरकारों का मिली जतन विकसित भारत का दृष्टिकोण की भावना तय साकार करण तय जरूरी। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती तय बढ़ावा दीण का उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी देहरादून में द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत करी। उत्तरकाशी जिला का सीमांत गांव बगोरी में विशेष गंभीर दोबारा से जांच मुहिम तय। मिल लोगों को साथ, बियोलन बांटे गणना प्रपत्र। और आगामी 15 जून तय नैनीताल में आयोजित होने वाली कैंची धाम मेला तय, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियां करें तेज। अब खबर एक छोड़ बिटिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता की दौर से गुजरनी चाहिए, लेकिन भारत आत्मविश्वास और मजबूत पक्का इरादों का साथ विकास का बाटो पर अग्नि बढ़नु चाहिए। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर दबेरिम श्री मोदी बोली कि जन जन भारत विकसित भारत का लक्ष्य की ओर बढ़नु चाहिए। इन्हीं में केंद्र और राज्य सरकारों की मिलीजुली जिम्मेवारी और भी बढ़ जानी। प्रधानमंत्री ने बोली कि राज्यों का बीच सहयोग संवाद और विचारों को लेन देन होने चाहिए। उन्होंने बोली कि नीति आयोग ये माँ सहयोग को जरूरी भूमिका निभा सकदू, जैसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बीच विचारों को सही ढंग से लेन देन वे साक और विकसित भारत का लक्ष्य की दिशा में मिलिया जुलिया प्रयासों तय ताकत मिल सक। 2047 तक विकसित भारत कुणी समावेशी मानव विकास विषय पर केंद्रित ई बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास तय बढ़ावा दीण और रोजगार का स्थायी अवसर बनाण का जुगतों पर सोच विचार करे गया। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती तय बढ़ावा दीण का उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून में द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत करी। ये मौका पर उन बोली कि राज्य में सगंध खेती तय बढ़ावा दीण कुणी महक क्रांति नीति लागू करी ची। ये का भीतर 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र तय सगंध खेती से पूर्व विस्तार कर 91,000 किसानों तय फायदा कराने की मंशा रखी ची। उन बताई कि चंपावत और नैनीताल में लगभग 5,200 हेक्टेयर क्षेत्र में दालचीनी घाटी विकसित करे जाने चाहिए, जैसे किसानों और उद्यमितों को नया मौका तैयार होला। कृषि मंत्री बोली कि यह कार्यशाला दालचीनी की उन्नत खेती खोजबीन तैयार करणक बनाणक और व्यापार तय बढ़ावा दीण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाली।
1: यहाँ मसाले में इसका प्रयोग होता है, मैंने कटकर रूप से देखा कि औषधि में भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अभी चंपावत नैनीताल से हमने इसकी शुरुआत की और हमारे जो बंजर खेत यहाँ पर खेती नहीं हो रही क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे विभाग इसके स्तर पर कार्रवाई करेगा और 91,000 किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है और आने वाले समय में दालचीनी के क्षेत्र में उत्पाद करने वाले प्रदेशों में हमारा प्रदेश अग्नि प्रदेश होगा जो चिंतन यहाँ पर करेंगे। इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका वो क्षेत्र में आगे काम कर रहा है और देश के

0: इन संस्थान से जुड़े हुए मेरे शिष्य यहाँ पर आए हैं, निश्चित ही उनका लाभ उनको मिलेगा।
1: पौड़ी की जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरियन सीता सर्किट परियोजना का भीतर आज फलस्वाड़ी गांव में प्रस्तावित कार्यों की जांच पड़ताल करी। ये के दौरान उन क्षेत्र का धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व से जुड़ी अलग अलग बिंदुओं पर मिलीजुली कर कार्य योजना तैयार करने का संबित अधिकारियों ते दिशा निर्देश देने। जिला अधिकारी परियोजना का विकास स्थायी पहाड़ी वास्तुकला और पुरानी चाल चलन ते ध्यान में रखी करण पर जोर दिया। उन संबंधित अधिकारियों ते परियोजना की अंतिम रूपरेखा और प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दें।
2: मुख्यमंत्री घोषणा यहाँ सीता सर्किट के लिए हो रखी थी, तो उसी के साथ हम लोग जो ग्रामवासी हैं, साथ में हमारे जो अधिकारी हैं और आर्किटेक्ट और इंजीनियर सभी के साथ में यहाँ पे विजिट किया, तो उसमें गांव वालों के भी सुझाव लिए गए हैं। और यहाँ पे मेनली इस मंदिर को थोड़ा भव्य बनाने के लिए साथ में यहाँ जो साइनेजेस है, जो यहाँ की कहानी है उसको भी जनता तक पहुँच सके, उसके संबंध में डिस्कशन किया गया। प्लस रोड से ये दिखता भी नहीं है कि ये मंदिर यहाँ पे इसकी क्या महत्ता है, तो इसके लिए गेट आदि बनाने के लिए और साथ में यहाँ वेटिंग एंड धर्मशाला का निर्माण करने के लिए, तो ये 3-4 मेन प्रोजेक्ट्स हैं। तो कल यहाँ पे सभी गांव वालों के साथ में भी बैठक की जाएगी विभागों के द्वारा, जिससे जमीन की जो स्थिति है वो क्लियर हो सके।
1: उत्तरकाशी जिला में भारत तिब्बत सीमा से सटिया भटवाड़ी तहसील का सीमांत गांव बगोरी में विशेष गंभीर दोबारा से जांच SIR मुहिम अभियान का भीतर मतदाता सूची का कार्य तय मिलीजुली बूथ लेवल अधिकारियों BLO गांव में घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटी और गांव वालों तय अभियान की जानकारी दिया। BLO मतदाताओं के तय प्रपत्र सावधानी पूर्वक भरना और निर्धारित समय का भीतर जमा करना कुनी हौसला दिया। अधिकारियों ने बताई कि 7 जुलाई तक चलन वाला ये विशेष अभियान का माध्यम से प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर मतदाता सूची तय साफ नहीं और बिना गलतियों को बनाने को प्रयास करे जानु छ। गांव वालों निर्वाचन आयोग की यही पहल तारीफ करते हुए बोली कि ये पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज हुए सकुलू और चुनावी प्रक्रिया अधिक साफ सुथरी बने। वकील जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्यन जिला निवासियों से ये अभियान में बढ़ चढ़ी कर भागीदारी करने की अपील करी। उन लोगों से BLO ते आवश्यक मदद दीण और गणना प्रपत्र समय से भरीकर जमा करने का आग्रह करी।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानू जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: आगामी 15 जून तय नैनीताल में आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध कैची धाम मेला तय लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी। श्रद्धालुओं तय आरामदायक यातायात और भली सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य से सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और AC सिटी मनोज कत्यालन संबंधित विभागों का अधिकारियों का दगड़ी स्थलीय जाँच पड़ताल कारी। अधिकारियों सड़क चौड़ी और सुधार कार्यों की तरक्की को जांच करदा हुए संबंधित विभागों तय निर्माण कार्य में तेज लाण और मार्ग तय जल्द पूरी तरह दुरुस्त करण का निर्देश दें। प्रशासन मेले का दौरान यातायात व्यवस्था तय आसान बनाने कुनी सड़कों किनारा लगाया फड़ ठेलों और अस्थाई अतिक्रमण तय तुरंत हटाने का निर्देश भी जारी करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा तरफ बिटिन जिला चिकित्सालय में विधिक सहायता केंद्र बनाए गए। अस्पताल का प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SC गढ़कोटी ने बताई कि विधिक सहायता केंद्र में प्रत्येक बुधवार तय अधिकार मित्रों द्वारा दिव्यांगजनों बुजुर्गों और असहाय लोगों को स्वस्थ जांच करण में मदद करे जानी।
4: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यहाँ हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसमें प्रत्येक बुधवार को हमारे ये अधिकारी मित्र लोग आते हैं। इनके द्वारा जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट हैं, विकलांग हैं या जो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ दिखाना है, उन लोगों की मदद करते हैं लोग। उनके फॉर्म भरवाने में, उनको लैब में ले जाने में या और कोई जाँचें करवाने में उन लोगों की काफ़ी मदद ये लोग करते हैं।
1: प्राधिकरण की अधिकार मित्र भावना तिवारी ने बताई कि ये केंद्र में गरीबों असहायों दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं की सहायता कर दें।
5: यहाँ पर जिला अस्पताल में हमारा लीगल एड क्लिनिक खुला हुआ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत, तो हम लोग यहाँ पर अधिकार मित्र हर बुधवार को जिला अस्पताल में आकर यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन्स की मदद करते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी गर्भवती महिलाएं या कोई भी पीड़ित व्यक्ति आते हैं तो उन लोगों की हम हेल्प करते हैं, उनको डॉक्टर तक ले जाने से लेकर उनको व्हील चेयर दिलवाने से लेकर और दिव्यांग सर्टिफिकेट भरने में हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हर बुधवार को यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल बैठता है जिसमें हाथों हाथ

0: दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, और जो भी हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुहिम चलती है हम उनके पंपलेट भी यहाँ पर पब्लिक के बीच में बांटते हैं ताकि दूर दराज गाँव से आए हुए लोगों में जागरूकता फैल सके।
1: आखिर में मुख्य खबर एक दा फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करी, बोली केंद्र और राज्य सरकारों का मिली जतन विकसित भारत का दृष्टिकोण की भावना तें साकार करण तें जरूरी। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती तें बढ़ावा दीण का उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी देहरादून में द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत करी, और उत्तरकाशी जिला का सीमांत गाँव बगोरी में विशेष गंभीर दोबारा से जाँच मुहिम तें मिल लोगों को साथ बियोलन बांटी गणना प्रपत्र, और आगामी 15 जून तक नैनीताल में आयोजित होने वाला कैंची धाम मेला तय लेकर जिला प्रशासन और पुलिसन तैयारियां करीन तेज। ये कदगड़ी गढ़वाली में प्रदेश को खबरों को यू अंक समाप्त हुंद, नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं, यह कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत छू आपू सभी लोग न कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में हर दिन की चार आपू लोगों दगाड़ बातचीत करूल, आपू लोगों के जानकारी दियुल और दगड़ में आपू लोगों मनोरंजन ले करूल लोकगीतों दगड़। श्रोताओं, हमार किसान भाई बहनियों के लिए जी अपन खेती बाड़ी सबू है ज़्यादा जरूरी हैं। अगर खेत बाड़ी भली है रहे हैं, भल फसल का उत्पादन है रूँ तो किसान भाई बहनी ले संतुष्ट रूनी, किले की खेतों में उन्हें बहुत मेहनत लगे। तो यस में जब फसलों का उत्पादन भल हूँ, बाजार में उनके अपनी फसलों का दाम भल मिलनी, तो उनके खुशी हूँ बहुत स्वाभाविक बात छू। श्रोताओं, अगर हम बात कर लूँ खेतों और खेतों में फसलों का उत्पादन एक, तो बार बार यह बात करी जाए कि खेतों में फसलों का उत्पादन खेतों में मौजूद माटेक उर्वरा शक्ति पर ले निर्भर करूँ। श्रोताओं, खेतों में मौजूद माट किसानों के लिए सबू है जरूरी हूँ, किले की जतुक भल माट खेतों में होल और जतुक बढ़िया गुणवत्ता वाल होल उतु के भली पैदावार खेतों में है। यानी कि हम कह सकनूं कि माटेक गुणवत्ता का सिद्ध असर फसल पैदावार पर पड़ो। श्रोताओं, माट में मौजूद पोषक तत्व माटेक उर्वरा शक्ति के बढ़ोना दगाड़ दगाड़ फसलों की भली पैदावार में ले मदद करनी। तबे तो बार बार किसान भैवणियों के माटेक जांच करुणे की सलाह दीजिए। श्रोताओं, किसान भैवणियों के यह बात जरूर ध्यान धरण चाहे कि उनर खेतों का माट उनर फसलों के लिए बहुत जरूरी छू। बखत बखत पर अपने खेतों में मौजूद माटेक जांच कराते रूण चे। येल माट में पोषक तत्वों की मात्रा बार में पत्त चल जा, और फिर एक बार जब माटे की गुणवत्ता के बारे में वी में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी आप लोगों के पास हो, तो वीक हिसाबल आप लोग खेतों में फसलों की बुआई कर सकता। और जब आप लोग माट में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के हिसाबल फसलों की बुआई करछा, तो फसलों उत्पादन ले भल हूँ, पैदावार ले भल मिले, और फिर स्वाभाविक बात छू कि वील आप लोगों के वील आर्थिक लाभ ले जरूर भल मिलल। श्रोताओं, माटक जांच करे बेर मृदा स्वास्थ्य कार्ड ले जरूर बढ़ने छे। माट में मौजूद पोषक तत्वों कमी पेशी के हिसाब खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करण छे, किले की जरूरत है ज़्यादा खाद ले माट के नुकसान पूजे। तो श्रोताओं, अगर अपने मनल खेतों में क्वेल खादक आप लोग छिड़काव कर छा, तो वील फसलों पर गलत नुकसान पड़ू, या हम कह सकनू वील विपरीत प्रभाव फसलों में पड़नी। तो यह कह लीजिए जरूरी छू कि सबू है पहली फसल बुण है पहली आप लोग अपन खेतों में जो माट छू वीक जांच कराओ, वीक उर्वरा शक्ति की जांच कराओ, उमें मौजूद पोषक तत्वों की जांच कराओ, ताकि आप लोग अघिल के जोले फसल बोला उके बुण में आसानी हो, माटे की उर्वरा शक्ति भल बनी रहो और फसलों के उत्पादन ले भल बढ़ी रहो। तो श्रोताओं, यही क्रम में खेती बचाव अभियानक अंतर्गत मृदा परीक्षण और वीक लाभ विषय पर कार्यक्रम में अगिल आप लोगों के सुनूनू जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अल्मोड़े सहायक कृषि अधिकारी बीना बिष्ट जुदगढ़ करी हुई हमारी बातचीत। श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अल्मोड़ा की सहायक कृषि अधिकारी मिस बीना बिष्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आखिर मृदा परीक्षण या फिर मिट्टी का परीक्षण करना क्या है और मृदा परीक्षण करवाना आवश्यक क्यों है।
1: मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि मृदा परीक्षण किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे मिट्टी की पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा फसल उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी मिलती है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मृदा परीक्षण क्या है और ये क्यों आवश्यक है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे किसानों को एक साइंटिफिक अप्रोच मिलती है अपनी खेती बाड़ी करने के लिए।
0: तो मैम, अगर हमारे किसान भाई बहन
2: अपने खेतों की मिट्टी की अगर वो जांच कराना चाहते हैं तो वो अपने खेतों से मिट्टी के सैंपल किस प्रकार ले सकते हैं?
1: हम बेसिकली फार्मर को ये बताना चाहेंगे कि मिट्टी का सैंपल लेना है, उसमें क्या होता है आपके फसली जो आपका फसली समय आता है उस समय आपको सैंपल लेना है, यानी कि जब आपका खेत खाली हो, ठीक है, एक खरीफ की शुरुआत और रबी की शुरुआत से पहले जब खेत खाली हो तब आपको अपने सैंपल्स लेने हैं।
2: इसके अलावा मैम, जब खेतों से सैंपल लिए जाते हैं तो उस वक्त किन किन बातों का खास ख्याल किसानों को रखना चाहिए?
1: इसमें मुख्यतः आपके 6-7 बिंदु होते हैं, इन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि खेतों का चयन करना होता है, जैसे कि एक जैसी मिट्टी और फसल वाले खेत के नमूने लेना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की भूमि को देखना पड़ता है, जैसे कि कोई ऊंची है, कोई नीची है, कोई सीढ़ी नुमा है, कोई नदी किनारे है, जैसे बंजर आदि, उस अलग अलग नमूने लेने पड़ते हैं। दूसरा होता है कि जब नमूना लेते हैं तो खेत की सफाई करनी पड़ती है, जैसे कि जहां आपने चयन किया उसमें नमूना लेने वाले स्थान में घास पत्तियां या पत्थर आदि जो भी उसको हटा देना है आपने जो सिलेक्ट किया है। दूसरा होता है कि हमको फिर उसमें वी आकार का गड्ढा खोदना होता है, एक खेत के हम 8-10 अलग अलग स्थानों पर उसका लगभग 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक वी शेप का आकार गड्ढा खोद लेते हैं, वो खुरपी की मदद से या फावड़े की मदद से आपके पास जो भी उपलब्ध है। तो फिर बाद जो आपने नमूने लिए हैं उन नमूनों को आप एक बाल्टी में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे जितनी भी मिट्टी आपने आपने अलग 8-10 सैंपल लिए थे वी शेप में 15-20 सेंटीमीटर के, तो आपको उसको इकट्ठा कर लेना है। आपने अच्छे से मिट्टी मिला ली है, फिर उनमें से आपका दूसरा पॉइंट आएगा आपका प्रतिनिधि नमूना चुनना, जो आप सैंपल लैब को देना चाहेंगे, प्रयोगशाला को भेजना चाहेंगे, तो उनमें से क्या होता है मिश्रित मिट्टी को आप मिक्स कर लेना, ठीक है, पूरा जितना आपने लिया उसको मिट्टी को मिक्स करने के बाद आपको 4 भागों में बांटना है, एक ढेर बना के 4 भागों में उसको बांट लेना है। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको आमने सामने के 2 भागों को हटा देना है, बचा शेष 2 भाग मिला वो 2 भाग आपको संभाल कर रखना है, और जो आपको ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी पड़ती है जब तक आपके पास 500 ग्राम मिट्टी ना बच जाए, या आपका 500 ग्राम का मिट्टी का एक सैंपल बन गया जो एक प्रतिनिधि नमूना होता है जो आप लैब को भेजेंगे। अब हुआ, आपने ले लिया, अब मिट्टी को जो आपने 500 ग्राम की मिट्टी ली है उसको साफ कपड़े या प्लास्टिक की थैली में भर देना है, उस पर किसान अपना नाम, गांव या खेत की संख्या या फसल आपने जो ली थी उसका नाम उसमें लिख के आप यहाँ प्रयोगशाला में दे सकते हैं। दूसरी एक अन्य बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी होती है जो किसान को लेनी चाहिए, जब आप सैंपल चूज कर रहे हैं एक ऐसा क्षेत्र या एरिया ना चूज करें जिसमें खाद का ढेर हो या मेड़ हो, नालियां हो या पेड़ की छांव वाला एरिया, असामान्य स्थानों से नमूना नहीं लेना है। फिर नमूना लेने के तुरंत बाद ही परीक्षण के लिए आपको जल्दी ही भेज देना है, इस प्रकार आप जो लिया गया नमूना है तो पूरे खेत की मिट्टी का सही प्रतिनिधित्व करता है
2: जी।
1: और आपका परीक्षण के परिणाम बिल्कुल सही आएंगे।
2: तो मैम, जैसे आपने बताया कि एक प्रतिनिधि नमूना जब कोई किसान लैब के पास भेजेगा तो किसानों को फसलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए मृदा के किन किन पोषक तत्वों का परीक्षण आवश्यक रूप से करवाना चाहिए?
1: जैसे कि आपने बोला कि अगर किसान अपनी अच्छी फसल लेने के लिए जब वो अपना सैंपल ले रहा है तो उसको मोस्टली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके जो पोषक तत्व होते हैं, मुख्य 3 होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसकी मुख्यतः जांच की जाती है
2: जी,
1: वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
2: इसके अलावा मैम, जब लैब में जब मिट्टी की जांच हो जाती है और जब उसके बाद मिट्टी से जुड़ी हुई जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसे किसानों को फिर समझाया कैसे जाता है?
1: जब किसान हमारे पास सैंपल्स लेके आते हैं तो हम लोग उन सैंपल्स की जांच करते हैं, जांच करने के उपरांत हम लोग उसमें रिकमेंडेशन देते हैं, जैसे जितनी ही उपलब्धता आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की या कोई भी पोषक तत्व इसकी जो भी उपलब्धता आती है उसके अनुसार जो फसल का चयन किया है उस फसल के अकॉर्डिंग उनको रिकमेंडेशन मिलती है, और उसमें मुख्य बिंदु पूरे उजागर होते हैं, जैसे कि बताया गया होता है कि इसमें कमी है या मात्रा अधिक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा गया होता है और आपको पूरा उसमें रिकमेंडेशन दिया होता है और उसकी पूरी जानकारी फार्मर को बता दी जाती है।
2: इसके अलावा मैम, बहुत बार किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाइए, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप थोड़ा हमारे किसान भाई बहनों को समझाइए ताकि उन्हें समझ आ सके कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की इतनी आवश्यकता क्यों होती है।
1: जैसे कि आप सबको बताना चाहूंगी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 से लागू है, के अंतर्गत किसान के पूर्ण अनुदानित मतलब फ्री में उनकी सैंपल्स की जांच की जाती है। मुख्यतः क्या होता है कि उसमें स्वास्थ्य कार्ड योजना में आपके मुख्य 14 मृदा की जो स्वास्थ्य के 14 बिंदुओं को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें आपका पीएच होता है, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया और आपका ईसी हो गया, और एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच की जाती है, जिसमें रिपोर्ट कार्ड जनरेट होके आता है और जिससे उसमें आपको जो भी फसल और किसान चाहता है उन फसलों का रिकमेंडेशन दिया जाता है और सुधारीकरण भी दिया जाता है।
2: तो मैम मृदा स्वास्थ्य कार्ड से हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर किसान भाई बहन मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं तो उससे उनकी फसल पैदावार में सुधार आ सकता है और क्या फसल की पैदावार बढ़ सकती है?
1: हाँ, सॉइल टेस्टिंग की बहुत लाभ है, यानी कि मृदा परीक्षण के बहुत से लाभ है, जैसे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और जो आपका फर्टिलाइजर यूज करना है, उर्वरक जो यूज करना है, उसकी लागत भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना रिकमेंडेशन दिया होगा क्रॉप में कुछ पोर्शन आपका आपकी मृदा देगी, कुछ पोर्शन जो नहीं मिल रहा है वो आपका खाद देगा,
2: जी
1: उसके अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस क्रॉप हो जाती है और आपको लाभ बहुत मिलता है। एक तरफ से उसको बोला जाए कि संतुलित पोषण प्रबंधन हो गया, अगर आपने जो ऑलरेडी जो आपकी मिट्टी जो उसको पोषक तत्व दे रही है और जो फर्टिलाइजर हम उसको रिकमेंडेशन करेंगे, वो दोनों से संतुलित पोषण प्रबंधन हो जाएगा मिट्टी का। दूसरा जो आपकी इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी सॉइल टेस्टिंग करने के उपरांत किसी मिट्टी में कमी आती है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी की पहचान भी हो जाती है,
2: जी
1: जिसमें पता चलता है कि हमें नाइट्रोजन कम है, पोटाश कम है या पोषक तत्व कम है, उसका पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है, मिट्टी के गुणों के अनुसार भी आप एक सही फसल का चुनाव करने में आपको मदद मिल जाती है और मिट्टी की अम्लता, क्षारीयता, लवणता की जानकारी मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत से फार्मर्स क्या होते हैं कमर्शियल क्रॉपिंग में भी आ चुके हैं, है ना। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पर्यावरण का एक संरक्षण भी हो जाता है। आपने ज्यादा देखा होगा कि जहां जहां बार बार सेम टाइप का फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका आसपास के जो पानी के पॉइंट्स होते हैं या कोई आपके जलीय स्रोत होते हैं वो भी खराब होते हैं, मिट्टी भी खराब हो जाती है। जो आपका उर्वरक है जो भी है उसको आप बहुत एक संतुलित उपयोग करेंगे तो फसल की गुणवत्ता में सुधार भी होता है। ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादा यूरिया लगाने से क्रॉप में भी नुकसान होता है, जैसे
2: जी
1: आपको फसल है यूरिया डालने से बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी, जिसमें कीट पतंगे लगने का ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो जितना फसल की रिक्वायरमेंट जितनी जरूरत है आप उतना ही अप्लाई करोगे। ज्यादा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन से क्या होगा कि नमी बन जाती है क्रॉप में, विग्रेस ग्रोथ भी दिखती है जो आपके अन्य कीट पतंगों को अट्रैक्ट करती है खाने के लिए, तो आपका आप जबरदस्ती का मतलब आप अपने खुद ही मुसीबतों को मोल देना हिसाब हुआ होगा उसमें। तो
2: बिल्कुल
1: दूसरा क्या होता है कि उत्पादन बढ़ाने में जो आपने किसान का आय जो होती है वृद्धि हो जाती है, लागत घट जाती है और उत्पादन बढ़ जाता है।
2: जी। तो मैम जैसा कि आपने भी बताया कि मृदा परीक्षण कराने के पश्चात जो भी फसलों की बुआई की जाती है तो उसमें लागत कम आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है, तो भाई बहनों को ये बताना चाहें कि मृदा परीक्षण के पश्चात उन्हें फसलों की बुआई करते हुए किन किन खास चीजों का ख्याल रखना चाहिए?
1: इसमें मुख्यतः आपके हम लोग इसको 8 से 10 बिंदुओं में बताना चाहेंगे। पहला क्या होता है कि मृदा परीक्षण की रिपोर्ट को आप समझ जाते हो अच्छे से, इसमें आपको पता चल जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटाश या पीएच और
2: जी
1: आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो स्थिति है वो आपको दिख जाती है। दूसरा क्या होता है, आप मिट्टी की उर्वरता और पीएच और उपलब्धता के अनुसार पानी या फसल जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप उपयुक्त फसल का चयन करते हैं।
2: जी
1: तीसरा आया कि आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग भी करने लग सीख जाते हैं, जैसे आपके परीक्षण की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार ही आपको उर्वरक डालने की आपको उसमें रिकमेंडेशन मिलती है ना। फिर आवश्यकता के अनुसार आप जिंक, सल्फर, बोरोन जो छोटे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
2: जी
1: दूसरा आपका अगर पीएच खराब है मिट्टी में आप पीएच को सुधार भी कर सकते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि अगर हमारी मिट्टी मिट्टी हमारी अम्लीय निकलती है तो हमको चूना जैसे कि लाइम और क्षारी मिट्टी के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करने के विशेषज्ञ सलाह भी देते हैं।
2: जी
1: दूसरा क्या होता है, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जैविक खाद का उपयोग करने के लिए, जैसे गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मिलाने से मिट्टी में जो आपका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है और आपका उसका और उर्वरता में सुधार होता है। आप उत्तम बीज का चयन भी करते हैं, जैसे आपके सर्टिफाइड सीड होते हैं और डिजीज टॉलरेंट सीड्स होते हैं, जैसे आपको बोलेंगे प्रमाणित या रोग मुक्त बीज का उपयोग करते हैं।
2: जी
1: और आपके सॉइल टेस्टिंग करने की बात करना है आपको,
2: जी
1: फिर चाहिए जैसे मान लीजिए मे भी इसी को देखिए आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग मिट्टी के पानी में मिट्टी की नमी के अनुसार पहली सिंचाई या आगे सिंचाई जो भी है उसका हम लोग प्रबंधन करते हैं, उसको भी फार्मर सीख जाता है।
2: जी
1: और बुआई के बाद आपको अपना खरपतवार और कीट प्रबंधन की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आपको आपको रिकमेंडेशन देते हैं तो उसमें आपको जो खाद डालने का जो भी उर्वरक आप डालना चाहते हैं वो स्प्लिट डोज में जाता है, मतलब आप उसको हिस्से में डालोगे, पहला एक बुआई के टाइम पे, दूसरा जब उसमें फूल आ जाए या फिर कुछ दिनों बाद 30 दिन बाद यूज करते हैं, मतलब स्प्लिट डोज में उसका यूज होता है, इसकी जानकारी किसान को मिल जाती है।
2: तो इसके अलावा मैम अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मृदा परीक्षण करवाना अत्यंत आवश्यक है, तो इसके लिए आप अपनी तरफ से हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हम अपने किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहेंगे, हमारे जिले अल्मोड़ा में हर किसान के लिए एक सैंपल मृदा परीक्षण आपके लिए फ्री है। आप लोग हमारी प्रयोगशाला में आके अपना आपकी जो फसल, कोई भी फसल की जब आप बुआई शुरू होने वाली है उससे पहले आप यहाँ अपना सैंपल यहाँ जमा कर सकते हैं और उसमें आपको आपका रिकमेंडेशन मिल जाएगा। और मिट्टी के परीक्षण के बाद स्पेशली कि आप लोग यह जान पाएंगे आपको किस टाइप की फसल चूज करनी है, आप लोग को अपना फर्टिलाइजर यूज करना पता चल जाएगा। आप पीएच में, अगर पीएच में कुछ मिट्टी में पीएच ऊपर नीचे होगा तो पीएच सुधार पता चल जाएगा, और आपको बीज उपचार के अकॉर्डिंग भी काम करोगे और उचित बुवाई और सिंचाई प्रबंधन का ज्ञान भी मिलेगा आपको इससे, मतलब जिससे कि आपकी फसल की वृद्धि होगी और उत्पादकता बढ़ेगी उसमें।
2: तो मैम आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने हमारे किसान भाई बहनों को मृदा परीक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं आप लोगों सुनी खेती बचाओ अभियान अंतर्गत मृदा परीक्षण और वीक लाभ विषय पर जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अलमड़े सहायक कृषि अधिकारी बीना बिष्ट दगड़ हमारी बातचीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अखिल आप लोगों के सुनो नो जैविक कृषि उपयोग कर बेर फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन करनी वाल उन्नत कृषक मनोज कुमार सती दगड़ कृष्ण सिंह लटवाले की यो भेंट वार्ता।
7: श्रोता नमस्कार। पर्वतीय क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच पर्वतीय क्षेत्र के कृषक कृषि कार्य को कर रहे हैं और पुराने वक्त में हमारे भोजन का हिस्सा रहा मोटा अनाज, जिसे हम सुपर फूड कहते हैं, उसको लगाने का इस वक्त आ गया है। और ऐसे में जो हमारे कृषक भाई हैं वो मोटे अनाज का उत्पादन कर, फलोत्पादन कर और साथ में सब्जी उत्पादन कर अच्छी आजीविका को अर्जित कर रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे ही कृषक को आमंत्रित किया है। आप हमारे बीच में आए हैं श्रीमान मनोज कुमार सती जी। आप आए हैं ग्राम सभा कालनू, पोस्ट चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा से। सबसे पहले तो सती जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
8: नमस्कार।
7: पहला प्रश्न तो सती जी मेरा आपसे यही रहेगा कि आपके पास कितनी जमीन है और वर्तमान में आपने अपने खेतों में क्या लगा रखा है?
8: वर्तमान में अभी जो मेरे पास जमीन है वो 25 नाली का चेक है और उसमें जो खेतों में है इस समय हमारा जो चल रहा है

0: है उसमें हम मोटा अनाज जिसे झुंगरा कहते हैं और मडुआ, इसकी हम बुआई चल रही है हमारी। और कुछ में हमने अगेती वाले में भी ले रखा है उसमें, तो अगेती हमने वो भी हमारा मडुआ जमने लग गया है। और इस समय हम भट, घोत और अन्य अनाज उसके साथ जो हमारी ये बरसात में पहाड़ के इलाके में होती हैं वो चीज़ का हम उत्पादन ले रहे हैं।
1: सती जी, खरीफ फसलों की बुआई आपने बताया कि कुछ आपने लगा दिया और कुछ आपने लगाना है, तो खरीफ फसलों की बुआई के लिए कृषक भाइयों को किस प्रकार से खेत की जो तैयारी है वो करनी चाहिए?
0: सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँ कि हमारी जो पुराना ढंग है अपना, जो हमारे पूर्वजों से चलता हुआ ढंग है, उसी हिसाब से हम खेती करें और जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद हम बांझ के जो पत्तियां हैं और अन्य ये जो हमारा अभी योजनाएं चल रही हैं कैचुला खाद वगैरह, ये चीज़ का न कि उसमें रसायन का हम प्रयोग न करें, जिससे कि एक तो पौष्टिकता हमारी जो शुद्ध फसल मिलेगी पौष्टिकता बनी रहेगी और उससे जो है व्यक्ति के आम जनमानस के स्वास्थ्य पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तो मैं सभी कृषक बंधु से ये कहूंगा कि जो अगर कहीं रासायनिक खादों का प्रयोग करें तो रासायनिक खादों का प्रयोग न करके हम अपने पुराने पैतृक हिसाब से जो खेती कर रहे थे उसी हिसाब से खेती को करें और उन्नत बीजों को लगाएं।
1: आपने उन्नत बीजों की बात की सत्य जी, उन्नत बीज जो कृषक भाई लेना चाहते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं? क्या वो उन्नत बीजों को अपने घर पर ही जो उनके पारंपरिक बीज है, क्योंकि हमें देखते हैं कि जो पारंपरिक बीज कृषक भाई लगाते हैं क्योंकि वो स्थानीय रची बसी किस्में होती है उनको लगाते हैं तो उनका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो किस प्रकार से इसमें वो संतुलन बैठा सकते हैं?
0: इसमें यह है कि हम जो कुछ तो अपना ये बीज लें और जो आज जैसे विवेकानंद जैसे संस्थान हैं, कृषि संस्थान हैं या पंतनगर संस्थान है, वहाँ से भी पहाड़ के लिए बड़ी अच्छी अच्छी प्रजातियाँ निकली हैं, तो उन प्रजातियों का हम प्रयोग करें जिससे कि पैदावार, उचित पैदावार लेके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो इस में यह है कि हम अगर हम उसमें बीज जो हमारा बहुत पुराना से चल रहा है उसकी छटाई और उसका गुणवत्ता हिसाब से जो वैज्ञानिक रूप से कृषि वैज्ञानिक की हम सहायता जरूर लें, क्योंकि हम अपने पुराने बीजों को भी खत्म नहीं करना चाहिए। हम ये कहेंगे अपने जो हमारे क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं उनको ले जाके कि कैसे हम इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उस पर रिसर्च करके या उनकी उस तकनीक का प्रयोग करें।
1: अच्छा, ये बताएं कि आपका जो क्षेत्र है चौबटिया वो सेब उत्पादन में, फल उत्पादन में अग्रणी भूमिका इस वक्त निभा रहा है और वहाँ का जो सेब बागान है वो तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो आपने फल उत्पादन में क्या क्या आपके वहाँ पर अभी हो रखा है?
0: अभी हमारे वहाँ पर फल उत्पादन में सेब, जैसे अली शनवरी की सेब आता है उसकी जो है फल तैयार होने को है, अब ये लास्ट अब ये निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आड़ू हैं, आड़ू की कई प्रजातियां हैं जिसमें हमारे पास रेड जून वो अभी लगभग खत्म होने की दगार पे है। उसके बाद नेप्टिगनी है और तोता परी है, कई तमाम चीजें हैं। और नाशपातियों में आता है एक मिर्ची नाशपाती है, भोटिया है, चुस्नी है और काश्मीरी है, फिर जागनल है, फिर जिसे हम गड़मिहल कहते हैं वो है, कई प्रजातियां हैं। काफल के हमारे पास कई पेड़ काफल के हैं। तो अभी मेरे पास जो क्षेत्र है 25 नाली के क्षेत्र में तमाम तरह की वहां पर ये बागवानी मैंने अपने स्तर से लगा रखी है।
1: अगर हम आजीविका अर्जन की बात करें तो ये, क्योंकि आप विपणन करते हैं, जाहिर सी बात है इतना आपने लगा रखा है तो उसका विपणन करते होंगे, तो विपणन के लिए एक तो कहाँ आप सामान बेचते हैं एक तो ये, और दूसरा कितनी आय आपको हो जाती है वो हमारे श्रोताओं को थोड़ा आप साझा कर सकते हैं?
0: आय तो ठीक ही रहती है अगर किसान रात दिन मेहनत करे, लेकिन अभी विडम्बना ये होगी पूरे उत्तराखंड में ही, मेरे ही क्षेत्र में नहीं पूरे उत्तराखंड में, ये जो जंगली जानवर का प्रकोप, पहले बहुत भरपूर हमारा आजीविका का साधन रहता था लेकिन उसमें कुछ कमियां आई हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और अपने स्थानीय जितने भी हमारे ये संस्थान हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे किसानों के लिए घेरबाड़ की व्यवस्था हो और तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहें जिससे वो जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचा पाएं। विपणन की बात है तो आमदनी आदरिक तो हमारे वहाँ की जो छोटा बाजार है उतना भाव हमें नहीं मिल पाता है, और अगर हम हल्द्वानी माल भेजते हैं तो उसमें मंडी का वर्त, तो मैं हमारे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा विपणन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है फल उत्पादन में।
1: सती जी, बताया कि किसान जो है किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से जो किसानों के उत्पाद हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी यहाँ तक कि उसमें क्रय कर रही है, तो आप इन संसाधनों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं?
0: अब कुछ तो भौगोलिक स्थितियां ऐसी होगी कि वहाँ अभी लोगों को इतना पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र का उतना क्षेत्र प्रसार नहीं है, वो चौबटिया गार्डन तक ही सीमित रह जाता है। और वो गांव की तरफ कमाता है, तो मैं विशेषकर मैं सारे लोगों से ये कहना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म के लोगों से कहना चाहूंगा कि वो आए और हमारे गांव के हमारे क्षेत्रों की ओर को बढ़े, जिससे कि आम किसान का जो है मनोबल बढ़ेगा और पहाड़ का पलायन रुकेगा, और पहाड़ का पलायन इसी कारण से रुक सकता है, और जो ये बेरोजगारी है ये दूर होगी, और इसमें जो नई पीढ़ी है उसको उत्साहवर्धन मिलेगा। अगर वो फलोत्पादन उसका भी एक उसको क्रेडिट मिलेगा कि यार आज मैं 10 पेड़ लगा रहा हूँ तो कल को मैं 50 पेड़ लगाऊंगा और 5 साल के बाद मेरे पेड़ इतने देंगे। अगर उसका सही विपणन हो तो मैं सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, सरकार है, शासन है, प्रशासन से, इनसे सभी से निवेदन करूंगा और जो भी हमारी सरकारी समितियाँ हैं कि वो आए गाँव में आए और गांव के लोगों को लाभान्वित करें।
1: सत्य जी, आपने खाद की तो आपने बताया कि आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, पूर्व प्रश्न में आपने बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खाद तो आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फल हैं या फिर जो सब्जी हम उत्पादित करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी लग जाते हैं, तो उसके लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं या फिर रासायनिकों का ही आप प्रयोग करते हैं?
0: नहीं, हम जैविक का ही कर रहे हैं। जैविकों का करने से एक तो यह है कि देखिए, अगर हम जितना भी कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं उससे आज मधुमक्खियां कम हो रही हैं, कई और जंतु कम हो रहे हैं, और उसका कुप्रभाव हमारे ही स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, और अगर वो बाजार में जाता है तो कई लोगों के स्वास्थ्य को और असर करता है। इसलिए मेरा सभी किसान बंधुओं से निवेदन है कि वो जैविक खाद का प्रयोग करें, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, न कि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग न करें।
1: अच्छा, ये बताएं कि सरकार कह रही है कि हमें खेत बचाओ अभियान चला रही है उत्तराखंड सरकार, तो पर्वतीय क्षेत्र के खेत जो है किस प्रकार से बच सकते हैं, आपका क्या इस पर राय है?
0: पर्वतीय अभी सरकार की योजना चली हुई है कि खेत बचाओ, जन बचाओ, ये तमाम योजनाएं चल रही है। खेत बचाओ, अब खेत काफी कटाव हो रहा है, बारिश का भी काफी वो हो रहा है, तो मैं कृषि वैज्ञानिकों से भी निवेदन करूंगा, तमाम लोगों से करूंगा जो आप, क्योंकि पहाड़ के खेत ढलान वाले खेत हैं, उनकी उर्वरा शक्ति बह के नदियों में निकल जा रही है, गधेरों में निकल जा रही है, तो उसके लिए कोई ऐसे प्रावधान हो कि उसके किनारे किनारे जो है घास, अच्छी ढंग की घास जिसको पशुओं को मिल जाए, जो कई घास की ऐसी प्रजातियां हैं, और उसके अगल बगल या कोई ऐसा फूलों का या कोई ऐसी जो बार टाइप की है वो लगा दिए, जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और उसकी खाद भी बहके न जाए।
1: तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो है कुछ ऐसा व्यवस्था करें जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बची रहे। तो इसके लिए कि जो सीढ़ीदार खेत हमारे हैं उनमें तो एक तो पत्थरों के खेत, उनके जो मेड़ है वो बार बार कट जाती है, तो उनको बनाने के लिए भी किसानों को सरकारी सहायता जो है उपलब्ध करानी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये आपके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रश्न किया गया। किसानों को इस समय उन्होंने, अगर ये हमारे उत्तराखंड की नहीं, हमारे ये उत्तराखंड के लिए उन्होंने ये सहायता देनी चाहिए। सरकार ने भी ये, हमारे कृषि विभाग ने इस पर गहन मंथन भी करना होगा कि कैसे किसान की आय बढ़ाई जाए और कैसे उसके खेत बचाए जाएं। अगर खेत ही नहीं बचेगा तो उत्तराखंड कहाँ से बचेगा और गाँव कहाँ से बचेगा, क्योंकि गाँव लगभग आज की डेट, आज के समय में पलायन की ओर मजबूर हो रहे हैं। ये प्राथमिक चीज़ है कि खेत भी बचाना है, खेत को जंगली जानवर से भी बचाना है और यहाँ के बाशिंदों को भी बचाना है, क्योंकि कई हमले हो रहे हैं, बाघ के हमले हो रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। आज आए दिन हम खबरों में सुनते हैं या समाचार पत्रों के द्वारा हमें ये पता चल रहा है, लेकिन आज
1: मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। सत्य जी, बताएं कि सरकार भी किसानों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न स्तर पर सहायता कर रही है, और आपने भी क्या कोई राज सहायता सरकार से प्राप्त की है?
0: हाँ, मैंने भी राज सहायता प्राप्त की है, इसमें मेरे पास पावर टिलर है अपना, और जो कि मुझे सब्सिडी पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया, कृषि विभाग द्वारा दिया गया। उसके बाद उद्यान विभाग से भी हम सहायता लेते हैं सब्सिडी में, जैसे मेरे पास अभी पॉली हाउस है, तो वो पॉली हाउस उसमें हमने सारा जैविक से कर रखा है, कोई भी हमने इसमें ये नहीं कर रखा है। कभी कभी हमें सब्सिडी पर पेड़ वहाँ से उपलब्ध हो जाते हैं, सेब की अच्छी प्रजाति के, तो ये जो सचल दल केंद्र उद्यान विभाग के हैं उनसे कई चीज़ें हमको मिल रही हैं, सरकार से मिल रही हैं, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन थोड़ा सा है कि उसका प्रचार प्रसार बहुत कम है, जनता के बीच में कम है ये प्रचार प्रसार। में सभी विभागों से, चाहे उद्यान विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, इनसे हम चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार गांव में ज्यादा करें।
1: सत्य जी, चलते चलते मैं आपसे, आप हमारे जो किसान भाई हैं, जो युवा साथी हैं, जो कृषि कार्य करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे, ये जानना चाहूंगा।
0: मैं ये कहना चाहूंगा सभी अपने कृषक भाइयों से, नई पीढ़ियों से, कि हमें अपने पारंपरिक चीजों को नहीं खोना है, और हमें आपको आज जो है अपनी कृषि से आप दूर होते जा रहे हैं, अपनी जमीन, जंगल जमीन जन से दूर हो रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। और आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, जो ये रासायनिक जो हम फसलें खा रहे हैं या रासायनिक हम अन्न खा रहे हैं, तो इससे तमाम तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, जानलेवा बीमारियां हो रही हैं, तो हम आइए लौटते हैं अपने पहाड़ों की उस पारंपरिक खेती की ओर, जहां जैविक का प्रयोग करें और अधिक से अधिक उत्पादन करके अपनी आजीविका का साधन बढ़ाएं और गाँव को खुशहाल गांव बनाए।
1: निश्चित रूप से सतीश जी, पहले पर्वतीय क्षेत्रों में बारह नजर पद्धति अपनाई जाती थी और एक मोटे अनाज के उत्पादन, फल उत्पादन और एक समेकित कृषि के रूप में घर का खर्चा भी चलता था और साथ ही साथ अपना जो आजीविका थी वो भी होती थी। और आज भी पुनः किसानों को अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और अपने खेतों को बचाना होगा, अपनी

0: कृषि को बचाना होगा। साथ ही साथ हम इतना कहेंगे कि सरकार भी जो है किसानों के साथ है, और किसान और सरकार का साथ जो है यूँ ही बना रहेगा। और हम इसी आशा के साथ, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप लोगों सुनी जैविक कृषि उपयोग कर फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन करने वाले कृषक मनोज कुमार छत्तीसगढ़, कृष्ण सिंह लटवाले की बातचीत।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान
2: कल्याण। श्रोताओ, यही संदेशक दगड़ आज किसान वाणी कार्यक्रम इति के संपन्न करने एक नेहा जोशी के दियो आज्ञा। नमस्कार, यो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करी। कौ केंद्र और राज्य सरकारों दगड़े कोशिश विकसित भारत दृष्टिकोण की भावना को साकार करण में जरूरी। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य कृषि मंत्री गणेश जोशी देहरादून में दिनों अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरुआत करी। उत्तरकाशी जिलक सीमांत गांव बगोरी में विशेष गहरी जांच करणक अभियान को मिलो लोगों के साथ बियलोल बाटी गणना कागज पत्र। और ऊणवाल 15 जून को नैनीताल में होनीवाल कैंची धाम म्याल को लिबेर जिला प्रशासन और पुलिसल तैयारियां तेज करी। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रखो कि भले यो दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता वखत बटी गुजरने, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्पक दगड़ विकासक बाट पर अगिल बढ़नो। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग एक 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करवीर श्री मोदी को कि जसी जसी भारत विकसित भारत तक लक्ष्य और अघिल के बढ़नो, यसमें केंद्र और राज्य सरकारों दगड़े जिम्मेदारी आई बढ़ जाए। प्रधानमंत्री कह की राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों के लीन दीन होने चाहिए। उन्होंने कह की नीति आयोग या मैं सहयोग कर लीजिए जरूरी भूमिका निभा सकूं। जैल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों के भली के लीन दीन हो सको और विकसित भारत तक लक्ष्य की दिशा में दगड़े की कोशिश को बल मिल सको। 2047 ताले विकसित भारत तक लीजिए समावेशी मानव विकास विषय में केंद्रित यो बैठक में पुरदेश में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा दिनक और रोजगारक स्थायी मौक पैद करनक उपायों पर विचार विमर्श करी गयो। प्रदेश में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देनक उद्देश्य कृषि मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून में दिनों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरुआत करी। यो मौक पर उन्होंने कहा कि राज्य में सगंध खेती को बढ़ावा देना के लिए मह क्रांति नीति लागू करी गई छू और यह भीतर 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सगंध खेती ढाकबेर 91,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखी जा रहा। उन्होंने बताया कि चंपावत और नैनीताल में लगभग 5,200 हेक्टेयर क्षेत्र में दालचीनी घाटी विकसित करी जाने जल किसानों और उद्यमियों के लिए नई मौक पैद होल। कृषि मंत्री कह की यो कार्यशाला दालचीनी की उन्नत खेती अनुसंधान प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने में जरूरी भूमिका निभाली।
4: यहाँ मसाले में इसका प्रयोग होता है, मैंने कटकर रूप से देखा कि औषधि में भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अभी चंपावत नैनीताल से हमने इसकी शुरुआत की और हमारे जो बंजर खेत यहाँ पर खेती नहीं हो रही क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे विभाग इसके स्तर पर कार्रवाई करेगा और 91,000 किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। और आने वाले समय में दालचीनी के क्षेत्र में उत्पाद करने वाले प्रदेशों में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश होगा। जो चिंतन यहाँ पर करेंगे इसमें इंडोनेशिया,

0: श्रीलंका वो क्षेत्र में आगे काम कर रहा है और देश के अंदर इन संस्थान से जुड़े हुए विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, निश्चित ही उनका लाभ उनको मिलेगा।
1: कार्यशाला में श्रीलंका व इंडोनेशिया दगड़े अलग अलग देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, किसान और उद्योग जगत तक प्रतिनिधि भाग लेने। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल सीता सर्किट परियोजना के भीतर आज फलस्वाड़ी गांव में प्रस्तावित कामों का निरीक्षण करो। यो वक़्त उन्होंने क्षेत्रों के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व से जुड़ी अलग अलग पहलुओं पर मिलते जुलते कार्ययोजना तैयार करने संबंधित अधिकारियों को आदेश दी। जिलाधिकारी परियोजना के विकास स्थानीय पहाड़ी वास्तुकला और पारंपरिक डॉल को ध्यान में रखकर करण में जोर दे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजना के अंतिम रूपरेखा और प्रस्ताव झट प्रस्तुत करना निर्देश दी।
2: माननीय मुख्यमंत्री घोषणा यहाँ सीता सर्किट के लिए हो रखी थी, तो उसी के साथ हम लोग जो ग्रामवासी हैं, साथ में हमारे जो अधिकारी हैं और आर्किटेक्ट और इंजीनियर, सभी के साथ में यहाँ पे विजिट किया, तो उसमें गांव वालों के भी सुझाव लिए गए हैं और यहाँ पे मेनली इस मंदिर को थोड़ा भव्य बनाने के लिए, साथ में यहाँ जो साइनेजेस हैं, जो यहाँ की कहानी है उसको भी जनता तक पहुँच सके, उसके संबंध में डिस्कशन किया गया। प्लस रोड से ये दिखता भी नहीं है कि ये मंदिर यहाँ पे इसकी क्या महत्ता है, तो इसके लिए गेट आदि बनाने के लिए और साथ में यहाँ वेटिंग एंड धर्मशाला का निर्माण करने के लिए, तो ये तीन चार मेन प्रोजेक्ट्स हैं। तो कल यहाँ पे सभी गांव वालों के साथ में भी बैठक की जाएगी विभागों के द्वारा, जिससे जमीन की जो स्थिति है वो क्लियर हो सके।
1: जिलाधिकारी कौ की यो परियोजना क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देना दगड़े स्थानीय अर्थव्यवस्था को ले मजबूत बनोड़ में जरूरी भूमिका निभाली। उत्तरकाशी जिलम भारत तिब्बत सीमा से जुड़ी भटवाड़ी तहसील सीमांत गांव बगोरी में विशेष गहरी जांच करणक SIR अभियान के भीतर मतदाता सूची काम को गति मिली छू। बूथ लेवल अधिकारियों BLL गांव में घर घर जयबेर गणना कागज पत्र बांटी और गांव वालों को अभियान की जानकारी दी। BLL मतदाताओं को कागज पत्र भली के भरण और तय बखत तक भीतर जाम करण के लिए प्रेरित करो। अधिकारियों ने बताया कि 7 जुलाई ताले चलन वाली यह विशेष अभियान के माध्यम हर परिवार ताले पुजबेर मतदाता सूची को शुद्ध, नई और बिन गलती वाल बनोड़ा कोशिश करी जाने। गांव वालों निर्वाचन आयोग की शुरुआत को भल बतेबिर को कि ये पात्र नागरिकों नो मतदाता सूची में ठीक ढंग चढ़ सकल और चुनावी प्रक्रिया जात पारदर्शी बने ली। वह जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्याल जिला वासियों थे यो अभियान में बढ़ चढ़ बेर हिस्से लूणा के लिजी कह रखो। उन्होंने लोगों थे BLO को जरूरी सहयोग दीण और गणना कागज पत्र बखत पल भरबेर जाम करणक ले लीजी को।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमार सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: ऊणवाल 15 जून को नैनीताल में हुणवाल विश्व प्रसिद्ध कैची ध्याम म्याल को लेबेर जिला प्रशासन और पुलिस एल तैयारियां तेज कर हली। श्रद्धालुओं को सुगम यातायात और भल सुविधाएं देना उद्देश्य सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और SP सिटी मनोज कत्यालेल संबंधित विभागों के अधिकारियों दगड़ स्थलीय निरीक्षण करो। अधिकारियों सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कामों की जांच पड़ताल करबेर संबंधित विभागों को निर्माण कामों में तेजी लूणक और बाट को झट्टपुरी तरबटी निक बनोणक आदेश दी। प्रशासनल म्याल का वक़्त यातायात व्यवस्था को भल बनाई रखनक लीजिए सड़क तीर बे लगाई गई फड़ और ठ्यालों को अस्थायी अतिक्रमण को उई वक़्त हटूणक आदेश ले दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलमाड़क और बटी जिला चिकित्सालय में विधिक सहायता केंद्र बनाई जे रो। अस्पताल का प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर HC गढ़कोटिल बता कि विधिक सहायता केंद्र में हर बुधवार को अधिकार दगड़ियों बटी दिव्यांग जनों, बुढ़वाड़ियों और असहाय लोगों के स्वास्थ्य जांच करण में सहायता करी जाए।
4: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यहाँ हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसमें प्रत्येक बुधवार को हमारे ये अधिकारी मित्र लोग आते हैं। इनके द्वारा जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट हैं, विकलांग हैं या जो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ दिखाना है, उन लोगों की मदद करते हैं लोग। उनके फॉर्म भरवाने में, उनको लैब में ले जाने में या और कोई जाँचें करवाने में उन लोगों की काफ़ी मदद ये लोग करते हैं।
1: प्राधिकरण के अधिकार दगड़ी भावना तिवारी बता कि यो केंद्र में गरीबों, असहायों, दिव्यांगजनों और गर्भवती श्रेणियों की सहायता करनी।
5: यहाँ पर जिला अस्पताल में हमारा लीगल एड क्लिनिक खुला हुआ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत। तो हम लोग यहाँ पर अधिकार मित्र हर बुधवार को जिला अस्पताल में आकर यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन्स की मदद करते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी गर्भवती महिलाएं या कोई भी पीड़ित व्यक्ति आते हैं तो उन लोगों की हम हेल्प करते हैं, उनको डॉक्टर तक ले जाने से लेकर उनको व्हील चेयर दिलवाने से लेकर और दिव्यांग सर्टिफिकेट भरने में हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हर बुधवार को यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल बैठता है जिसमें हाथों हाथ दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। और जो भी हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुहिम चलती है हम उनके पंपलेट भी यहाँ पर पब्लिक के बीच में बांटते हैं ताकि दूर दराज गांव से आए हुए लोगों में जागरूकता फैल सके।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र और राज्य सरकारों के दगड़े प्रयास विकसित भारत तक दृष्टिकोण की भावना को साकार करण में जरूरी। प्रदेश में दालचीनी व्यवसायी खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य कृषि मंत्री गणेश जोशील देहरादून में दी दिनों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरुआत करी। उत्तरकाशी जिला सीमांत गांव बगोरी में विशेष गहरी जांच करण अभियान को मिलो जन समर्थन। बियलोल बाटी गणना कागज पत्र और ऊणवाल 15 जून को नैनीताल में होने वाल कैंची धाम म्यालकुलीबेर जिला प्रशासन और पुलिस हल तैयारियां तेज करी। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
6: FM 16.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:40 में है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं एक विलेन फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज में। मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

0: रावण फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली और विशाल डडलानी और साथियों की आवाज़ में। विशाल डडलानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था विशाल शेखर ने।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
0: कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आ अब लौट चलें फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए आ अब लौट चले फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
4: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: सबरस कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में।

0: perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
0: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
0: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली गजल आइए सुनते हैं जसवंत सिंह की आवाज़ में।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।

चंदन दास की गाई सी गजल के साथ सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 बजे

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताज़ा अपडेट और हर मैदान की खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज। पहले मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा तथा एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। कहा, खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता बढ़ती आकांक्षाओं को दिखाती है। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम घोषित। यशवर्धन सिंह चौहान को पुरुष और भाविका अहिरे को महिला टीम की कमान सौंपी गई। और T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप के साथ, जो कि आज शुरू होने जा रहा है। गॉड ऑफ फुटबॉल कहे जाने वाले लियोनल मेसी महानतम खिलाड़ियों में से एक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और आखिरी विश्व कप के लिए अपने दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। आज से 20 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित ये संस्करण इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट में 32 की जगह 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। और तमाम जानकारियों की इस कड़ी में आज हम उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक सबसे अधिक गोल दागे हैं। सुनिए विशेष की ये रिपोर्ट।
1: जर्मनी के स्टार खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 2002 से 2014 के बीच 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए। 2002 और 2006 में क्लोज ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे। साथ ही 2014 में अपनी टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो नजारियो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। द फिनोमिनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए। उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 मुकाबलों में हासिल की। 2002 विश्व कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागते हुए ब्राजील को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गर्ड मुलर ने वेस्ट जर्मनी के लिए 1970 विश्व कप में 10 गोल, वहीं 1974 में 4 गोल दागकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई थी। तीसरे पायदान पर काबिज मुलर ने यह उपलब्धि केवल 13 मुकाबलों में हासिल की थी। फ्रांस के जस्टन फोंटेन ने 1958 विश्व कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल नजर आता है। जस्टन ने इस विश्व कप में शानदार खेल दिखाते हुए अकेले 13 गोल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा महज 6 मुकाबलों में ही करके दिखाया था। यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी फुटबॉलर नहीं तोड़ सका है। साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त चौथे पायदान पर हैं। मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं। कतर में

0: खेला गया आखिरी विश्व कप मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो पिछले फीफा विश्व कप के इस आखिरी विनिंग मोमेंट के साथ वापस से रिचार्ज होने को तैयार है फुटबॉल फैंस का पूरा मन, और इसी कड़ी में आज पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो आइए जानते हैं विश्व कप के इस पहले मुकाबले में किस टीम का पड़ला कितना भारी है।
2: तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब से कुछ घंटे बाद फीफा विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है। स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल के लिए भारत और दुनिया भर के फैंस का जोश हाई है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे सितारों को मैदान पर देखने के लिए सभी फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं। मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका महामुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। मैक्सिको सिटी के स्टेडियम एस्टेका स्टेडियम में इस मुकाबले की सीटी बजते ही फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में आमने सामने होने के 16 साल बाद मैक्सिको और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत करने का मौका मिला है। मैक्सिको और साउथ अफ्रीका 5वीं बार विश्व कप में आमने सामने होंगे। मैक्सिको ने पिछले 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 1 मुकाबला जीता है जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है, जिससे मेजबान मैक्सिको का लड़ा इस मुकाबले में भारी दिखाई देता है। मैक्सिको के एरिक लीरा सेंट्रल मिडफील्ड में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए ओस्विन अपोलिस अटैक का जिम्मा संभालेंगे। मैक्सिको अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने डिसिप्लिन के लिए विश्व फुटबॉल में जाना जाता है। ऐसे में दोनों ही टीम की नजरें विश्व कप का पहला मुकाबला जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने पर होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मैक्सिको होम एडवांटेज का फायदा उठाता है या दक्षिण अफ्रीका अपने बेहतर खेल से एक अलग पहचान बनाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो आज रात 12 बजे से जोश, जज्बे और रोमांच के इस अनुभव के साथ शुरू होगा फीफा का महाकुंभ। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं एमआर अर्जुन और हरिहरन हंसाकरुणन की पुरुष जोड़ी ने भी अंतिम 8 में जगह बना ली है। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों पर ये रिपोर्ट।
3: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
4: I won my second round and I'm very happy. I think I would like to thank all the fans out there who've been very supportive.
3: सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की ही ईशा रानी बरुआ को 22-20, 21-12 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चेन सू यू से होगा। वहीं तन्वी शर्मा ने भी हमवतन मालविका बंसोड को 21-13, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। 17 साल की तन्वी ने कल बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को हराया था। वहीं भारत की तानिया को पोर्न पावी चोचू वोंग से 12-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय पुरुष जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के माइकल ओवेन और डायलन सोएत चासा को 21-17, 21-7 से हराया। मिक्स डबल में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज, सानी दयानंद और थारून मन्नेपल्ली का अभियान अपने अपने मैचों में हार के साथ समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अब बात करते हैं एक और खेल आयोजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए देश के लिए ओलंपिक से बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता उसकी बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन हर दिन बेहतर होते जा रहा है।

0: और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है।
1: तो रिफॉर्म भारत का कन्विक्शन है और इसकी साफ झलक देखने को मिलती है जब युवा खिलाड़ी अपने सीने पर तिरंगा लगाए मैदान पर उतरते हैं और रोज नए कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नजर आते हैं। और अब बात करते हैं श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। ये दौरा 4 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए पुरुष की अंडर 19 टीम चुनी है, जिसमें 3 एक दिवसीय मैच और 2 मल्टी डे मैच खेले जाने हैं। यशवर्धन सिंह चौहान दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान होंगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी एक दिवसीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मुकाबलों की महिला एक दिवसीय और T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भी भारतीय महिला अंडर 19 टीम का कार्यक्रम का आज ऐलान कर दिया गया। दोनों फॉर्मेट के लिए टीम की कमान भाविका अहिरे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि महाक नरवासे दोनों प्रारूपों में टीम की उपकप्तान होंगी। श्रृंखला की शुरुआत 22 जून को चेन्नई में पहले T20 मुकाबले के साथ होगी। और जब T20 की बात छिड़ी है तो बात T20 क्रिकेट विश्व कप की भी होगी, जो कि कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और भारत की नज़र 17 सालों के इतिहास में पहली बार ये खिताब जीतने पर होगी। आज हम बात करेंगे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे मजबूत कड़ियों पर।
2: भारतीय टीम के पास विश्व कप में शुरुआत से लेकर अंत तक और अनुभव से लेकर युवा तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बल्ले से किसी भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं। हरमनप्रीत की आर्मी की सबसे मजबूत कड़ी है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी। जब भी ये जोड़ी शुरुआत से अपना स्वाभाविक खेल दिखाती है तो भारत के लिए एक बड़े स्कोर की राह पावर प्ले में ही आसान बन जाती है। उपकप्तान मंधाना तेज गति और आक्रामक शैली से रन बनाने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने करीब 30 के औसत से 4,293 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं युवा शेफाली भी पावर हिटर मानी जाती हैं और हाल के वर्षों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। ऊर्जा से भरपूर शेफाली ने अपने T20 करियर में 28 की औसत से 2,687 रन बनाए हैं। शेफाली किन इरादों से मैदान पर उतरना चाहती हैं, ये खुद उनसे सुनते हैं।
3: जब भी मैं कोई T20 वर्ल्ड कप खेलती हूँ तो मुझे हमेशा 2020 वर्ल्ड कप फाइनल याद आ जाती है। ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था, मुझे वो फाइनल याद आता है कि मुझे उस फाइनल का बदला जरूर लेना 2020 वर्ल्ड कप का, एंड होपफुली दिस टाइम वी बीट देम।
2: अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर है। इस मैच विनर खिलाड़ी ने अपने बल्ले से भारत के लिए कई मुकाबले पलटे हैं। हरमनप्रीत ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगभग 30 की औसत से 3,991 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 16 अर्धशतक शामिल है। टीम की बल्लेबाजी को लेकर रणनीति पर खुद कप्तान ने क्या कहा वो सुनते हैं।
3: T20 पावर प्ले के जो फर्स्ट 6 ओवर है दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो यू हैव टू target runs in the power play and if you're bowling, you know, we have to get couple of wickets in the power play. Once the power play is set, uske baad aapka game chalta hai. So I think definitely we want to really work hard, like how we have to go about the power play. And secondly, you know, middle over also play very big role.
2: Jemima Rodrigues bhi madhyakram ki ek mazboot kadi hai. Takniki roop se daksh aur pressure mein sthirta rakhne ki kala is khiladi ko behad khaas banati hai. 2025 mein ek divasiya vishwa cup ki jeet ne is khiladi ki trophy jeetne ki संभावनाएं और बढ़ा दी हैं।
4: Now you've tasted what it feels like to lift one World Cup. It makes you want one more and then one more and then one more. So I think the team is even more motivated and even more eager. And more than that, we saw the kind of impact it had for women's cricket in India. We just want to continue that legacy.
2: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष से भी टीम को एक अच्छे फिनिशर का रोल अदा करने की उम्मीद होगी। ऋचा तेज गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा सकती हैं और बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखती हैं। वे हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में भी नजर आईं। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम को भारतीय

0: फुलमाली, दीप्ति शर्मा और यस्तिका भाटिया शर्मा से भी भरपूर उम्मीद होगी, जो टीम को एक ऐसे भरोसे के साथ साथ बल्लेबाजी में गहराई देने का भी काम करेंगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय टीम किन तेवरों के साथ 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी, ये इस रिपोर्ट में साफ नजर आया। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों की, जो कि 20 जून को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इस समारोह में 10 वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को और कोचों को उनके जीवन भर के योगदान और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
3: The topic for the Governing Council meeting.
4: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
3: To youth, to working life, to old age.
2: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
5: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: www.udaan.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण

0: well-being.
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit will provide an opportunity.
4: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
3: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
5: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
6: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
7: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
6: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।

0: है।
1: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किशोर कुमार के गाए मेरे जीवन साथी फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 में हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग भोपाली में बांसुरी वादक।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग भोपाली में बांसुरी वादन। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे अनिंदु चटर्जी। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए निदा फाजली का कलाम, फनकार हैं जगजीत सिंह।

शकील बदायूनी का कलाम अभी आप सुन रहे थे। फनकार थी बेगम अख्तर। सुगम संगीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल।

0: गुलाम अली की गाई सी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं SN शिवस्वामी का लिखा नाटक ग्रैंड स्लैम।
1: ये आकाशवाणी है, ग्रैंड स्लैम। आज प्रस्तुत है SN शिवस्वामी का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं ये नाटक ग्रैंड स्लैम।
2: ये इस तरह घूर क्यों रहे हैं आप मुझे? समझा, आप शायद सोच रहे हैं कि मैं कहाँ किस नाली में फिसल कर हाथ पांव तुड़वा के यहाँ पड़ा हूँ। सुनिए भाई, बात यूं हुई कि गई दीपावली के दिन हमने जो अपना त्योहार मनाया वो शायद जरा हद से बाहर हो गया। आधी रात के बाद अपने दोस्तों के यहाँ से जब हम अपनी जीप में घर लौट रहे थे तो इतनी याद जरूर है कि सामने से एक महिषासुर, मेरा मतलब है भैंसासुर, 60 मील की स्पीड से रास्ता पार करता जोर से हमारी जीप से टकरा गया। थड़ाम की आवाज हुई जनाब, जैसे आकाश ही सर पर गिर पड़ा हो और चारों ओर तारे चक्कर लगा रहे हो। बस

0: इतना ही याद है। उसके बाद 2 दिन बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही मुझे होश आया। फिर पता लगा कि घर पर आने के बाद भी इसी कमरे में प्लास्टर बंदी टांगों को लटकाए हुए 2-3 महीने इसी हालत में लेटे रहना होगा। सो तब से इन 3 महीनों में मेरी बाहरी दुनिया का दायरा इतना ही रहा जितना कि इन 2 प्लास्टर बंदी टांगों के बीच बने इस वी ढांचे से दिखाई पड़ता है। यकीन कीजिए, यानी वो देखिए ना, वो सामने की खिड़की से दिखाई दे रही 2 मंजिले मकान की एक बड़ी बैल्कनी। बस दरअसल वहां एक छोटा सा परिवार है, पति पत्नी की ज्यादा उम्र नहीं, पति सरकारी अफसर हैं मुझ जैसे, उनकी एक बड़ी प्यारी बच्ची है। अपने घर की जमादारनी कहती है कि पति का नाम शंकर है और वो बच्ची उनकी इकलौती बेटी है। पिता दफ्तर चले जाते और माँ रसोई घर में होती तो बेटी अकेली पड़ जाती, कोई संगी साथी ना होता। अपनी गुड़िया और खिलौनों को लेकर जाने क्या क्या खेलती रहती और अपने आप से बोलती रहती। इतनी दूर से मैं सारी बातें तो नहीं सुन पाता था, फिर भी बच्ची के गाने, उसका हंसना बोलना, सब सिर्फ 4 ही दिनों में मैं खूब अच्छी तरह से पहचानने लगा। क्योंकि मेरी दृष्टि हमेशा वहीं गड़ी रहती है, इसलिए उस बालकनी में जो भी आता है और जो भी बातें होती हैं मैं सब समझ जाता हूँ। अब देखिए ना, अक्सर शाम होने पर बालकनी में ब्रिज का खेल जमने लगता। शंकर और मिसेस शंकर और उनके कोई 2-3 परिचित खेलने बैठ जाते तो वो प्यारी बच्ची है ना, वो एक एक के पीछे खड़े होकर उनके खेल को बड़े गौर से देखा करती। यहीं से मैं भी उस खेल में भाग लेता। उनके चेहरे के भाव और होठों की हरकत से मैं उनकी सारी बातें समझ लेता था। यही नहीं, उनके हाथ के पत्तों को भी मैं जान जाता था। शायद वो प्यारी बच्ची भी ब्रिज से अच्छी तरह परिचित हो गई थी। ये बात उन लोगों से पहले मैं जान गया था। एक शाम की बात बताऊं आपको?
1: Come on, Meera, now move. It's your turn. क्या सोच रही हो?
2: डमी की क्वीन फेंक कर इसको लो मम्मी, तभी जीतोगी।
3: मुन्नी तू जाकर सो बिटिया, बड़ी देर हो गई है। रानी बिटिया जाना। डमी की क्वीन ठीक ही तो है।
2: मैं ठीक ही तो कह रही थी।
1: अरे मुन्नी जाना बेटे, देखो कल गांव से तुम्हारी दादी माँ आ रही है, तुम्हारे लिए मिठाई और सुंदर खिलौने लाएंगी। हाँ, और फिर सुबह जल्दी जागना भी है बेटे। जाओ जाओ, शाबाश, जाओ शाबाश। अरे मीरा, रिस्क ले लिया तुमने, स्पेट क्वीन। अरे माँ दिया होगा।
3: अजी जनाब ये नहीं, इधर देखिए, अब अपने हाथ के सब पत्ते डाल दीजिए, ये देखिए ग्रैंड स्लैम।
1: ग्रैंड स्लैम?
3: जी हाँ, स्पेट क्वीन के नीचे लगा ये जैक और ये स्पेट ट्रम।
1: ओ गॉड,
3: ये खेल तो मुन्नी ने जिता दिया है। अगर रबर मेरा हो गया तो जो भी मिलेगा सब समझ लो मुन्नी का।
0: यहीं से मुन्नी की पीठ थपथपाने को मेरे हाथ खुजलाने लगे। बच्ची को शाबाशी देने को जी चाहता था। अरे भाई, यूं तो हर रोज हर खेल में मुन्नी ना जाने कैसे कोई ना कोई सुझाव दे ही देती थी, लेकिन उस दिन उसकी सलाह का नतीजा कमाल का निकला। और मजे की बात यह है जनाब, हारने वालों ने भी बच्ची समझकर इस भारी सुझाव पर कोई चूचा नहीं की। उसी खेल के बारे में सोचता सोचता मैं उस दिन तो सो ही गया। दूसरे दिन मैं कुछ जल्दी ही जाग गया। सामने वाली बालकनी में मैंने बड़ी चहल पहल देखी। लगता था जैसे उनके यहां आज कोई नया व्यक्ति आने वाला हो, इसलिए मुन्नी बड़ी उमंग से बालकनी से ही नीचे की ओर छुक छुक कर ताली बजा रही थी।
2: दादी माँ, ओ दादी माँ, मैं इधर, देखो ना मैं यहाँ खड़ी हूँ।
3: बालकनी से हट जाओ
2: मुन्नी। दादी माँ,
3: यूँ झुक के नीचे मत देखो, फिसल जाओगी।
2: दादी माँ मैं यहाँ।
3: दादी माँ सीढ़ियों की तरफ जा रही है, नीचे छोड़कर नहीं आऊंगी।
2: दादी माँ।
3: हेलो मुन्नी, दादी माँ आ गई।
2: दादी माँ।
4: मुन्निया अच्छी हो ना।
0: दादी माँ एकदम बूढ़ी लगा के देहात में रहने पर भी पुराने जमाने की नहीं। दादी और पोती में बड़ा लगाव था। लगता था दादी के आने के बाद मुन्नी का संसार ही बदल गया हो, उसके गाने, हंसी, उछल कूद, खेल तमाशे सब दुगने हो चले थे। बालकनी में ही सदा उनका अड्डा जमा रहता। शायद इस बार दादी माँ के पास नई कहानियां नहीं थी, इसलिए जो ही दादी कोई पुरानी कहानी शुरू करती मुन्नी उन्हें घसीट कर कैरम बोर्ड के पास ले चलती या गेंद खेलने के लिए खींच कर ले जाती। दादी माँ भी अपने नित नियम की परवाह किए बिना मुन्नी के तैयार होते होते खुद खेल के साथ सामान जुटाकर बैठ ही जाती।

0: मुन्नी अब बस करो बेटी, ये कैरम का खेल, मेरा सारा बदन दर्द कर रहा है। आओ भीतर चले रसोई में, तुम्हारी मम्मी का हाथ बटा ले, कम से कम आज का खाना तो मैं बनाऊंगी।
1: ना दादी माँ, अभी पिंग पोंग खेलना है, ताश खेलनी है और तुम अभी से उठने लग गई। ना ना, तुम बैठो दादी माँ, तुम बैठो ना, लो ये ताश के पत्ते।
0: बहू बहू, अब मैं क्या करूं बेटी, ये मुन्नी मुझे यहाँ बांधे बैठी है, रोटी कैसे बनाऊं, कब अपना काम करूं।
2: कोई बात नहीं माता जी, रोटी मैं बना लूंगी, आपको तो इस मुन्नी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी।
0: मुझे आटा यहीं लाके दे दो बहू, खेल के साथ साथ आटा भी गूंदूंगी, गेंद तो मैं खेल नहीं सकती, सारा बदन दुख रहा है, बस ताश ही खेलती रहूंगी और कुछ घर का काम भी कर लूंगी।
1: नहीं दादी माँ, काम करना बिल्कुल मना है, मेरे साथ ठीक तरह से खेलना पड़ेगा। देखो तुम गलत कार्ड फेंक रही हो।
0: अरे बहू देखना।
2: कोई बात नहीं है माता जी, आप मुन्नी को खेल में लगा कर रखें, मेरे लिए यही बहुत है, घर का काम तो होता ही रहता है। ये कौन सा खेल है मुन्नी?
1: ब्रिज।
2: ब्रिज?
1: हाँ मैं बता दूं दादी माँ, तुम्हारे हाथ में कौन कौन से पत्ते हैं?
0: और मैं बता दूं कि तेरे हाथ में कौन कौन से पत्ते हैं?
1: बताओ।
0: स्पेड किंग, नैला, हार्ट्स, इक्का, जैक, दहला और सत्ती, डायमंड किंग, क्वीन, तिग्गी, है ना?
1: गलत, क्लब्स किंग अच्छी, डायमंड्स तिग्गी मेरे पास है ही नहीं। दादी मैं इतना भी नहीं जानती।
2: लेकिन मुन्नी, क्या तुम लोगों ने पहले से एक दूसरे का हाथ देख लिया था?
0: जी जी, क्या कहती हो बहू, हाथ देख देख कर कहीं ब्रिज खेला जाता है भला, अपने दिमाग से पता लगाना चाहिए।
1: एक दूसरे का हाथ क्यों देखे मम्मी, क्या हम यो नहीं पता लगा सकते?
2: सच सच माता जी, अंदाज से ही आप इतना सही पत्ता बता देती है, 10-20 बरस से हम तो खेल रहे हैं, फिर भी हमारा सिर चकरा जाता है इस खेल में।
0: अरे ऐसी कौन सी बड़ी विद्या है ये, मैं गांव देहात की रहने वाली जरूर हूँ, लेकिन क्या इतना भी नहीं बता सकती, खेल के 2 राउंडों में ही हाथ के पत्तों का पता ना लगा तो फिर वो क्या खेल।
2: ठीक कह रही हैं आप। मुन्नी, दादी माँ को ये ब्रिज क्या तूने सिखाई?
1: मम्मी दादी माँ ब्रिज ही नहीं, मेरे साथ पोकर, रमी सब खेल लेती हैं, है ना दादी माँ?
3: मीरा, मीरा, अरे भाई क्या तुम भी इस दादी पोती बालकनी क्लब में भर्ती हो गई हो, क्या आज हमारे पेट में कुछ नहीं पड़ेगा?
2: अरे बालकनी क्लब की बात छोड़ो शंकर, माताजी न जाने किस क्लब से इतना बढ़िया ब्रिज खेलना सीख कर आई है, इनके सामने हम में से कोई भी नहीं टिक पाएगा।
3: अच्छा गाँव में ऐसा कौन सा क्लब है भाई? माँ क्या ये मीरा सच कह रही है, तुम ब्रिज इतना अच्छा खेलती हो?
0: अरे क्या बात करते हो बेटा, मैं तो यूं ही वक्त काटने के लिए मुन्नी के
2: नहीं,
0: साथ।
2: नहीं माता जी आप मजाक कर रही हैं, सचमुच आप कहीं से चुपके से सीख कर आई?
0: नहीं नहीं बहू, मैंने जो कुछ सीखा है सब इसी मुन्नी के साथ खेलते हुए।
3: माँ तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो अपने आप ही सब पता लग जाएगा, अगर आपके पास इक्का, किंग, क्वीन हो तो उनकी कीमत कितनी ट्रिक्स होगी?
0: अरे ये कौन सा बड़ा सवाल पूछ रहे हो?
1: इसके लिए दादी जी से क्यों पूछ रहे हो डैडी, मैं बताती हूँ, 2.5 ट्रिक्स।
2: ये सवाल जवाब सब बेकार हैं शंकर, माता जी का खेल किससे कहीं आगे है, अगर आप देखते तो हैरान हो जाते, अगर इन्हें पार्टनर बनाकर खेलते तो इतने दिनों से मिस्टर और मिसेस तिवारी के हाथ हम लोग जो चपत पर चपत खाए जा रहे थे सब का हिसाब चुकता हो जाता, हम उनको बड़ी बुरी तरह हरा सकते थे।
3: माँ तुम आज शाम को हमारे साथ खेलोगी? हाँ
0: हाय राम, ये खेल फेल क्या मेरे बस के हैं बेटा, मैं तो मुन्नी के साथ वक्त काटने को यूं ही खेल लेती हूँ, सो भी जबरदस्ती।
1: दादी जी तुम मेरे साथ ही खेलोगी, बड़ों के साथ नहीं, आज शाम को हमें पिंग पोंग खेलना
3: अच्छा
1: है दादी।
3: आज शाम को मैं उन लोगों को जल्दी आने के लिए फोन कर देता हूँ, तैयार रहना तुम, ठीक है?

0: साहब, शाम को जो चमत्कार हुआ उसे मैंने भी अच्छी तरह देखा। ब्रिज में बुढ़िया और बेटे की जोड़ी सामने वालों के लिए एक पहेली बन गई थी। उनके हाथ में 5-6 ट्रंप कार्ड होते हुए भी वो बुढ़िया बड़े मजे से उन्हें मात पर मात दिए जा रही थी। एक बार तो उन्हें 7 ट्रिक्स खोकर गेम डिक्लेयर करना पड़ा। जी हाँ, एक साथ ही बेचारों को 500 नंबर हारने पड़े। दादी जी के खेलने का ढंग भी उनकी कुछ समझ में नहीं आया। किसी एक खेल में सामने वालों के बताए हुए ट्रंप को शुरू से ही खेलकर दादी जी 4 हाथ से जीत गईं। शुरू शुरू में खेलने के लिए वो झिझक नहीं थी, लेकिन अब वो भी थोड़ी बहुत रुचि लेने लगी। अब बस करो, कह के जो तिवारी दंपति उठे तभी माँ बेटे ने उन्हें जोर देकर फिर से खेल के लिए बिठा लिया। एक बाजी और खेली गई और बेचारों को हरा कर ही भेजा आखिर।
1: मीरा, मीरा, शायद आज की बैठक के बाद मिस्टर और मिसेस तिवारी तो खेलना ही छोड़ देंगे।
2: हाँ, माता जी का खेल देखने के बाद तो हमें भी ताश के खेल से छुट्टी ले लेनी चाहिए। इनके हाथों में वो सफाई है शंकर, जो हमारे हाथ में कभी नहीं आएगी। देखो कितने अचरज की बात है कि एक हफ्ते पहले ताश की गड्डी तक इन्होंने नहीं देखी और आज।
1: अरे जानती हो, यहाँ से वापस जाते हुए कार में तिवारी जी क्या बोले?
2: क्या
1: कहते हैं, माता जी को क्लब का मेंबर बनवा दें और इस बार के ऑल इंडिया ब्रिज टूर्नामेंट के लिए क्लब की ओर से इन्हें ही भिजवा दें।
2: हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेकिन इनकी टक्कर का पार्टनर कहाँ से आएगा?
1: अरे मीरा, माता जी को पार्टनर से क्या फर्क पड़ता है, इन्हें तो सबके हाथों के पत्तों की जानकारी पहले से ही हो जाती है। 2 बार बिड हुई नहीं कि अपने आप ही सारी बाजी समझ जाती है।
2: माता जी के पीछे खड़े खड़े आज मैंने भी ब्रिज की कई नई बातें सीखी।
1: तुमने? अरे फिर लेडीज की चैंपियन होने के बाद भी तो कुछ सीखना बाकी है तुम्हें।
2: मजाक छोड़िए, आप भी तो आज कई नई बातें सीख गए होंगे।
1: भाई मेरा तो अब भी सर चकरा रहा है मीरा, न जाने माता जी के पास क्या जादू था कि हाथ लगाए नहीं कि जीत हुई। माता जी ने न जाने क्या कमाल दिखाया है आज। वंडरफुल गेम, रियली वंडरफुल। कहां से सीखा होगा ये खेल? वाह वाह, क्या ओपनिंग, क्या बैटिंग, क्या ट्रंप चाल, ग्रैंड स्लैम पर ग्रैंड स्लैम।
2: तो मेरे ख्याल से उन्हें क्लब के मेंबर हो जाने के लिए पूछ लीजिए।
1: गुड आइडिया। माँ है कहाँ? बेचारी कहीं बैठी बैठी थक कर सो गई होगी।
2: लीजिए, वो तो पोती के साथ पिंग पोंग के लिए तैयार खड़ी है। देखिए जरा।
1: माँ, क्या तुम पिंग पोंग भी खेल लेती हो?
3: पिंग पोंग ही नहीं डैडी, दादी मैं चेस, कैरम, बैंकिंग सब खेल लेती हैं।
1: अच्छा, अरे नचकर तूने दादी को क्या क्या सिखा के रख दिया है। हाँ।
3: आओ दादी मैं हम खेलें।
0: ना ना ना करती हुई बुढ़िया को जैसे तैसे क्लब का मेंबर बनाकर ही माने लोग। धीरे धीरे क्लब के मेंबर शंकर साहब के घर की बैल्कनी में ग्रुप्स में आकर बैठने लगे। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरे क्लब का ही तबादला बैल्कनी में हो गया हो। यहां तक कि क्लब के कैंटीन वाले छोकरे भी हाथ में केतली लिए वहीं आकर अपना डेरा जमा बैठे। फिर सुनिए, एक दिन क्लब के माननीय प्रेसिडेंट यानी हाईकोर्ट के जज शर्मा साहब भी वहां दिखाई पड़े। और मैंने ठीक ही अनुमान लगाया था कि जज साहब दादी जी की परीक्षा लेने के लिए वहां पधारे थे।
4: माता जी, आप जैसी बुजुर्ग ने हमारे क्लब का मेंबर बनने की जो कृपा की उससे हम बड़ा ही ऑनर्ड फील करते हैं।
5: बैठिए ना
4: जी, मेरा मतलब
5: आप सब खड़े खड़े बोल रहे हैं, बात तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में मेरे जैसी बुढ़िया की क्लब सोसाइटी जैसे शौकों में क्या दिलचस्पी हो सकती है?
4: ऐसा न कहिए प्लीज, अब सारा भार आपके ही कंधों पर है। हमारा क्लब 20 बरस से ऑल इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा लेता आया है, फिर भी अभी तक हमारी पोजीशन 15वें नंबर पर ही अटकी हुई है। अगर इस बार आप टूर्नामेंट में भाग ले लें तो हमारा क्लब,
5: टूर्नामेंट क्या है ये?
4: जी वो खेल का मुकाबला।
5: अच्छा अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं मुकाबले में हिस्सा लूं?
4: हाँ माँ, प्रेसिडेंट साहब यही तो चाहते हैं। इस बार अगर तुम क्लब की ओर से खेल कर जीत जाओगी तो इस शहर का नाम हो जाएगा, फिर ताश के खेल में तो तुम्हें कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।
5: हटाओ बेटा, उसके लिए मुझे बुलाना बेकार ही है, मैं जानती ही क्या हूँ।
4: ये तो आपकी ग्रेटनेस है माता जी, आप किसी तरह की चिंता न कीजिए, हम अपने आप ही सब अरेंजमेंट कर लेंगे। खैर, इस समय मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि आप कौन

0: सा ब्रिज खेलती हैं? आई मीन कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज या
1: वो सब मैं नहीं जानती बेटा, ये तो तुम लोग ही बता सकोगे।
2: यस सर, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज ही खेलती हैं जी।
0: अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि टूर्नामेंट में बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और मैं आपका पार्टनर रहूँगा, इसलिए आई मीन
1: आप लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं तो बस मुन्नी के साथ यूं ही खेला करती
0: एक
1: थी।
0: और बात आपसे पूछना चाहता था, जिस दिन से आपका वो खेल देखा उसी दिन से ये बात दिमाग में घूम रही है, उस दिन की बाजी में आपके ओपोनेंट ने नो ट्रंप कहा था और आपने क्लब एस से चाल शुरू की और फिर उनकी डबल कॉल को भी मात दे दी, तो क्या आप पहले से ही अपने पार्टनर के पत्ते जान गई थी? अरे
1: वो परसों वाला खेल, हाँ याद आया, पार्टनर के पत्ते तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन हाँ इतना तो पता लगा चुकी थी कि वहाँ 3.5 आनर्स हैं।
3: और भैया तीसरे दिन सुबह ही अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा देखा, 70 वर्ष की बूढ़ी शिवपुर की सावित्री देवी ऑल इंडिया ब्रिज टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही। पढ़ते ही साहब ने बैलकनी की तरफ देखा, बच्ची आज अकेली कैरम खेल रही थी और उधर दादी माँ, जत शर्मा जी, बेटा और बहू सब के सब रिहर्सल में मग्न थे। चौथे दिन भी वही सिलसिला चल रहा था। जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ उसी दिन से सुबह हुई नहीं कि अखबारों में दादी माँ की प्रतिभा और प्रगति ज्यादा से ज्यादा उजागर होती रही।
4: महारानी ताजा खबर, सावित्री देवी बोली वाली सावित्री देवी ब्रिज संसार का
5: ब्रिज की अद्भुत जोड़ी जो शुरू से अंत तक हारना नहीं जानती, ब्रिज की जादू करनी सावित्री देवी, आज की ताजा खबर
4: लोकल पायनियर क्लब की तरफ से आयोजित ऑल इंडिया पहली बार सावित्री देवी का अद्भुत खेल,
5: भारत की बस्ती में मनीला जाएंगी, सावित्री देवी मनीला जाएंगी।
4: ताजा खबर, इंटरनेशनल ब्रिज टूर्नामेंट में इतिहास की बुढ़िया भारत की प्रतिनिधि होगी, इतिहास की बुढ़िया भारत की होगी, इतिहास की बुढ़िया भारत की
3: होगी। दादी माँ की लंबी विदेश यात्रा की तैयारियां तभी से शुरू हो गई जनाब, और उन तैयारियों में जानते हैं कौन लगे थे? उसका बेटा शंकर और बहू मीरा।
6: मीरा, मीरा, माँ का सारा सामान तैयार है ना?
7: हाँ हाँ।
6: अच्छा, सामान की लिस्ट मैं पढ़ता हूँ, तुम जरा चेक कर लो प्लीज।
7: अच्छा।
6: कपड़ों का सूटकेस।
7: सूटकेस? ये लो।
6: ठीक है, टिकट और पैसों वाला पर्स।
7: दोनों चीजें यहाँ हैंडबैग में रखी हैं।
6: छाता?
7: छाता, छाता ये।
6: हाँ हाँ ठीक। दवाइयों का डब्बा?
7: डब्बा है, यस।
6: थर्मस?
7: यस।
6: टिफिन बॉक्स?
7: यस।
6: बस ठीक है।
1: अरे ये सब चीजें किसके लिए तैयार कर रहे हो बेटा, ये मामला क्या है?
7: आपकी ही चीजें हैं माता जी, मनीला के लिए।
1: मेरी चीजें तो क्या मुझे विदेशों में जाना होगा?
6: अरे हाँ माँ हाँ, तुम वर्ल्ड टूर्नामेंट में मनीला जा रही हो, मनीला समझी?
1: अरे ये बाहर जाने का झंझट क्यों रखते हो बेटा, क्या यहाँ खेल नहीं हो सकते?
6: माँ क्या कह रही हो, क्या कह रही हो तुम, दुनिया के तमाम खिलाड़ी वहाँ आ रहे हैं, उन सबको क्या यहाँ बुलवा लेना मुमकिन है? अच्छा यहाँ के ब्रिज क्लब को तो हमने घर में बुला लिया था, लेकिन वर्ल्ड टूर्नामेंट तो यहाँ नहीं आ सकता माँ।
1: लेकिन

0: बेटा मेरे यहीं के चक्कर क्या काफी नहीं?
1: मनीला में हुए टूर्नामेंट में भारत की टीम सर्वप्रथम नहीं आई, फिर भी दादी माँ का नाम सारे संसार में चमक गया। दुनिया भर के पत्रों में बार बार दादी जी का नाम मोटे मोटे अक्षरों में छपता रहा। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी दादी माँ का नाम आया, इसकी उन्हें उपाधि भी मिली। अखबारों में चाहे खेलों का दैनिक विवरण ना दिया गया हो, लेकिन दादी माँ का चित्र और उनके संबंध में एक लेख जरूर छप जाता था।
2: 70 वर्ष की सावित्री देवी भारत की ब्रिज चैंपियन है, ये जानकर किसे आश्चर्य नहीं होगा कि उन्होंने 2 महीने पहले तक ताश की गड्डी देखी तक नहीं थी। जो देहात में अपने बेटे की खेतीबाड़ी में हाथ बटाती थी, शहरी रणढंग से जो बिल्कुल अपरिचित थी, उस बुढ़िया ने ब्रिज के खेल में।
1: मनीला से जब दादी माँ भारत लौट रही थी तो यहाँ उनके स्वागत की भारी तैयारियां की गई। घंटों प्रतीक्षा में खड़े संवाददाता, रेडियो टेलीविजन के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, सब ने दादी माँ को घेर ही लिया।
3: मैं मन ही मन सोचने लगा कि हवाई अड्डे का वो दृश्य कैसा रहा होगा।
4: योर अटेंशन प्लीज। फ्लाइट नंबर 751 फ्रॉम मनीला इज अबाउट टू लैंड। Your attention please. Flight number 751 from Manila is about to land.
5: सावित्री देवी जी, पायनियर क्लब की मेंबर बनने से पहले आपने सबसे पहले ब्रिज का खेल कहाँ सीखा था?
6: माँ बोलो ना, क्या पूछ रहे हैं तुमसे, बोलो।
0: कहाँ क्या, अपने घर पर ही सीखा था, अपनी मुन्नी के पास।
4: सावित्री देवी, मनीला में आए हुए जिन मशहूर खिलाड़ियों से आप मिली है, जैसे हबर्ट, बर्लिंगटन, उनके बारे में कुछ?
7: ऑल इंडिया रेडियो के श्रोताओं के लिए आप अपनी विदेश यात्रा से संबंधित कोई रोचक बात?
8: दादी जी एक बात बताइए, अगर आपका पार्टनर गलत खेल रहा हो तो क्या आप भी उसे मेज के नीचे से लात मारती हैं?
9: साइलेंस प्लीज। एक मिनट, दादी जी हुक्म हो तो टीवी के लिए आपका एक स्माइलिंग चित्र प्लीज। हाँ, लाइट्स ऑन, कैमरा टू एडजस्ट इट, हाँ क्लोज अप, यस, हाँ जरा स्माइल कीजिए, हाँ यस, वन शॉट, ओके कट।
1: इन शोर शराबों से जैसे तैसे बुढ़िया को बचाकर लाने में शंकर और उसकी पत्नी बुरी तरह हांफने लगे थे। तेज रोशनी से दुखती हुई, अपनी आंखों को मलती हुई बुढ़िया बालकनी के एक कोने में आराम करने लगी। उसके चेहरे से ही मैं जान गया कि कितना भारी स्वागत हुआ होगा इसका, और बिजली की तेज रोशनी उनके चेहरे पर बार बार पड़ी होगी, जिसकी वजह से वो कितना थक गई हैं। शायद सिर्फ मुन्नी ही अपनी दादी माँ की थकान का कारण जानती थी। दादी माँ किसी से कोई बात न कर चुपचाप सिर पर हाथ रखे बैठी थी कि तभी मुन्नी आकर उनसे बातें करने लगी।
10: दादी माँ, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो?
0: मुनिया, ये शोर शराबी तुम्हें पसंद है? मुनिया,
10: जरा भी नहीं, यहाँ बहुत शोर होता है दादी माँ, दिन भर लोग आते रहते हैं, हम खेल भी नहीं पाते। हम शिवपुर चले जाएं दादी माँ?
0: फिक्र ना कर मुन्नी, परसों शिवपुर चले जाएंगे। आज ही मैंने तेरे ताऊ को एक चिट्ठी लिख दी है, वो स्टेशन पर गाड़ी ले आएगा, हम दोनों चली जाएंगी, ठीक है ना?
8: माँ, अरे ये क्या माँ, तो फिर कोने में दुबक कर बैठ गई हो? अरे वहाँ ड्राइंग रूम में जज साहब, कलेक्टर और दूसरे बड़े आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। माँ देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए फूल मालाएं और गुलदस्ते।
0: बेटा अभी सबसे मैं तंग आ गई हूँ, कुछ बहाना बनाकर उन लोगों को टाल ही दो तो। मैं
8: कह रही हूँ माँ, क्यों क्यों, बात क्या हुई है? तुम यूँ अकेली बैठी हो, तबीयत तो ठीक है ना?
0: शंकर, ये सब कुछ पागलपन है, मेरी उम्र तो देखो, मुझे अच्छे लगते हैं ये खेल तमाशे, हम उसे घूमना फिरना नहीं होगा, मैं बिल्कुल तंग आ गई हूँ, बिल्कुल तंग आ गई हूँ।
8: ऐसी बात क्या हो गई है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
0: ये नाम चिट्ठी भेज दी है कि परसों स्टेशन पर गाड़ी ले आए,
8: लेकिन
0: मैं शोर शराबे चका चौ

0: कौन धक्का मुक्की सबसे तंग आ गई हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ। बस बस अब आराम से अपने गांव में ही रहूंगी।
1: मीरा मीरा जरा इधर आओ, अब तुम ही माँ को मनाओ, पता नहीं क्या हो गया, गांव जाने के लिए एकदम तैयार हो गई।
2: दादी माँ को तब से मैंने नहीं देखा, क्या आदि की चकाचौंध से तंग आकर बुढ़िया ने शायद अपनी देवती के साथ घर के भीतर ही आराम करते हुए एक दिन बिताया होगा। फिर शांति आजादी और आराम की खोज में शहर के शोर शराबे से छुट्टी पाकर अपने गांव के लिए निकल पड़ी होगी। शिवपुर स्टेशन पहुंचते ही जिस शांति की कल्पना वो अपने मन में कर रही होंगी उसका नमूना कुछ इस तरह हो सकता है।

0: बलराम।
1: ताऊजी।
0: मुन्नी इस तरफ आ जा, इधर। हाँ हाँ, धीरे से। हाँ, यहाँ कोई हमें नहीं घेरेगा, ना धक्के लगेंगे, ना हमारा दम घुटेगा। सुबह से शाम तक अपनी मर्जी से उस रोशनी की चकाचौंध से दूर आराम चैन से सुख शांति से हम यहाँ रहेंगे, है ना मुन्नी?
2: लेकिन बुढ़िया का इतना शांतिपूर्ण स्वागत हुआ होगा, इसमें भैया मुझे संदेह ही है। बल्कि बुढ़िया का स्वागत उसके बड़े बेटे बलराम की तरफ से शिवपुर स्टेशन पर शायद कुछ इस तरह हुआ होगा।
3: हेलो हेलो हेलो भाइयों भाइयों, मेरी आवाज तुम लोगों को सुनाई दे रही है ना? आप सब लोगों से प्रार्थना है कि कृपया शांति रखें। हम जानते हैं कि दादी माँ के स्वागत के लिए, दर्शनों के लिए आप सब उतावले हो रहे हैं। गांव के इतने लोगों की भीड़ से ही यो मालूम हो रहा है। लेकिन भाइयों, रेल का प्लेटफार्म छोटा है, 10-20 आदमी भी ज्यादा हो गए तो दीना मुश्ती किसी हालत हो जाएगी, इसलिए स्टेशन कर्मचारियों के अलावा।
4: अभी आप सुन रहे थे SN शिवस्वामी का लिखा नाटक ग्रैंड स्लैम। निर्देशक थे चिरंजीव। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और

0: प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the four stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
2: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the center and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naiphiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it as a historic moment, as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. India strongly condemned the recent attack on Palau-flagged tanker MT Setebalo off the coast of Oman, in which three Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the U.S. Charged Affairs. Mr. Jaiswal noted that the continuing attacks on shipping in the region are deeply worrisome and linked to the ongoing conflict. All four candidates of the National Democratic Alliance, NDA, have been elected unopposed to the Rajya Sabha from Andhra Pradesh today. The elected candidates are Vashyam Ramakrishna, Sana Satish Babu and Chintakayala Vijay of Telugu Desam Party TDP and Lingamaneni Ramesh of Janasena Party. Returning officer R. Vanita Rani announced their election after the completion of the nomination process and the absence of any contesting candidates. Minister of State for Chemical and Fertilizers Anupriya Patel today said that biopharmaceuticals are shaping the future of modern healthcare and India is well positioned to emerge as a global leader in the sector. Addressing the second Pharma Summit and Awards 2026 organized by ASSOCHAM in New Delhi, the minister highlighted that Biopharma Shakti initiative envisages launch of 100 biologics by 2047, contributing to the vision of Viksit Bharat and Swasth Bharat. Ms. Patel said the government has created strong funding and policy pathways across the pharmaceutical value chain. She further highlighted the growing importance of advanced therapies and noted that initiatives such as the PRIP scheme, National Biopharma Mission, are helping create a robust ecosystem for innovation, research and manufacturing. In badminton, PV Sindhu and Tanvi